ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तीसरी तिथि। तदनुसार 24 जून सन 2026। इस रूढ़ी घड़ी में सुबह के 5:57 हो रहे हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडी वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

0: É Ferhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के

आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबूधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमरीका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप जुड़े ही आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। आइए सुने कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में किसान भाइयों को ज्वार की खेती विषय पर ये जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
1: किसान भाइयों, आज हम ज्वार की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। ज्वार की खेती हम दो मतलब से करते हैं, एक तो अपने खाने के लिए और दूसरा अपने जानवरों के लिए। अपने लिए अनाज और पशुओं के लिए चारा प्राप्त करने के लिए इस समय आप ज्वार की बुआई कर सकते हैं। आइए पहले अनाज उत्पादन के लिए और फिर इसके बाद चारे के लिए इसकी उन्नतशील ढंग से खेती के बारे में चर्चा करते हैं। दाना प्राप्त करने के लिए ज्वार की बुआई करने का सही समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक होता है। अतः आप खेत तैयार करके और सही समय पर बुआई करें। इसके लिए वही भूमि उपयुक्त होती है जो बलुई या दोमट किस्म की हो, तथा यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि खेत में ज़्यादा पानी न लगने पाए, यानी फालतू पानी के निकासी की व्यवस्था हो। खेत के चुनाव के बाद उसकी एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा दो तीन बार कल्टीवेटर से जुताई करके खेत तैयार कर लेते हैं। खेत में अगर दीमक लगने की संभावना हो तो 25 से 30 किलोग्राम लिंडेन चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेत में भलीभांति मिला देना चाहिए। इसकी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं वह हैं CSB13, मऊ टाइप 1, मऊ टाइप 2, वर्षा, CSH16, CSH9 और CSH14 इसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं। एक हेक्टेयर में बुआई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये कि अगर एक एकड़ खेत में बुआई करना है तो 5 से 6 किलोग्राम बीज लगेगा। बीज का जमाव अच्छा हो और उसमें कंडुआ रोग न लगने पाए, इसके लिए बीजोपचार करते हैं। बीज को उपचारित करने के लिए थीरम दवा लेते हैं। इसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त होती है। यानी अगर 5 किलोग्राम बीज है तो लगभग 12.5 ग्राम दवा लगेगी। बुआई हल के पीछे कुणों में करनी चाहिए तथा एक कुण से दूसरे कुण की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग भी बोते समय ही करते हैं। उर्वरकों की मात्रा मिट्टी की जांच के बाद मालूम हो जाती है। अगर मिट्टी की जांच न करवा सकें तो संकर प्रजातियों के लिए 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से तत्व के रूप में कुण में डालकर फिर बीज डालते जाते हैं। अगर एक एकड़ खेत है तो 32 किलोग्राम नत्रजन,

0: 16 किलोग्राम फास्फोरस और 8 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में। कहने का मतलब ये कि 64 किलोग्राम यूरिया, 96 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 12 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश खेत में कुंड में डालकर और फिर पीछे पीछे बीज बोते जाते हैं। यूरिया की इतनी ही मात्रा को बुआई के लगभग 30 से 35 दिन बाद खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहिए। ज्वार अक्सर अरहर के साथ मिलाकर भी बोते हैं, लेकिन इससे उपज अच्छी नहीं मिल पाती। अगर दोनों को बोना है तो अरहर की दो लाइनों के बीच में ज्वार की एक लाइन बोना चाहिए। आइए अब कुछ चर्चा चारे के लिए ज्वार की खेती के बारे में करते हैं। चारे के लिए ज्वार की जो उन्नतशील किस्में हैं वह हैं मीठी ज्वार PC6, यूपी चरी नंबर 1, यूपी चरी नंबर 2। इनकी बुआई जून माह से लेकर जुलाई माह तक आप किसी भी समय कर सकते हैं। सामान्य तौर पर इसमें 80 किलोग्राम नत्रजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर। कहने का मतलब ये कि 32 किलोग्राम नत्रजन तथा 16 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ की दर से तत्व के रूप में आवश्यकता होती है। नत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में डालना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की मात्रा को बुआई के 30 से 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर ज्वार की खेती करनी चाहिए।
1: ज्वार की खेती, खेती की बातें कार्यक्रम में अभी किसान भाई इस विषय पर जानकारी सुन रहे थे। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए हमारा दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज आराधना कार्यक्रम का आरंभ आइए करें विघ्नहारी मंगलकारी प्रबंधन के विलक्षण संयोजक गौरी शंकर पुत्र श्री गणेश भगवान की इस प्रार्थना से।

मन में उठते सवालों का जवाब अक्सर मन दे दिया करता है। क्या वो है? अगर नहीं है तो कौन संभाल रहा है? अगर हम संभल रहे हैं तो वो है कहाँ? ये प्रश्न विश्वास के साथ बढ़ते और घटते हैं।

जगत जननी का नाम आशा, संतोष और शक्ति से भरा है। जीवन के हर पल में आपकी भक्ति धैर्य का हाथ पकड़े आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली है।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज इस कार्यक्रम में जिन कलाकारों की आवाज़ें आपने सुनी उनके नाम हम आपको बता दें, अनुराधा पौडवाल, जगजीत सिंह और लता मंगेशकर। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं आज का हमारा विचार बिंदु कार्यक्रम। विषय है गंगा का महात्मा।
1: हमारे भारत की पुण्य नदियों में गंगा प्रमुख है। यह माना जाता है कि भगवान त्रिविक्रम के चरणों का ब्रह्मा जी ने प्रक्षालन किया, उसको अपने कमंडलू में रखा और राजा भगीरथ की प्रार्थना पर भगवती भागीरथी गंगा को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से छोड़ा। भगवान शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया और उसके पश्चात उनकी जटाओं से निकलकर गंगा भारत में आई। गंगा जिन भगीरथ के पूर्वजों के लिए लाई गई थी उनका कल्याण करते हैं। जो राजा भगीरथ हैं उनका कल्याण करती हैं और आज जो गंगा में स्नान करता है उसको भी पवित्र कर देती हैं। यहाँ तक बतलाया गया है कि गंगा गंगित यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। जो 100 योजन दूर से गंगा गंगा कहता है वह भी समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। आद्य शंकराचार्य भगवान ने भगवती भागीरथी कली कलुषहारिणी रिंगत तरंगिणी गंगा का स्तवन करते हुए कहा, कुतो वीचिर वीचिर यदि तव गतालोचन पथम तमापीता पीतांबरपुर निवासं वितरसि तदुत्संगे गंगे यदि पतति कायस्तनुवृतां तदा मातशातक्रतवपदलाभोऽप्यति लघुः। इसका अर्थ है कि हे गंगे, जिसने आपकी तरंगों का दर्शन कर लिया, तरंग को संस्कृत में वीची कहते हैं और नरक को अवीची कहते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जिसने आपकी वीचियों का दर्शन कर लिया उसके लिए अवीची कहाँ रह गया।

0: तवा पीता, जिसने आपका पान कर लिया, जिसके द्वारा आप पी ली गई, उसको आप पीताम्बर पुर निवासम वितरसी। पीताम्बर पुर वैकुंठ का निवास प्रदान करती है। और हे गंगे, जिसका शरीर आपकी पवित्र गोद में गिरता है, उसके लिए तो इंद्रपद भी तुच्छ हो जाता है। कथा आती है कि गरुड़ किसी सर्प को अधमरा करके अपनी चोंच में दबाए ले जा रहा था कहीं बैठकर खाने के लिए। संयोग से गंगा की धारा के ऊपर से जब वो उड़ता हुआ जा रहा था, सहसा उसकी चोंच से छटक कर सर्प गंगा की धारा में जा गिरा और वहीं उसका पंचत्व हो गया, शरीर छूट गया। परिणाम ये हुआ कि वो चतुर्भुज विष्णु बनकर उसी गरुड़ की पीठ में बैठ के बैकुंठ चला गया। इस प्रकार गंगा का हमारे यहाँ बड़ा अद्भुत महत्व है।
1: गंगा का महात्म्य विचार बिंदु कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे इस विषय पर विचार। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आइए सुने पेट संबंधी रोग, कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार। इस विषय पर ये जानकारी आपको दे रहे हैं डॉक्टर राजेश पांडे।
1: मैं डॉक्टर राजेश कुमार पांडे और आज स्वास्थ्य चर्चा में हमारा विषय है पेट संबंधी रोग, कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार। यदि हम उदर रोगों के कारणों को देखें तो आयुर्वेद के अनुसार पेट के अधिकांश रोगों का मूल कारण अग्निमांद्य ही है, अर्थात पाचन शक्ति का कमजोर हो जाना है। पर आजकल की हमारी दिनचर्या भी उदर रोगों को बढ़ाने में प्रमुख कारक होती है। आयुर्वेद में निदान परिवर्जन को आधी चिकित्सा कहा गया है, यानी जिस कारण से रोग उत्पन्न होता है उन कारणों को रोकना भी आधी चिकित्सा के बराबर है। इसलिए रोग के कारणों को जानना बहुत आवश्यक है। आइए उदर रोगों के कारणों को जानते हैं। आयुर्वेद में हिताहार और मिताहार को स्वास्थ्य की कुंजी कहा गया है, यानी हितकर भोजन करना चाहिए, ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के अनुसार हितकर हो। यदि आपको मधुमेह की बीमारी है तो आपके लिए मीठा खाना हितकर नहीं होगा, या आपका वजन ज़्यादा है तो आपके लिए घी तेल खाना हितकर नहीं होगा। इस प्रकार हितकर भोजन हमारे लिए जरूरी है। दूसरा, मिताहार की बात कही गई है, यानी समय से भोजन करना चाहिए। मिताहार यानी समय से भोजन करना चाहिए। हम सब काम के दबाव में जब जहाँ जो मिला खा लिया, नहीं खाया, ऐसा करना ठीक नहीं है। अत्यधिक तला भुना एवं मसालेदार भोजन भी पेट के लिए अच्छा नहीं होता है। जंक फूड और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन हमारे पाचन को खराब कर देता है, मोटापा बढ़ाता है, क्योंकि इसमें हाई कैलोरी होती है और पोषक तत्वों की कमी होती है। आजकल हमारे बच्चे जंक फूड और पैक्ड फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जिसके कारण बच्चों में पेट की बीमारी, पाचन संबंधी बीमारी और मोटापा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके लिए बच्चों के माता पिता को ध्यान देना चाहिए और बच्चों के अनुसार ही उनके पसंद के खाद्य पदार्थों में ही हरी सब्जी, फल, सूखे मेवे आदि मिलाकर उन्हें घर पर तैयार करके खिलाना चाहिए, जिससे उनको स्वाद भी मिले और पोषक तत्व भी मिलता रहे और उनके पेट को भी आराम मिले। चूँकि फास्ट फूड में मैदे का सामान ज़्यादा होता है, इसमें रेशेदार अन्नों की कमी होती है, उस वजह से पेट भी गड़बड़ हो जाता है, इसलिए बच्चों का पेट अक्सर खराब होने लगता है। इसके बाद भोजन के तुरंत बाद सो जाने वाले जो लोग हैं उनका भी पाचन तंत्र अच्छा नहीं होता। भोजन के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए, कम से कम भोजन के एक घंटे बाद

0: शयन करना चाहिए। अत्यधिक चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक उदर रोगों का कारण होती है। ज़्यादा समय चिंता, तनाव एवं मानसिक अशांति में रहने से हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है, इसलिए तनाव में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। देर रात तक जागना भी पेट के रोगों का कारण होता है। रात्रि में ज़्यादा देर तक नहीं जागना चाहिए, परंतु जिनका काम ही ऐसा है कि नाइट ड्यूटी करना पड़ता है, उन्हें रात में बहुत हल्का भोजन करना चाहिए और सुबह ड्यूटी से लौटने के बाद हल्का नाश्ता करके सो जाना चाहिए, फिर उठने के बाद भोजन करना चाहिए। अक्सर लोग नाइट ड्यूटी के बाद सुबह घर आकर ढेर सारा खाना खाकर सो जाते हैं, इससे पेट की समस्या उत्पन्न होती है और मोटापा भी बढ़ता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। शारीरिक व्यायाम बिल्कुल न करना भी पेट के रोगों का कारण है। व्यायाम करने से हमारी आंतों का मूवमेंट बढ़ता है और पाचन ठीक रहता है। भूख से अधिक या कम भोजन करना भी हानिकारक है। विरुद्ध आहार, जैसे एक आहार जो दूसरे के अनुकूल नहीं होता, जैसे कि आयुर्वेद में कहा गया है मछली और दूध का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए, तो विरुद्ध आहार का भी सेवन करने से हमारे पेट में गड़बड़ी पैदा होती है और हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। ये सभी कारण जब लंबे समय तक बने रहते हैं तो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों में असंतुलन पैदा हो जाता है और विभिन्न प्रकार के पेट संबंधी रोग जन्म लेते हैं, और यहाँ तक कि आगे चलकर मोटापा, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर के भी कारण बन जाते हैं। अतः पेट की समस्या को शुरुआत में ही समझना और उसके लिए अपने खानपान और दिनचर्या को सुधारना बहुत आवश्यक है।
1: पेट संबंधित रोग, कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार। स्वास्थ्य कार्यक्रम में अभी आप इस विषय पर डॉक्टर राजेश पांडे से ये जानकारी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। आज भाग संख्या 124 में गायक कलाकार हैं ए हरिहरण।

बेटियों को विदा कर बारातियों से विदा मांगते हुए राजा जनक ने समधि तथा उनके स्वजनों का भरपूर सम्मान किया। मुनि मंडली के सामने शीश झुकाकर उनका आशीष प्राप्त किया और फिर जामाताओं को हाथ जोड़े, अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए बोले, आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन बनाकर मुझे अपनाया। मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा अपरिमित है। मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे ये याचना करता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके श्री चरणों को ना छोड़े। श्री राम ने पिता दशरथ, मुनिवर विश्वामित्र, कुलगुरु वशिष्ठ तथा पिता सदृश जनकराज का विनयपूर्वक सम्मान किया। मिथिलेश ने भरत को स्नेहपूर्वक प्रेमाशीष दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आशीषा, और फिर मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में नतमस्तक हुए, जिनकी कृपा से ही आज उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोले, हे स्वामी, आपकी अनुकंपा से ही मुझे ये सुख, सुयश और सभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए हम आपको दे दें संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर सुनिएगा सरोद वादन। कलाकार होंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान। दिन में 12:45 पर और सुबह 7:31 पर सुनिएगा एक बार फिर से सरोद वादन। कलाकार होंगे अंशुमान महाराज। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 चंद गजलें ए हरिहरण की आवाजों में। और इसी कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर सुनिएगा भजन। कलाकार होंगी कुमारी सुरुचि। लोक संगीत का कार्यक्रम हम लेकर आएंगे सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर। आज के कलाकार होंगे महंगीराम प्रजापति और साथी। इनका गायन लोकगीत आप कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर भी सुन सकते हैं। कृषि जगत कार्यक्रम में लोकगीतों के अलावा सुनिएगा बातचीत। विषय होगा कृषि में एआई तकनीक की उपयोगिता। इस विषय पर बातचीत होगी डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव से। रात 10 हम लेकर आएंगे कार्यक्रम वट वृक्ष। और गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। अंग्रेजी कार्यक्रम का समय है शाम 7 से। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और मार्गदर्शन में सुनिएगा जानकारी कानून के क्षेत्र में कैरियर के अवसर विषय पर। गीत संगीत सूचना और जानकारी भी इस कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे। दिन में 2:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम

कुछ बातें कुछ गीत। बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी हम लेकर आएंगे दिन में 1:15 पर, जिसमें गीत संगीत जानकारी और बातचीत भी होगी। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12 बजे। हमारा ईमेल संदेशों पर फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनिएगा दिन में 11 बजे से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार हम लेकर आएंगे सुबह 10 बजे। रसरंग शाम 7:31 पर, रसमाधुरी रात 8:15 पर, और मधुर गीतों का संगम होगा मधुरिमा में सुबह 8:45 पर। और आपका एक और पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सुनिएगा सुबह 7 बजे से। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत ये थी संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लीजिए, एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त, वो जिसके नाम से होती है आपके दिन की शुरुआत।
2: हेलो, मैं पूजा,
3: पहचाना? इस नाम से उसे कोई नहीं जानता, वो बुलाने जो सब बुलाते हैं।
1: हां जी पूजा,
4: कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर फील्ड एंड आई विश कि आप सब जहां भी हो खुश हो। सो इस विश के साथ मैं हूं आपकी अपनी आरजे दोस्त, वो जिसके नाम से होती है आपके दिन की शुरुआत।
1: क्या हुआ बनारस, थोड़ा सा तो चौंक गए होंगे कि ये क्या सुबह सुबह देखने को सुनने को मिल रहा है ना, सुनने को मिल रहा है। लेकिन चौंकिए मत, कभी कभी थोड़ा थोड़ा सबको चौंकाना भी बनता है। जी हाँ, ये तो मेरा एक आपको चौंकाने का तरीका था, लेकिन अब मैं जो बात करने जा रही हूँ ना, उसे सुन करके सच में आप चौंक जाएंगे। देखिए, कल सुबह जब मैं मार्केट जा रही थी तो मैंने ट्रैफिक में फंसे लोगों के चेहरों को देखा। हर कोई जल्दी में था, हर कोई भाग रहा था, सबके माथे पर एक शिकन थी। तब मेरे दिल ने मुझसे एक सवाल पूछा कि हम सब कहाँ पहुँचने की इतनी जल्दी में है, बताइए कहाँ पहुँचना चाहते हैं हम सब? हम सोमवार को शुक्रवार का इंतजार करते हैं, सर्दियों में गर्मियों का, और पूरी जिंदगी बस इस बात का इंतजार करते हैं कि जब वो मिल जाएगा तब हम खुश होंगे। लेकिन इस मंजिल को पाने की होड़ में हम भूल जाते हैं कि जिंदगी मंजिल का नाम नहीं है, जिंदगी तो इस खूबसूरत सफर का नाम है। सोचिए जरा, जब हम किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं तो क्या हम सिर्फ वहां पहुंचने के लिए खुश होते हैं? नहीं ना, हम खुश होते हैं उस रास्ते के पहाड़ों को देखकर, उन वादियों की ठंडी हवा को महसूस करके, और रास्ते में रुककर पी जाने वाली उस गर्मा गर्म चाय की चुस्की से। फिर अपनी जिंदगी के साथ हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम हमेशा कल की चिंता में अपने आज की बलि चढ़ा देते हैं। तो एक बात बोलूं, किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मंजिल की चाह में रास्तों को मत भूलो। गुरु, ये जो

आज का दिन है ना, ये जो इस वक्त आपकी कार की ठंडी हवा आ रही है कार के अंदर, और घर पर आपकी माँ ने जो चाय बनाई है, रेडियो पे जो आप ये मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं प्यारे से बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, यही असली जिंदगी है बॉस। जी हाँ, जो कल बीत गया वो वापस नहीं आएगा, और जो कल आने वाला है उसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। तो फिर क्यों ना इस सफर की हर छोटी बड़ी चीज का आनंद लिया जाए, उसे खुश होकर के खुल के जिया जाए, है ना? तो भाई आज मेरी तरफ से खुद को एक छोटा सा तोहफा दे दीजिए। दफ्तर के काम की फाइल को 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो शीशा नीचे करके बाहर के मौसम को महसूस कर लीजिए। अपने बगल में बैठे इंसान को देखकर एक छोटी सी मुस्कान दे दीजिए, और आपको जो

इंसान को देखकर एक छोटी सी मुस्कान दे दीजिए और आपको जो ढेर सारा प्यार करता है, आपकी परवाह करता है, बदले में उसे भी थोड़ा सा प्यार और उसकी भी परवाह कर लीजिए, है ना दोस्तों। कामयाबी जरूर हासिल कीजिए, सपने भी जरूर पूरे कीजिए, लेकिन उनके पीछे भागते भागते इतने मत थक जाइए कि जब वो मिले ना तो आपके पास मुस्कुराने की ताकत ही ना बचे। इस सफर के हर उतार चढ़ाव का मजा लीजिए, क्योंकि जो रास्ते खूबसूरत होते हैं, मंजिलें अक्सर उन्हीं के अंत में मिलती है। चलिए ज्यादा मत सोचिए, बस इस पल को जी लीजिए। गुड मॉर्निंग बनारस के इस खूबसूरत सफर को शुरू कर लीजिए, इसके साथ अपनी जिंदगी का, अपनी आज के दिन का एक खूबसूरत लम्हा क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ आपकी रेडियो दोस्त पूजा, और मेरे साथ है ये खूबसूरत सा ट्रैक। आइए सुन लेते हैं

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी पूजा के साथ। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज। देश की प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायिका और काशी की लता के नाम से विख्यात मंगला कपूर को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। सम्मान प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा, जीवन में अनेक कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करने के बाद मिला उनके लिए बेहद भावुक और गौरवपूर्ण क्षण है। मंगला कपूर ने कहा, मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकती, आप समझ सकते हैं पद्मश्री तक पहुंचना कितना कठिन रहा होगा। उन्होंने बताया कि संगीत साधना के साथ साथ वह दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए भी लगातार काम करती हैं और लेखन के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास करती हैं। बनारस अब प्रदेश के परिषदीय स्कूल हर साल 25 जून से खुलेंगे, इससे न्यूनतम 220 शिक्षण दिवस सुनिश्चित हो सकेंगे। मंगलवार को अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश के लाखों शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और मेंटोर्स से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग की नई कार्य योजना की जानकारी दी। ACS ने शिक्षकों से अपील की कि स्कूल खुलने पर बच्चों का प्यार भरा स्वागत करें, गर्मी को देखते हुए उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। शिक्षकों के उत्साह बढ़ाने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। नगरीय क्षेत्रों में 11,000 शिक्षकों और 10,000 अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कुल 21,000 नई भर्तियों से शिक्षक छात्र अनुपात और बेहतर होगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षा सुधार का असली केंद्र कक्षा कक्ष है। 1 जुलाई से शुरू होने वाले स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण में स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की पहचान और नामांकन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जानकारी के आधार पर इन बच्चों तक पहुंच बनाई जाएगी। कक्षा 5 से 6 में निर्बाध प्रवेश सुनिश्चित कर ड्रॉप आउट दर कम करने पर भी जोर रहेगा। अगली खबर ये है बनारस की। काशी में देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे परियोजना शुरू होने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने रोपवे के किराए की अधिसूचना जारी कर दी है। न्यूनतम किराया 10 रूपए और अधिकतम 50 रूपए निर्धारित किया गया है। रोपवे के इस साल सितम्बर तक शुरू होने की उम्मीद है और अंतिम चरण के परीक्षण चल रहे हैं। बनारस वरुणा जोन के पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुमार सोमवार रात 2 बजे पहले थाना लालपुर, पांडेपुर, उसके बाद थाना सारनाथ पहुंचे। वहां आसपास में मौजूद पुलिस कर्मियों को बुलाकर चेकिंग के बारे में सवाल जवाब किया। फैंटम कर्मियों को निर्देश दिए कि रात्रि गश्त पर निकले तो हूटर बजाते हुए गलियों तक चक्रमण जरूर

0: जरूर करें। महिला हेल्प डेस्क के निरीक्षण के दौरान वहां तैनात कर्मियों को महिला संबंधी शिकायतों का समयबद्ध एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किए। इसके अलावा थानों के अभिलेखीय कार्यों की समीक्षा करते हुए विभिन्न माध्यमों से प्राप्त पत्रों का सिटीजन चार्टर के अनुरूप समयबद्ध निस्तारण करने पर जोर दिया उन्होंने। बनारस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में नए शैक्षणिक सत्र में दाखिले और परीक्षाओं को लेकर दो बड़े फैसले किए गए हैं। कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई प्रवेश समिति की बैठक में स्नातक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर दाखिले के लिए स्केलिंग फॉर्मूले को मंजूरी दे दी गई है। प्रवेश सेल के उप समन्वयक प्रोफेसर नलिनी श्याम कामिल ने बताया कि मुख्य परिसर के स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश काउंसलिंग 27 जून से और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग 21 जुलाई से शुरू होगी। गंगा जमुनी तहजीब की जीवंत मिसाल पेश करने वाली हमारी काशी में मुहर्रम पर 200 से अधिक छोटी बड़ी ताजिया बैठाई जाती हैं। इसमें से कई ताजिया का सदियों पुराना इतिहास है। शहर में बैठने वाली करीब आधा दर्जन ताजियों की खूबसूरती और उसके परंपरा को देखते हुए दूर दराज से अकीदतमंद इसे देखने और मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने आते हैं। मुहर्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बड़े बुजुर्ग परंपरागत और बड़ी ताजियों की साफ सफाई और साज सज्जा में लगे हैं। सो बनारस, ये तो बात हो गई क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज। और अब चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं आज के दिन के इतिहास को। ১৯৩৭ में आज ही के दिन अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका अनीता देसाई का जन्म हुआ था। 1897 में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, संगीतज्ञ एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1869 में आज ही के दिन भारत के क्रांतिकारी अमर शहीदों में से एक दामोदर हरी चापेकर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और 1863 में प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1881 में आज ही के दिन ओम जय जगदीश हरे आरती के रचयिता तथा हिंदी पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रद्धा राम शर्मा का निधन आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन 1564 में भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का निधन आज ही के दिन हुआ था। सो बनारस, ये तो बात हो गई इतिहास की और अब जानते हैं आज के स्पेशल डे के बारे में। बनारस आज है बटुक भैरव जयंती। बनारस वाराणसी का वैभव सिर्फ बाबा विश्वनाथ से ही नहीं बल्कि काशी के कोतवाल काल भैरव और उनके अलग अलग रूपों से भी है। काशी में अष्ट भैरव की पूजा का विधान है जिनमें श्री बटुक भैरव का रूप सबसे सौम्य और भक्तों के दिल के सबसे करीब माना जाता है। कहते हैं कि काशी में रहना है तो बाबा विश्वनाथ के साथ साथ काशी के कोतवाल और उनके रूपों की हाजिरी लगाना भी बहुत जरूरी है। जब तक कोतवाल साहब की इजाजत न हो तब तक काशी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। वैसे तो हम सब काल भैरव मंदिर जाते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी काशी की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में अष्ट भैरव यानी आठ भैरव रूप विराजमान है और उन्हीं में से एक है कमक्षा के श्री बटुक भैरव जिन्हें बाबा का बाल रूप माना जाता है और जिनकी आज जयंती है। शास्त्रों में लिखा है कि काशी अष्ट कोणीय है और इसकी सुरक्षा के लिए आठ दिशाओं में आठ भैरव पहरा देते हैं। ये अष्ट भैरव हैं: कपाल भैरव, रूरू भैरव, चंड भैरव, असितांग भैरव, क्रोधन भैरव, उन्मत भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। ऐसा माना जाता है कि काशी में आने वाले हर इंसान के पाप पुण्य का हिसाब यही कोतवाल रखते हैं, लेकिन इन सब में कमक्षा स्थित बटुक भैरव मंदिर की महिमा बिल्कुल निराली है। यहाँ बाबा रौद्र रूप में नहीं बल्कि एक 5 साल के बालक के रूप में पूजे जाते हैं। इन्हें आनंद भैरव भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब देवताओं पर विपत्ति आई थी तब भगवान शिव के अंश से एक 5 साल का बालक प्रकट हुआ था जिन्होंने आपद नामक दैत्य का वध किया था। सो बनारस, आज की बात हो गई, बीते कल की बात हो गई और आज के स्पेशल डे के बारे में भी बात हो गई। और अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका रहता है आप सबको इंतजार।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: बनारस, जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में बहुत गंभीर, चश्मा लगाए हुए और भारी भरकम शब्द बोलने वाले लेखकों की तस्वीर उभरती है। लेकिन आज मैं आपको हिंदी के एक ऐसे लेखक से

0: मिलवाने जा रही हूँ जिनकी कलम में बनारस का अखरपन था, जुबान पर कड़क मिजाज था और जो अपनी बात को इतने मजेदार व्यंग के साथ कहते थे कि पढ़ने वाला हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। जी हाँ, आज काशी रत्न के पन्नों से हम याद कर रहे हैं भारतेंदु युग के बेमिसाल रत्न पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी को। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म भले ही उन्नाव में हुआ था, लेकिन उनका पूरा लालन पालन, उनकी शिक्षा और उनके भीतर की साहित्यिक चेतना हमारी इसी काशी की गलियों में पली बढ़ी। वे महान भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपना गुरु, अपना आदर्श और सब कुछ मानते थे। यहाँ तक कि वे भारतेंदु जी के रंग ढंग, उनकी चाल ढाल और उनकी पोशाक तक को कॉपी करते थे। मिश्र जी की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी बनारसी बदकही और ठेठ देसी अंदाज। उन्होंने बहुत ही आम विषयों पर ऐसे निबंध लिखे जो आज भी चाव से पढ़े जाते हैं। उन्होंने भौं, दांत, नाक, वृद्ध और यहाँ तक कि मूछ जैसे विषयों पर भी इतने कमाल के और गहरे सामाजिक निबंध लिखे दिए कि लोग सोच में पड़ गए कि भाई, मूछ पर भी इतना शानदार साहित्य लिखा जा सकता है। उन्होंने ब्राह्मण नाम की एक पत्रिका निकाली थी और पैसों की तंगी होने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी कलम का सौदा नहीं किया। देश के प्रति उनका प्यार ऐसा था कि उन्होंने ही वो नारा दिया था जिसे आज भी इतिहास में याद किया जाता है। वे कविता, नाटक और निबंध के जरिए समाज की कुरीतियों पर ऐसा करारा तड़का लगाते थे कि सामने वाले को मिर्च भी लग जाए और वो कुछ मोल भी न पाए। उनका जीवन छोटा जरूर था, लेकिन उन्होंने जितनी बेबाकी से जिया वो मिसाल है। तो आज काशी रत्न के इस सेगमेंट में हिंदी के इस अल्हड़ और कड़क लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी को हमारा कोटि कोटि नमन। उनकी रचनाएं हमें सिखाती हैं कि अपनी भाषा पर गर्व करना सीखिए और अपनी बात को हमेशा पूरी बेबाकी के साथ रखिए। काशी रत्न में आज के लिए बस इतना ही।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: सो बनारस, घड़ी की सुइयां इशारा कर दी हैं कि भैया समय हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, लेकिन आज का सफर आपको कैसा लगा गुड मॉर्निंग का मुझे जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ और कहती रहूंगी और जो बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि खुद से प्यार करना, खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश होंगे ना तभी हम औरों में खुशियां बांट पाएंगे, उन्हें खुश कर पाएंगे और उनके साथ अपनी जिंदगी को भरपूर खुशी खुशी जी पाएंगे। तो देखिए, बहुत जरूरी है, खुद से प्यार करिए, अपने लिए कुछ पल निकालिए, अपने लिए, अपने शौक को, जो आपके शौक हैं जिनको आप टाइम नहीं दे पाते हैं उनको प्रॉपर टाइम दीजिए। थोड़ा मी टाइम खुद के लिए निकालना बहुत जरूरी है। तो इस मंत्र को याद रखिए, खुद का खूब ख्याल रखिए, अपनों के साथ रहिए, अपनों को ढेर सारा प्यार करिए और सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी के ढेर सारे कार्यक्रम जो सिर्फ आप और सिर्फ आपके लिए ही आते हैं। तो दीजिए अपनी रेडियो दोस्त पूजा को अनुमति। डू वेरी वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी वेडनेसडे बनारस। गुड मॉर्निंग।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।

0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। इमारत को गिराने का नोटिस जारी। कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रदेश भर में जांच अभियान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के दिए निर्देश। कहा, आवासीय भवनों में नहीं होना चाहिए व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित एसआईटी ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। और प्रदेश सरकार की तरफ से बेंगलुरु में आज हो रहा निवेशक रोड शो, उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग का आयोजन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कई उद्योगपति। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए कल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल एसआईटी के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसआईटी ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि
3: हमें कुछ जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है।
4: हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। अलीगंज पुलिस की ओर से रविवार देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
5: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन की। परिजनों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
2: लखनऊ में अग्निकांड के बाद कल प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों में जांच अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गा कुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण, पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, प्रयागराज, जौनपुर, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा समेत अन्य जिलों में जांच अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। जांच का क्रम आज भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को आग लगने की

0: घटना को एक बड़ा सबक बताते हुए कहा कि इससे सीख लेते हुए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री ने हर जिले में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए प्रदेश के सभी जिलों में SIT का गठन कर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: कल देर शाम लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश भर में अग्नि सुरक्षा को लेकर चलाया जाने वाला अभियान पूरी तरह जनहित में संचालित किया जाएगा। पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। समाचार कक्ष से रितेश।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम कल घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। UPTET 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। SIT के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य 2 सदस्यों के साथ कल अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है। SIT की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
2: शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय SIT की रिपोर्ट हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
0: प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के अंतर्गत आज बेंगलुरु में एक निवेशक रोड शो का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो की अध्यक्षता करेंगे। देश के कई प्रमुख उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। 3 सत्रों के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार के अवसरों पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। इस दौरान निवेशकों को उत्तर प्रदेश की मजबूत बुनियादी ढांचागत व्यवस्था, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, क्षेत्रीय नीतियों, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, रक्षा गलियारे, डेटा सेंटर पार्क, इलेक्ट्रिक वाहन और विनिर्माण क्षेत्र आदि में हुई प्रगति से अवगत कराकर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया,
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण

0: पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर लू की स्थितियां बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात का एक नया दौर आरंभ होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। इमारत को गिराने का नोटिस जारी। कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रदेश भर में जांच अभियान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के दिए निर्देश। कहा, आवासीय भवनों में नहीं होना चाहिए व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित एसआईटी ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। और प्रदेश सरकार की तरफ से बेंगलुरु में आज हो रहा निवेशक रोड शो, उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग का आयोजन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कई उद्योगपति। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनिए शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है सरोद वादन। कलाकार हैं अंशुमान महाराज। राग है अहिर भैरव। आपके साथ तबले पर संगति विमलेश शर्मा की।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सरोद वादन। कलाकार थे अंशुमान महाराज। राग था अहिर भैरव। आपके साथ तबले पर संगति विमलेश शर्मा की थी। शास्त्रीय संगीत का आज का ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश

0: मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
1: रास लफान परियोजना में जो वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवार

0: रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान की तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नागरिकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन

0: सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केनिया, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
2: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है, मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लापान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रासुल अफ़ान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताज़ियती कॉल मौसूल हुई। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की रायज़नी की सख्त मजम्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारत और अमरीका ने मुजवजा दो तरफा तजारती माहदे को ताज़ा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरा समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। भारत की तरफ से ये आवाज कौमी राजधानी में मुनाकिदा एक आला सतह की मीटिंग में उठाई गई। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की क्यादत में इस ग्रुप की भारत की सदर नशीनी के तहत मुनाकिदा ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग में रुकन मुल्कों के सलामती के सरकर्दा नुमाइंदे यकजा हुए, जिसका मकसद बैन अल-अक़वामी बिरादरी को दरपेश रिवायती और उभरते हुए खतरात से निमटना था। भारत की वजारत खारजा के मुताबिक बातचीत में सलामती को दरपेश उभरते हुए उन खतरात पर तवज्जो मरकूज की गई जो कौमी सरहदों से बाहर भी लाहक होते जा रहे हैं। मंदुबीन ने तवानाई और सबके लिए खुराक की फराहमी से लेकर आबो हवा से मुतालिक अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्द तंजीमों के हाथों उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के बेजा इस्तेमाल तक के मामलात पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया है और एक दूसरे के साथ करीबी राबता रखने से इत्तेफाक किया है। दोनों रहनुमाओं ने अपने शहरियों की खुशहाली और हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म को भी दोहराया और एक दूसरे की यगानगत और मदद के अपने अहद को ताज़ा किया। जनाब मोदी ने कल एक टेलीफोन बातचीत के दौरान कतर के अमीर से इतवार को कतर के रास लफान सनती शहर में एक हादसे के दौरान भारतीय बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। जनाब मोदी ने मुतासिरा कुनबों के तई हमदर्दी जाहिर करने पर कतर के रहनुमा का शुक्रिया अदा किया और जख्मियों के जल्द इलाज के लिए फौरी मदद फराहम करने को सराहा। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी ने अमन के लिए जारी कोशिशों में कतर के तामीरी रोल की तारीफ की।
1: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रायजनी की सख्ती से मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि ये रायजनी अपनी नाकामियों को छुपाने और इंसानी हकूक की पामाली से तवज्जो हटाने की पड़ोसी मुल्क की नाकाम कोशिशें हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए वजारती खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इन फर्जी दावों को उतने ही वाजह तौर पर मुस्तरद करता है जिसके ये हकदार हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान दिफा की शराकतदारी पर तर्जुमान ने कहा कि हालिया बरसों में इमारात के साथ भारत के ताल्लुकात में बड़ा इजाफा हुआ है, जिसमें दिफा से मुताल्लिक शराकतदारी का एक अहम रोल है। वज़ीरे खजाना निर्मला सीतारमन ने मुस्तहकम मईशतों की तामीर करने, मुस्तकिल तरक्की की रफ्तार में तेजी लाने और सबकी शमूलियत वाली तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कसीर मुल्की मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। कल नई दिल्ली में तरक्की से मुताल्लिक सरबराह कॉन्फ्रेंस के आलमी इज्तिमा

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में लेकर हाजिर होते हैं आपके लिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें
7: 0542227658
8: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा मधुरिमा कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में बात उसकी जो हमारे संसार की हर बात में है, हर जगह है, हमारी जरूरत है, हमारा दायित्व है, हमारी प्रकृति। विषय भले ही सामान्य लगे आपको, पर आज जब हम गर्मी बीमारी से परेशान हैं, घिरे हैं, तो गीतों के साथ आज इस विषय पर थोड़ा चिंतन कर लेते हैं, थोड़ा मनन कर लेते हैं और प्रयास का संकल्प भी।

प्रकृति सृष्टि जीवंत काव्य है, गीत है, संगीत है, जिसे महसूस करने के लिए थोड़ा संवेदनशील होना होगा और ऐसे हृदय के मालिक होना होगा जो प्रकृति से प्रेम करते हों, तो हमें समझ में आएगा प्यार क्या होता है। प्यार प्रेम देने का सबसे बड़ा सुख वाला वो एहसास है जो प्रकृति की गोद में जीवन के संगीत को महसूस करेगा। उस संगीत की धुन में सब कुछ फलेगा, फूलेगा, संवरेगा।

बेमानी बेमतलब नहीं है। प्रकृति जो कुछ दिखा रही है वो सिखा रही है। उगता सूरज आशा उम्मीद और संघर्ष का प्रतीक है। अस्त होता सूरज नई सुबह लेने का लेकर आने का विश्वास है। वर्षा की बूंदें संतुलन का शऊर बताती हैं। बदलता मौसम परिवर्तन के नियम कैसे हो सब कुछ सिखाता है।

आज विज्ञान तकनीक के बल पर भले ही हम कितना भी आगे आ गए हों, मगर इसकी कीमत किसी ने चुकाई है तो हमारी प्रकृति ने। पर अब और नहीं, यदि हमें अपना सुखद भविष्य देखना है, सोचना है, चाहना है, तो प्रकृति को वो सब कुछ लौटाना होगा जो उससे हमने लिया। हाँ, सब कुछ लौटाना मुश्किल है, पर बचाना थोड़ा आसान भी है। थोड़ा स्वार्थ से ऊपर उठकर सब कुछ करना होगा। आज बारिश की बूंदों को तरसती ये धरती हमसे पूछ रही है, क्या कसूर था मेरा? सब कुछ देकर भी मैंने अपने आंचल में क्या पाया, क्या रखा?

करुणा और सृजन का अनंत संगम है। ये केवल हमारे चारों ओर फैले वातावरण नहीं है, बल्कि जीवन की धड़कन है। इसके बिना किसी का अस्तित्व बेमानी बेमतलब। धरती की हरियाली, नदियों का बहता जल, आकाश की फैली बाहें, पर्वतों को चूमते बादल, फूलों की खुशबू, दौड़ते उड़ते तैरते कूदते जीवों का संगम है। हर शय प्रकृति का गीत संगीत और जीवन की सांस का नाम है।

और आज मधुरी माँ इस संकल्प के साथ यहीं तक कि हमारा हर प्रयास होगा हमारी प्रकृति के लिए, ताकि वो जो दुनिया में हमारे बाद आए हैं आएंगे उन्हें भी वो सुख मिले जिसके वो हकदार हैं। तो आज यहीं अपनी रेडियो सखी किरण सिंह को इस वायदे के साथ दीजिए अनुमति कि आप अपना और अपनों के साथ सबका ख्याल रखेंगे। नमस्कार।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima. अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरिमा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां हैं आप वहीं हमारा साथ।
2: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे जिले की हलचल कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए श्रावस्ती और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का।
1: श्रावस्ती जिला 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर पूरी तरह योगामय नजर आया। करो योग, रहो निरोग के संकल्प के साथ जिले भर में योग की बयार बही।

0: सुबह से ही विभिन्न स्थानों पर उत्साह का माहौल देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का मुख्य आयोजन जिला मुख्यालय पर हुआ। जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्रा की अगुवाई में भारी संख्या में लोगों ने एक साथ सामूहिक योग किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही पंडाल में मौजूद हर शख्स योग के रंग में रंगा नजर आया। योग का ये उत्सव सिर्फ जिला मुख्यालय तक ही सीमित नहीं रहा। इकोना के स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों, भारी संख्या में आम जनता ने एक साथ योगासन किया। इस मौके पर सभी ने एक सुर में समाज को स्वस्थ और जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। जिले के तमाम सरकारी कार्यालयों, परिषद विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संगठनों द्वारा भी अलग अलग स्थानों पर योग शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविरों में योग प्रशिक्षकों की मौजूदगी में विभिन्न योगासन, प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। साथ ही योग से होने वाले शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। विभिन्न कार्यक्रमों में वक्ताओं ने योग को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहद जरूरी बताया। मुहर्रम के मौके पर श्रावस्ती में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों को प्रशासन का साफ और कड़ा संदेश है। पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च, रूट मार्च कर रही है। जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र नासिरगंज, इकोना, पीरबितनी में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जहां पुलिस खुद ड्रोन कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। वहीं पीस कमेटी की बैठक के दौरान एसडीएम संजय राय ने नासिरगंज के स्थानीय लोगों से बेहद भावुक और तार्किक अपील की। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, इमाम हुसैन की शहादत पर गम मनाया जाता है, किसी की शहादत पर डीजे बजाना बिल्कुल जायज नहीं है, इसलिए सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। इसके साथ ही प्रशासन ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ या विवादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ सीधे जेल की कार्रवाई होगी।
1: प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश दिए गए मनाने के लिए इसको सभी लोगों को अवगत कराएगी तथा सबको विश्वास दिलाएगी कि पुलिस और प्रशासन त्यौहार को सकुशल मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और प्रशासन के द्वारा अभी रूट मार्च भी किया गया है, ड्रोन से निगरानी की गई है, शांति व्यवस्था कायम है तथा त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा।
0: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षक के महापर्व का आगाज हो चुका। जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान भारी लौ लश्कर और गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ श्रावस्ती पहुंचे। भिंगा में जनप्रतिनिधियों, आला अधिकारियों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने जिले को एक बड़ी सौगात देते हुए सामायिक जन कल्याण एवं जन जागरूक अभियान का भव्य शुभारंभ किया। श्रावस्ती में शुरू हुए एक बड़े बदलाव को लेकर प्रभारी मंत्री ने तारीफ की। सूबे के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने इसको लेकर बड़ी खुशी जताई। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर विकास, स्वच्छता और पर्यावरण को एक नई दिशा देने के लिए मंत्री जी खुद जमीन पर उतरे। मौका विश्व पर्यावरण दिवस का था, लिहाजा प्रभारी मंत्री ने सीधे एक्शन का रुख लिया। उन्होंने ऐतिहासिक रानी तालाब पहुंचकर खुद हाथों में झाड़ू थामी और श्रमदान किया। इसके साथ ही देशव्यापी मुहिम एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षक का संदेश दिया।
2: मुझे महसूस हुआ कि गांव का जो गरीब है, जो पैसे के अभाव में जिसका परिवार तबाह बर्बाद हो जाता है, आयुष्मान कार्ड देने की योजना में 60 करोड़ लोगों को उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया, आज हर गरीब आदमी।
0: श्रावस्ती में प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के निर्देशानुसार जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित तथागत सभागार में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष जिला पंचायत ददन मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने गोष्ठी में लगे स्टालों का निरीक्षण किया तथा किसानों को प्राकृतिक खेती करने की नसीहत दी। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत ने कहा कि आजकल किसान रासायनिक खेती के दौर से अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग करता है, जिसका प्रभाव उन पर और उनकी आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। इसलिए कृषकों को से अपील है कि वो रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाएं ताकि उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे।
3: श्रावस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
4: 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ओपन हॉल पुलिस लाइन सीतापुर में हर्षोल्लास एवं सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सीतापुर नेहा अवस्थी, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने योग की महत्ता के बारे में बताते हुए सभी को प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा

0: योग व्यायाम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, इससे हम सभी का शरीर स्वस्थ रहता है और मन को शांति मिलती है। साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी योग के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने का आह्वान किया। आयुष विभाग द्वारा जनपद के सभी ब्लॉकों एवं तहसीलों में भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानसून का सीजन शुरू होने के साथ ही सीतापुर में जिला प्रशासन ने लोगों को बाढ़ आपदा से बचाव के हेतु व्यापक प्रबंध शुरू कर दिए हैं। ज्ञातव्य है कि सीतापुर जनपद की 3 तहसीलें क्रमशः बिस्वा, लहरपुर और महमूदाबाद बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होती हैं। यहां प्रतिवर्ष बाढ़ के पानी से एक बड़ी आबादी प्रभावित होती है। नागरिकों को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन समिति के साथ संयुक्त रूप से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसके तहत मुख्य कार्यक्रम बिस्वा तहसील अंतर्गत चहलारी घाट पर किया गया, जिसमें बाढ़ के पानी में डूब रहे लोगों को आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा नाव और स्टीमर की मदद से बचाया गया। सीतापुर में टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय को सोमवार सुबह 5 बजे ध्वस्त कर दिया गया। नजूल की भूमि पर बने कार्यालय को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा पूर्व में नोटिस दी गई थी, जिसके बाद कार्यवाही को अंजाम दिया गया।
1: अवैध कब्जा था इनका और ये हमारी सरकारी प्रयोजन के लिए जमीन सुरक्षित कर ली गई थी राजकीय महाविद्यालय के लिए, जहाँ भी हमारी नजूल की भूमि और नोटिस दिए जहाँ जहाँ दिया गया उसको हम सब खाली करवाएंगे।
0: पौराणिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में सोमवती अमावस्या पर भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ा। अधिक मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इसी महत्व के चलते नैमिष क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने पूरे भक्तिभाव के साथ आदिगंगा गोमती में स्नान के उपरांत पूजन अर्चन और दान दिया। केंद्र सरकार के सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास भवन सभागार में आयोजित भव्य चित्र प्रदर्शनी का शुभारम्भ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु एवं जिला अध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ल ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं, उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी वृहद इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास, सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन को आकर्षक चित्रों एवं प्रदर्शन सामग्रियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, नीतियों एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कारागारी राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है। पूर्व में विभाग तो थे, किंतु योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुंच पाता था। आज केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण गांव गांव तक विकास कार्य पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास, शौचालय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार तेजी से हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अधिकारियों को पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन के साथ कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की है, जिससे योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। गांव को पैतृक सड़कों से जोड़ा गया है। किसान के हित में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं तथा उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य गांव, गरीब, किसान एवं युवा के सर्वांगीण विकास के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीक्षा जोशी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, लाभार्थी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सीतापुर पुलिस द्वारा एक अंतर जनपदीय गिरोह को गिरफ्तार कर कई बड़ी घटनाओं को पर्दाफाश किए जाने का दावा किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस को 50 लाख से अधिक की नकदी समेत जेवरात और लग्जरी वाहन के साथ चोरी के एटीएम कार्ड सहित असलाह बरामद किए हैं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: एक बार फिर से आप हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये पहली सूचना सहायक पुलिस आयुक्त भेलपुर वाराणसी से प्राप्त है। इस सूचना के अनुसार धीरज साहनी, जो पुत्र हैं राजकुमार साहनी उर्फ पहाड़ी के, निवासी हैं खोजवा बाजार पोस्ट ऑफिस के पास वाराणसी से। धीरज साहनी की उम्र है 27 वर्ष, लंबाई 5

फुट 2 इंच, रंगूरा और चेहरा गोल है। ये 25 जून 2025 शाम 6 बजे से लापता हैं। घटना वाले दिन आपका पहनावा सफ़ेद रंग की शर्ट और स्लेटी रंग की पैंट थी। यदि इनके संबंध में आपको कोई भी सूचना मिले तो अपने नज़दीकी थाना या थाना भेलूपुर वाराणसी को सूचना देने का कष्ट करें। और ये अगली सूचना सहायक पुलिस आयुक्त कैंट जनपद वाराणसी से प्राप्त है। इस सूचना के अनुसार काजल देवी, जो पत्नी है अमित कुमार पटेल की, निवासी हैं ग्राम बिलवरिया पोस्ट मुर्दहा थाना शिवपुर जनपद वाराणसी की। काजल देवी की उम्र है 27 वर्ष, लंबाई 5 फुट के करीब है, रंगोरा है और चेहरा गोल है। ये 16 जून 2025 सुबह 9 बजे के आसपास से लापता हैं। घटना वाले दिन आपका नीले रंग की साड़ी थी। यदि इनके संबंध में भी आपको कोई सूचना मिले तो अपने नज़दीकी थाना या थाना शिवपुर जनपद वाराणसी को सूचना देने का कष्ट करें। और ये सूचना है सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त। इस सूचना के अनुसार मुस्कान बारी, जो निवासी है लहरतारा भीटरी पोस्ट लोहता वाराणसी की, मुस्कान बारी की उम्र है 22 वर्ष, लंबाई 5 फीट के करीब है, रंगोरा है और चेहरा गोल है। ये 20 जून 2025 सुबह 9:45 से लापता हैं। घटना वाले दिन आपका पहनावा गुलाबी सफ़ेद प्रिंट की शर्ट थी और नीले रंग का जींस था। यदि इनके संबंध में भी आपको कोई सूचना मिले तो अपने नज़दीकी थाना या सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना देने का कष्ट करें। और ये सूचना भी सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त है। इस सूचना के अनुसार आकाश पटेल, जो पुत्र हैं स्वर्गीय कन्हैया पटेल उर्फ विजय पटेल के, निवासी हैं चांदपुर चौराहा थाना मंडुआडी जनपद वाराणसी के। आकाश पटेल की उम्र है 26 वर्ष, लंबाई 5 फुट, रंग गेहूं और चेहरा गोल है। 21 जून 2026 दिन 12 बजे से लापता हैं। और घटना वाले दिन आपका पहनावा सफ़ेद रंग का लोअर और नीले रंग का शर्ट था। यदि इनके संबंध में भी आपको कोई सूचना मिले तो अपने नज़दीकी थाना या थाना मंडुआडी जनपद वाराणसी को सूचना देने का कष्ट करें। खोए व्यक्तियों के संबंध में आज की ये सूचना अब यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

मेरी वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स DTS DRM, 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

फिरासत हुसैन की, मेरा जे जिंदगी है शहादत हुसैन की, दोषे रसूले पाक पे बैठे थे बिल यकीन, बेहद्दो बेगुमा है फजीलत हुसैन की, गिरिया कुना है आज भी वो वर्जे करबला, देखी है जिसने प्यास की शिद्दत हुसैन की, डूबी हों खूने दिल में तुम्हारी उंगलियां, लिखो सुखन वरो यूं हिकायत हुसैन की। करबला कत्ल गहे अहले तमन्ना है, करबला मजलूमियत का इस्तियारा है, करबला सब्र इस्तकलाल का मीनारा है, करबला वो मुकाम है जहाँ से इंसानियत सुरखरू होकर निकलती है, बंदे हक के लिए मैदान करबला में लश्कर आदा की चमकती हुई शमशीरें नज़ारे ईद से कम ना थीं। दुनिया की कोई भी तहजीब, दुनिया की कोई भी तारीख मैदान करबला जैसा कोई एक सानहा पेश करने से कासिर है। तारीख दे रही है ये आवाज़ दम बदम, दश्ते सबातो अज़्म है दश्ते बलाओ गम, सब्रे मसीहो जुर्रते सुकरात की कसम, इस राह में है सिर्फ एक इंसान का कदम, जिसकी रगों में आतिशे बद्रो हुनैन है, उस सूरमा का इसमें गरामी हुसैन है। मदीना मुनव्वरा से निकला हुआ पाक नफूस का एक काफिला जिसमें नवासे रसूल, अहले बैत और चंद रफीकाने सफर थे, मक्का को अलविदा कहा और ये काफिला सुए करबला रवाना हुआ। अंदाजा था इस बात का आगाज़े सफर से, अशकों की तरह आले नबी निकले थे घर से, दश्ते बला में असगरो अकबर हुसैन हैं, जो गौर से देखो तो 72 हुसैन हैं। करबला ना तो जंग थी ना मुकाबला और ना ही कोई मारका आराई, क्योंकि यहाँ ना दौलत और हशमत की तलाश थी ना ही शहनशाहियत की जस्तजू, बल्कि एक तरीक़ा मज़ाहमत था एक ऐसे जालिम जाबिर हुक्मरान के खिलाफ जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा दीन को मस्क कर रहा था। यजीद के तख्त नशीन होते ही हलाल और हराम का फर्क मिटने लगा। हुसैन इब्ने अली के सामने एक बड़ा सवाल ये था कि शरीयत फरमाने शाही के ताबे हो या हाकिम वक्त शरीयत का पाबंद हो। इमाम हुसैन का मुख्तसर सा काफिला सन 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को सरजमीन करबला पर वारिद हुआ। इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से जंग के इरादे से रवाना नहीं हुए थे और न ही आपने सहाबा इकराम और ताबईन को अपने साथ महाज पर चलने की दावत दी थी। जब करबला में दाखले शाहे दी हुआ, दश्ते बला नमूने खुल्दे बरी हुआ, पाया फरोगे नैयरे दी के जहूर से, जंगल को चांद लग गया जहरा के नूर से, उतरो मुसाफिरों के सफर हो चुका तमाम, कूच अब ना होगा हश्र तक है यही मकाम, मक्तल यही जमी है यही मशहद इमाम, ऊंटों से बार उतार के बर्पा करो खयाम, बिस्तर लगाओ शौक से इस अर्ज़े पाक पर, छिड़का हुआ है आबे बका।

10 मुहर्रम अल हराम को सुबह शहादत नाजिल हुई। शौक शहादत रखने वालों का जोश हजारहा लश्कर यजीदी से टकराने को तैयार था। एक तरफ हक परस्तों की जमात है तो दूसरी तरफ फरेबियों और मक्कारों का लश्कर है। मैदान कर्बला में

एक एक करके गुलशने जहरा के फूल मैदाने कारजार में काम आते गए। अब तन्हा इमाम हुसैन हैं और हजारों का लश्कर आदा। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। तन्हा हुसैन हैं और हजारों का लश्कर, इब्ने हैदर की तलवार हजारों पर भारी थी, जिधर का रुख किया सफ की सफ तहे तेक कर दिया। दुश्मनों ने कई सिम से एक साथ तीरों की बौछार कर दी। तन्हा जिसमें नाजनी

0: उन्हें इमाम हुसैन से एक नई तारीख रकम हो चुकी थी। हक व बातिल की बाजी तमाम हुई। अंजाम मुबारक हो अजीजो, बातिल हुआ नाकाम। मुबारक हो अजीजो, इमाम हुसैन ने सर दे दिया मगर बैयत नहीं की। नवासे रसूल खुदा ने कयामत तक के लिए जबरो इस्तबदाद की जड़ें काट दी। हुसैन इब्न अली की मौजे खून ने एक ताजा चमन ईजाद किया जो खून मजलूम से आज भी सरसब्जो शादाब है। ये फकत अजमते किरदार के ढब होते हैं, फैसले जंग के तलवारों से कब होते हैं। झूठ तादाद में कितना ही ज्यादा हो सलीम, अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। मेराज जिंदगी है शहादत हुसैन की। सामईन, अभी आप ये तमसीली प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे थे। तहरीर और आवाज थी मोहम्मद फर्रुख जमाल की, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपकी समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार किया गया था।
1: सामईन, अभी समाप्त फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम मीडियम वेव 401।

0: मीरी वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स डीटीएच डीआरएम, 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर यह है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज के कलाकार हैं महंगी राम प्रजापति और साथी। कार्यक्रम के आरंभ में आपके स्वर में पहले प्रस्तुत है ये देवी गीत।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार हैं महंगीराम प्रजापति और साथी। अभी आपने सुना आपके स्वर में देवी गीत। देवी गीत के बाद कार्यक्रम में प्रस्तुत है ये गंगा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार थे भांगीराम प्रजापति और साथी। इनके गाय लोकगीत आप दिन में 1:45 पर और शाम 6:30 पर कार्यक्रम कृषि जगत में भी सुन सकते हैं। आप जुड़े हैं आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र के साथ। थोड़ी देर में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम झनकार।

फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें और साथ ही सुनते रहिए आकाश।

0: वाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ। जीले यारा जीले।
1: सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम झनकार में आप सभी सुनने वालों का स्वागत। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में आह फिल्म का ये गीत, हसरा जयपुरी की रचना, संगीत शंकर जयकिशन का।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे अनामिका फिल्म का ये गीत। गीत मजरू का लिखा हुआ था, संगीत राहुल देवबर्मन का था। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनका। कार्यक्रम का ये अगला गीत मुकेश की आवाज़ में अंदाज फिल्म का ये गीत, रचना एक बार से मजरू की और संगीत नौश।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अनारकली फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, संगीत सी रामचंद्र का था। अब आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आबरू फिल्म का ये गीत जीएल रावल का लिखा हुआ, संगीत सोनी कोमी का।
1: ये दिल नहीं है के जी।

आबरू फिल्म के इस गीत के बाद आइए सुनाते हैं आपको आशा भोसले की आवाज़ में अंगूर फिल्म का एक गीत। गुलजार का लिखा ये गीत है, संगीत राहुल देव बर्मन का।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ, सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम झनकार। कार्यक्रम का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, सौदागर फिल्म का ये गीत है और गीत संगीत रविंद्र जैन का।

अब आइए सुनाते हैं आपको किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म 9-2-11 का ये गीत। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है, संगीत सचिन देव बर्मन का।

अब जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम झनकार। आइए सुनते हैं अब आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाजों में खूबसूरत फिल्म का ये गीत। गीत गुलजार का लिखा हुआ है, संगीत राहुल देव बर्मन का।

गाते इसके था लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

और अब आइए सुनाते हैं आपको फिल्म आधा राम आधा रावण से ये गीत। आशा भोसले और पंकज उधास की आवाज़ें हैं। मुमताज़ राशिद का लिखा गीत है, पंकज का संगीत।

और झनकार कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अनुराग फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीत आनंद बख्शी का, लिखा हुआ संगीत सचिन देव बर्मन का।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज। वेव्स OTT पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। प्रस्तुत है आपके ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज ये कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। आप सभी को हमारा नमस्कार।

इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं अपने मेल संदेशों को फरमाइश के रूप में, और इस कार्यक्रम का जो फॉर्मेट है उसमें हम पहले से आए हुए मेल को शामिल करते हैं। तो जो श्रोता आज मेल भेजेंगे उसे अगले कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो हमारी मेल आईडी नोट कीजिए, हमारी मेल आईडी है airvnsfgexp@gmail.com। मेल आईडी एक बार फिर से सुन लें, airvnsfgexp@gmail.com। इस मेल पर आप जो भी संदेश भेजेंगे उसे अगले कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम जिसका नाम है फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। तो कार्यक्रम में पहला मेल हम शामिल कर रहे हैं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश का। भेजने वाले श्रोता नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव डागर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से ये मेल हमें भेजा है अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर ने। शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकर, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवयम जैन। सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग का भी मेल हमें मिला है। ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा साहिन, तुबा अफरीन, शमीम अख्तर अंसारी। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ये संदेश हमें भेजा है ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू ने। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं खुद गर्ज फिल्म का गीत। गीतकार इंदिवर, संगीतकार राजेश रोशन, आवाज नितिन मुकेश और साथियों की।

जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता कोई होता है तो वो होता है दोस्ती का। और ये दोस्ती का रिश्ता ही होता है कि हम आप एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये रिश्ता जन्म से तो नहीं होता है, लेकिन कर्म से और अच्छा हो जाता है। आपके जितने अच्छे कर्म होंगे उतने अच्छे आपके दोस्त होंगे, और आपकी दोस्ती की गवाही देता है ये जो आप मेल संदेश हमें भेजते हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं से दोस्ती की गवाही देता हुआ दिखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अगला मेल हमें भेजा है गमरिया जमशेदपुर टाटा नगर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार जिला चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहो जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार जिला चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल का मेल हमें मिला है। ये संदेश भेजा है मुकाम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर महाराष्ट्र से जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी, सुबान मुलाणी, समीर मुलाणी, सलमा मुलाणी, मुमताज मुलाणी, दिलशाद मुलाणी, नसीर मुलाणी, बानू बी मुलाणी, बादशाह मुलाणी और अभी लगता है कुछ लोग बचे हैं। तो उन्होंने लिखा है पूरा मुलाणी परिवार, तो उसको भी हम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम इस मेल के माध्यम से। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का भी मेल हमें मिला है। और मेल भेजते समय हमने नोटिस किया कि एक जो भी श्रोता मेल एक बार भेजते हैं वो लगातार 3-4 मेल एक साथ भेजते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा और एक सलाह दूंगा कि ऐसा करने से दिक्कत होती है। आप एक मेल भेजने के बाद कम से कम एक दिन का तो अंतर रखें दूसरा मेल भेजने में, ताकि वो मेल अगला फिर मेल क्या होता है कि हम लोग एक ही मेल

तो शामिल कर सकते हैं। तो लगातार जब चार मेल होते हैं तो चार मेल को हटाना पड़ता है, पीछे के मेल को आगे लाना पड़ता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब एक मेल आप भेज दें तो अगला मेल अगले दिन भेजेंगे तो वो एक दूसरे क्रम में आएगा, तो वो निश्चित तौर पर शामिल हो जाएगा। और ये मेल हमें भेजा है लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी ने। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वडतकर, शुभम वडतकर, पुन्नू वडतकर। अगला संदेश हमें भेजा है पद्मा टाकिच नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, आश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह ने। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्बी और बेबी बाय हिमाक्ष। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस चंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष चंघेल और नंदिनी चंघेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। अपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और इनकी भी इतनी लंबी लिस्ट है और नीचे लिखा हुआ है अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। तो अभी लगता है इसके अलावा भी कुछ लोग बचे हुए हैं, तभी तो उन्होंने लिखा कि अब्बासी परिवार के बाकी बचे हुए सदस्य, तो उनको भी शामिल करते हैं इस मेल के माध्यम से। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि। ऑक्सीजन पार्क का नाम पिछली बार भी आया था तो मैंने कहा था कि वहाँ इस नाम से ही ऑक्सीजन मिल जाता है और उम्मीद करते हैं इस ऑक्सीजन पार्क में निश्चित तौर पर ऑक्सीजन मिलता होगा और वो समृद्ध होगा पेड़ों से, पौधों से और वृक्षों से। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू ने भी मेल हमें भेजा है। नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहिनाज और नाजिया नूरीनाज। इन्होंने लिखा हम बहनों को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं और हमें शुक्रिया अदा करने का मौका दें, तो हमने शामिल किया और हम आपको शुक्रिया देते हैं कि आप सभी ने मेल भेजा है। जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। जमनिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल का भी मेल हमें मिला है। नगर निगम वार्ड नंबर 28 महसोल सीतामणि से अकरम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से ये मेल हमें भेजा है, एक ही मेल में इन्होंने अलग कर दिया है, मोहम्मद आसिफ खान और निकाहत परवीन। अच्छा रहता कि आप दोनों मेल अलग अलग भेजते। लोरमी चचड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बाउड़ी से खुदा बख्श खलीफा। तो आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं आप सभी की पसंद पर किशन कन्हैया फिल्म का गीत, शब्द रचना अनवर सागर की, संगीत राजेश रोशन का, आवाज अमित कुमार और साधना सरगम की।

कार्यक्रम में अगला मेल भेजा है ग्राम नागरकोरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अवंतिका येले। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरित रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर बबलू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राजेश अंसारी और आसमा खातून अंसारी। पटेल नगर मुगल सराय से शशि सिंह, आस्था सिंह और आकाश सिंह का भी मेल हमें मिला है। छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। चितबड़ागांव बलिया से जीसी गुप्ता, आराधना गुप्ता, नेहा निधि और आयुषी और अनुष्का। ये मेल भेजा है लालगंज रायबरेली से के साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका, ऋषु, इला और वीनस ने। कनाड प्लेस में दिल्ली से डॉक्टर अर्चना और पुरुषोत्तम। ओबरा सोनभद्र से आयुषी और शुभम। अगला संदेश हमें भेजा है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंचनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश प्रमिला बंछोर। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार से। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन। ग्राम बाघा मुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदनी देवांगन, प्रकाश देवांगन और यहीं से हैं गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन। फजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल खेरा, विशु खेरा, लड्डी खेरा, शालिनी खेरा, तिवंती खेरा, वानी खेरा, आरबी खेरा, जीवन बुक गीत। और मैं काफ़ी पुराने हमारे श्रोता हैं भूषण खेरा जी, ये जो भी संदेश भेजते हैं संदेश में लिखा रहता है बुक, जीवन बुक, तो ये समझ में नहीं आता है कि आपका नाम है या जगह का नाम है, कृपया ऐसे स्पष्ट करेंगे और कैपिटल लेटर में लिखते हुए अपना नाम लिखेंगे। यदि उस जगह का नाम है तो उसे अलग करेंगे और किसी का नाम है तो उसको उसमें शामिल करेंगे। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगले मेल जो भी आपका आएगा उसमें इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा ने भी संदेश हमें भेजा है। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, आप सभी सुनना चाहते हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की। इस गीत को हमने लिया है फिल्म राम अवतार से।

फरमाइश गीत एक्सप्रेस इसमें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। इस कार्यक्रम में अगला मेल हमें

प्रेषित किया है। इन्होंने लिखा, हम भी आपके नियमित श्रोता हैं भाई, कहने की जरूरत नहीं है। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, ये आपके मेल लगातार हमें मिलते हैं और शामिल भी करते हैं, तो ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। आप नियमित श्रोताओं की वजह से तो ये कार्यक्रम चलता है। अगला संदेश हमें भेजा है पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह, ये भी हमारे बड़े पुराने और नियमित श्रोता हैं, लेकिन इन्होंने लिखा तो नहीं है, लेकिन हम कहते हैं हाँ बिल्कुल, आप सभी सुधी श्रोता हैं, तभी ये कार्यक्रम आगे चलता रहता है। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें भेजा है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी मनवर, चेतन मनवर, विशाल मनवर और बेबी प्रियांशी। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने संदेश भेजा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ पलारी से आप हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लाल गीती गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, पूरे देश से मेल आते हैं हमारे पास। दिलदानगर गांव जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और उजस्वी यादव। भोपाल का राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया जालंधर से आपके भी संदेश जो आते हैं, हम आपसे भी गुजारिश करेंगे अगला संदेश आप जब भेजें उसे कैपिटल लेटर में भेजें, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करेंगे तो हम लोगों को भी आसानी होगी। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस पोर्ट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। वार्ड नंबर एक भोपाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान ने भी संदेश हमें भेजा है। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक और दीपिका पाठक। दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव का भी संदेश हमें मिला है। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं राम लखन फिल्म का गीत, मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है इसकी प्रतिक्रिया हमें आप जरूर लिखिएगा। हमारा पीकेएलडी का पता नोट कीजिए, pkldairvaranasi@gmail.com। पता एक बार पुनः सुन लें, pkldairvaranasi@gmail.com। इस मेल पर आपकी प्रतिक्रियाओं को हमें इंतजार रहता है। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम में अगला मेल हमें भेजा है धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू ने, बदरुद्दीन अंसारी, अनवर अली अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद, मल्लू अंसारी, अहमदनगर बजड़िया, वाराणसी से मेल भेज रहे हैं। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाना सुरलकर, ओम कुमार, कुमकुम, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अवंतिका येले, जिला खरगोन से नवद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप, रोहासी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदनी साहू, मनीष साहू, मयंक साहू और जानकी साहू। ईमेल हमें भेजा है ग्राम बहरीपुर पोस्ट राजेपुर जौनपुर से मतिवर यादव, सावित्री, ज्योति, यीशु, दीपक, गोलू और इनके परिवार के सभी सदस्य। उदिता और सुचिता ने मेल भेजा है, विश्वकर्मा ने मेल भेजा है देवरिया उत्तर प्रदेश से, अशोक विहार कॉलोनी पहाड़िया वाराणसी से अनिल गुप्ता गुण, रमा गुप्ता गुण, अंकुश कुमार गुप्ता, पूजा गुप्ता गुण, अविरल और अग्रिम गोंड, लल्लापुरा वाराणसी से अलीशा, अयान खान, अलीजा और एनुल खान, गणनौखा लालगंज रोहतास बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान, अशोक कुमार प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, राहुल प्रजापति करोता वाराणसी से, इमृति यादव ग्राम बारठी पोस्ट सकलडीहा चंदौली से, गौ लक्ष्मणी सासाराम गली नंबर 8B से, कुमारी गंगारती चौहान, राजेश कुमार अकेला, कुमारी गुड्डू चौहान और आर के सिंह चौहान, परवेज अहमद फागू सोनकर सुकुलपुरा वाराणसी से, श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती सिंह, विनायक सिंह, मोहिनी सिंह, मोहित सिंह और इनकी प्यारी कोकुरानी, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना और हसीना दिलशाद। ये मेल भेजा है शफी मोहम्मद सोलंकी, शाहरुख खान, मांगे खान, शहीद खान, ईदो कुमारी, इसरोल बाड़मेर राजस्थान से, ग्राम कुंडावल तारा पोस्ट लार रोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से रतिना त्रिपाठी, राखी, आर्या, एंद्री, ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति माताजी, निर्मला त्रिपाठी। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अधिक से अधिक मेल को शामिल करें। दत्तरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीता वर्मा व रुद्र वर्मा,

तहसील रोड गंज डुंडवारा से KH राही गुड़िया बेगम वकील प्रेमी हम्माल हम्माद जमील ने भी संदेश हमें भेजा है। आप सभी को हम सुनाने जा रहे हैं आप सभी की पसंद पर कसम फिल्म का गीत, नितिन मुकेश और आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत बप्पी लहरी का।

कार्यक्रम के अंत में आप सुनेंगे खून भरी मांग फिल्म का गीत, और इस गीत के लिए भी हमें संदेश भेजा है आप सभी श्रोताओं ने। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। गणनोखा लालगंज रोहता से राजकिशोर सिंह, बड़क सिंह, ग्राम खरवत गणनोखा से मोतीलाल गुप्ता, लाल बिहारी सिंह, बीरा सिंह। गोरोसा भैंसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुस्मिता साहू, दीपिका साहू का भी संदेश हमें मिला है।

रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और बिहारी बाबू। तो कार्यक्रम के अंत में आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर खून भरी मांग फिल्म का गीत। इंदिवर ने इस गीत को लिखा है, संगीत राजेश रोशन का, आवाज नितिन मुकेश और साधना सरगम की।

जी हाँ दोस्तों, हंसते हंसते और ऐसे कट जाए रास्ते, इसी ख्वाहिश के साथ की होगी फिर मुलाकात। फरमाइश गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जहां तक गुफाओं की बात है,

लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है, लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहां पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहां पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहां की चट्टानें चूना पत्थर से बनी हैं। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं, जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहां के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हां श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत यह भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हां, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहां के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहां पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ceiet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स

0: ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? The new tender leaves spurting out from the branches, like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely.

0: अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास।

0: संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
4: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
4: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
4: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
3: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
4: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
3: जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
4: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
4: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
4: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
4: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
4: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी, मैं आपकी

0: भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर पुल के।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
0: जी
2: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
3: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
1: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
2: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
1: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो

0: सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए डाक अदालत के संबंध में एक सूचना। पोस्टमास्टर जनरल वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी के कार्यालय में डाक सेवाओं के उपभोक्ताओं की समस्याओं शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु दिनांक 25 जून 2026 दिन 11:30 से पोस्टमास्टर जनरल की अध्यक्षता में सभागार कक्ष कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल वाराणसी परिक्षेत्र द्वितीय तल कैंट प्रधान डाकघर वाराणसी में डाक अदालत का आयोजन सुनिश्चित हुआ है। डाक से संबंधित सूचनाओं और समस्याओं के लिए आप वहां संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। उसके पहले ये संदेश।
6: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें
8: 0542227658
7: 0542227658।
5: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं कुमारी सुरुचि। कार्यक्रम के आरंभ में इनके स्वर में सुनिए रैदास की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार थी कुमारी सुरुचि। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अंशुमान महाराज का सरोद पर बजाया राग पटदीप। आपके साथ तबले पर संगति की है उदय शंकर मिश्र ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अंशुमान महाराज का सरोद पर बजाया राग पटदीप। आपके साथ तबले पर संगति की थी उदय शंकर मिश्रा ने। मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन का 1 बजने को है, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग

0: CHD कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन्स हैं।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कुछ खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार रूबी विश्वकर्मा, पत्नी झगड़ू विश्वकर्मा, ये ग्राम बड़ी माता मालवी गली थाना कोतवाली शहर जनपद मिर्जापुर की रहने वाली हैं, कहीं लापता हो गई हैं। रूबी विश्वकर्मा के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र 30 वर्ष, लंबाई लगभग 5 फीट, रंग गोरा है। इनके बाएं गाल पर गड्ढे का निशान है और ये जब लापता हुई थी इस समय आसमानी रंग का सूट पहने हुए थी। रूबी विश्वकर्मा के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। यहीं से एक और भी सूचना प्राप्त हुई है। अब्बास अली अंसारी, पुत्र स्वर्गीय गिल्लू, ये ग्राम रामपुर पड़रिया कला थाना संत नगर जनपद मिर्जापुर के रहने वाले हैं, कहीं लापता हैं। अब्बास अली अंसारी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 76 वर्ष, लंबाई 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है, डील डोल सामान्य है। अब्बास अली अंसारी के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो अपने समीप के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। यहीं से एक और भी सूचना प्राप्त हुई है। फुलरी, पति का नाम शक्ति, ये ग्राम नकटी थाना मणिहान जनपद मिर्जापुर की रहने वाली हैं। फुलरी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 52 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है, बाल इनके काले और कुछ सफ़ेद भी हुए हैं। ये जब लापता हुई थी उसमें हरे रंग की साड़ी पहने हुए थी। फुलरी के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए शेष कार्यक्रमों की

संक्षिप्त रूपरेखा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान का सरोद वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे कलाकार होंगे ए हरिहरन। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंजुमन आप सुन सकते हैं रात 9:30 पर, और वट वृक्ष कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे। कृषि जगत कार्यक्रम में

जी कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे कृषि में एआई तकनीकी की उपयोगिता विषय पर डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत। इसी कार्यक्रम में महंगीराम प्रजापति और साथी का लोकगीत भी होगा। इनका गाया लोकगीत आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात मार्गदर्शन में कानून के क्षेत्र में करियर के अवसर। इसी कार्यक्रम में यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन रोजगार सूचना और फिल्म संगीत भी होगा। फिल्म संगीत अलावा इसके आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर कंप्यूटर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में शाम 5:00 शाम 6:10 पर शाम 7:31 पर रस रंग में और रात 8:15 पर रस माधुरी कार्यक्रम में। अंग्रेजी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन 1:15 पर चर्चा गीत संगीत के अलावा बहनें सुनेंगी सामंजस्य और दायित्व विषय पर अनामिका सिंह की वार्ता। कार्यक्रम विवरण में भी आप सुन रहे थे शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। मीडियम वेव 241.54 यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में यानी ठीक 1:10 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें जिसे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुआयना किया और जख्मियों से बातचीत भी की। फॉरेंसिक टीम ने मजीद तफ्तीश और मजीद शवाहद इकट्ठे करने के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। नामा निगारों से बातचीत करते हुए लखनऊ जोन के एडीजी प्रवीण कुमार ने कहा,
1: हमें कुछ शुरुआती साक्ष्य मिले हैं, उसके बेसिस पर फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है।
2: हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर तश्कील दी गई एसआईटी में महकमा सकाफत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। इधर लखनऊ के डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इमारत को मुनद्दम करने का नोटिस जारी किया है। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ के वाकये में जान गंवाने वालों की आखिरी रसूमात में शिरकत की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत दुख की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में कोचिंग इंस्टीट्यूट के जाब्ते को मजबूत बनाने और गैर कानूनी इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू की है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत भर में फायर सेफ्टी के इकदाम का मिशन मोड में मुआयना किया जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि किसी भी इमारत को सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसके लिए उसकी मंजूरी दी गई है। तहखाने में कोचिंग सेंटर, नर्सिंग होम या किसी दूसरी तजारती सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोचिंग इदारों का सर्वे करने की हिदायत दी गई है। इसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, तलबा की हिफाजत और इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करना शामिल है। इस दौरान एक खसूसी तहकीकती टीम ने कल लखनऊ में जाए वकूअ का दौरा किया और जख्मियों से मुलाकात की। लखनऊ में आग लगने के बाद मकामी हुकाम ने कल रियासत के तमाम अजला में कोचिंग सेंटरों का फायर सेफ्टी मुआयना शुरू किया। वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस और फायर सर्विस की मुश्तरका टीम ने मुआयने के दौरान कोताहियों का पता लगाने के बाद एक कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। इस दौरान गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, प्रयागराज, जौनपुर, सहारनपुर, बस्ती, उन्नाव, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा और दीगर अजला में जांच मुहिम चलाई गई और कवायद पर अमल करने की हिदायत दी गई। मुआयना आज भी जारी रहेगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत अलनीनो की वजह से मानसून के मुमकिन मनफी असरात से निपटने के लिए किसानों की मदद के लिए पेश की तैयारी कर रही है। कल नई दिल्ली में साफियों से बातचीत करते हुए जनाब चौहान ने कहा,
3: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं

0: और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को मशविरा दिया गया है कि वो दालों, मोटे अनाज और तेल के बीजों जैसी फसलों को फरोग दें। इन फसलों को कम पानी की जरूरत होती है और ये मुश्किल हालात में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत आज बेंगलुरु में एक सरमायाकार रोड शो का एहतमाम करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ तकरीब की सदारत करेंगे। रोड शो में मुल्क भर से मारूफ सनतकार और सरमायाकार शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में बुनियादी ढांचे, ITA ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक मौजूआत पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इस तकरीब में उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी और कारोबारी मौके की नुमाइश की जाएगी और सरमायाकारों को रियासत में दस्तयाब मौके के बारे में आगाह किया जाएगा। UPTET 2026 का इम्तिहान अगले माह 2 और 4 जुलाई के दरमियान मुनक़िद होगा। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि ये इम्तिहान रियासत भर के 60 अज़ला के 955 मराकज पर मुनक़िद किया जाएगा। एडमिट कार्ड 30 जून से कमीशन की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए दस्तयाब होंगे। और महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि मशरकी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। सीनियर माहिर मौसमियात अतुल कुमार सिंह ने कहा है कि मौसम का कोई फाल निज़ाम न होने की वजह से मगरबी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मशरकी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मशरकी उत्तर प्रदेश में 28 जून से बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक काशी आनंदम होम स्टे महामंडल नगर लोहरावीर वाराणसी।
3: रोज की वही भाग दौड़, वही शहर का शोर, क्या आपका दिल भी किसी शांत और सुकून भरी जगह जाने को मचल रहा है? तो इस बार होटल की औपचारिकता छोड़िए और चले आइए काशी आनंदम होम स्टे आनंद बर्मन महामंडल नगर लोहरावीर वाराणसी, जहां आपको मिलेगा बिल्कुल आपके अपने घर जैसा आराम, प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे और अपनों सा सत्कार। काशी आनंदम होम स्टे आनंद बर्मन महामंडल नगर लोहरावीर वाराणसी। संपर्क करें 6306104289 पर।
4: सखियों के साथ,
5: सखियों के बाद,
4: सखियों के जज्बात,
5: गृह लक्ष्मी।
6: मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, सखियों हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता।
7: गृहलक्ष्मी सुनने वाली सभी सखियों को आपकी रेडियो सखी संध्या
6: और निशा का प्यार भरा नमस्कार।
7: निशा, आज के समय में ना महिलाएं देखिए हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीति ही क्यों ना हो, महिलाओं ने अपना परचम हर जगह फैला रखा है।
6: और आज है भी महिलाओं वाला दिन। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बस यही है कि विश्व भर में कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सम्मान दिया जाए।
7: बिल्कुल सही। और इतिहास से लेकर वर्तमान तक ना महिलाओं ने अपनी अद्भुत संवाद क्षमता, सहनशीलता और दूरदर्शिता के बल पर कूटनीति के क्षेत्र में अमिट छाप भी छोड़ी।

0: माँ बहन पुत्री व पत्नी के विभिन्न रूपों से साक्षात हुआ है और हमारे देश की महिलाओं ने ना विश्व पटल पर भी अपनी पहचान कायम की है।
1: और आज भारत देश के साथ साथ अगर हम अन्य देशों की भी बात करें तो महिलाएं राजदूत, विदेश मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख पद पर कार्य कर रही हैं और अपने देश को गौरवान्वित कर रही
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सही। और प्राचीन काल में ना भारत में बहुत सी विदुषियां भी हुई हैं जो आज भी आदरणीय व अनुकरणीय हैं। इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में धैर्य धारण किया और कठिन समय में अपनी कड़ी परीक्षा भी दी है और अपनी भावी पीढ़ियों व संतानों को उच्च आदर्श की थाती भी दी है। और अपना जो पत्नी के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया है और बहनों ने भाइयों को प्रेरणा भी दी है, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने को ना सदैव प्रेरित किया है। ऐसी महान माताओं, पत्नियों, पुत्रियों व बहनों के योगदान से जो है ना हमारा भारत संपन्न हुआ है और उनकी ज्ञान भक्ति वैराग से संस्कृति पुष्पित पल्लवित भी हुई है। निशा
1: बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। अगर हम देखें तो जो भारत की पहली महिला विदेश सचिव रही हैं चोकिला अय्यर जी और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी जैसी कई महिलाएं ये देश की विदेश नीति को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई इन्होंने, और उनकी कार्यशैली और नेतृत्व आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है।
0: बिल्कुल सही। और जैसे आप जानते हैं ना कि अहिल्या बाई होलकर जी जो हैं दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था और सरोजनी नायडू ने ना देश ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान बनाई थी।
1: बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो आप महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, और जब महिलाओं की बात हो रही है तो क्यों ना अपने सखियों को एक महिला उनकी तारीफ में ही एक प्यारा सा गीत सुना दिया जाए।

0: सखियों, आज महान भारतीय संगीतज्ञ और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी की जयंती है, जिसको हम हर साल 24 जून को मनाते हैं। 1897 को गुजरात के भारूच जिले के जहाज गांव में इनका जन्म हुआ था। वह हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के महान गायक और ग्वालियर घराने के प्रतिनिधि भी थे, और साथ ही BHU के संगीत विभाग के ना पहले डीन भी थे। इन्होंने जो प्रसिद्ध किताबें लिखी हैं, संगीतांजलि, प्रणव भारती की रचना की है। इन्हें 1955 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1963 में संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया गया था।
1: बिल्कुल, इनके गौरवपूर्ण इस सम्मान को और इनको हमेशा हमारा देश याद करता रहेगा।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा संध्या जी, हम लोग बात कर रहे थे महिलाओं की, तो महिलाएं जो हैं वो जो परिवार, घर परिवार का जो दायित्व होता है, और बाहर भी अगर कोई महिलाएं काम करने जा रही हैं या उनका जो भी घर पे भी अगर काम है, तो उसमें सामंजस्य बिठाना बखूबी जानती
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: सही। हाँ
1: तो क्यों ना अपनी सखियों को इसी से संबंधित एक वार्ता सुनवा दिया जाए, जिसका विषय है सामंजस्य और दायित्व। वार्ताकार हैं अनामिका सिंह।
2: महिलाओं के बढ़ते हुए दायित्व एवं उनमें सामंजस्य, आज हम इस बारे में बात करेंगे और इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जिससे महिलाएं बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को घर में और बाहर एक साथ निभा रही हैं और बहुत ही अच्छे से निभा रही हैं। आज के भागते दौड़ते माहौल में जितनी कामकाजी महिलाएं होनी चाहिए, उनमें से केवल 9% महिलाएं ही कामकाजी हैं, बाकी नहीं। महिलाएं जो बाहर काम करती हैं, चाहे वो ऑफिस जाती हैं या बिजनेस संभालती हैं, उन्हें दिन प्रतिदिन तकलीफ होती है अपना टाइम मैनेज करने में। यह एक बहुत बड़ा कारण बनता है उनके काम को सही से ना कर पाने का। हम यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके निकालेंगे जिससे वो टाइम मैनेज करने में सफल रहें और साथ ही अपना कार्य भी कुशलतापूर्वक कर सके। सबसे पहले तो हम कामकाजी महिलाएं हैं, जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। अपने समय से 1 घंटा पहले उठें ताकि आपको काम पर जाने और घर का काम निपटाने में ज्यादा समय न लगे। अपने समय से पहले उठने पर जो अति व्यस्तता के कारण आपको स्वयं के लिए समय नहीं मिल पाता है, वो समय आपको स्वयं के लिए मिल जाएगा। इस समय से आप टहलने जा सकती हैं, योगा कर सकती हैं। इसमें आप में एक अलग सी एनर्जी लेवल की प्राप्ति होती है। आज दुनिया भर में कोई कार्य क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाएं पुरुषों के बराबर ना हो। वो हर क्षेत्र में उनसे बेहतर तरीके से सिर्फ अपने कार्य को ही नहीं बल्कि अपने

परिवार समाज की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। एक महिला यदि एक अच्छी पत्नी है और अच्छी माँ है तो साथ ही कार्य क्षेत्र में वो एक सफल एवं निपुण महिला है। महिलाओं को परिवार के सभी सदस्यों को और बच्चों को भी देखना होता है, पर इसके साथ ही वो बाहर का कार्य भी पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छे तरीके से कर ले जाती हैं। देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के उत्तरदायित्व कहीं अधिक होते हैं, पर यदि वो घर के काम में कुशल हैं तो वो बाहर के काम में भी बड़ी सहजता से अपने आप को सक्षम कर ले जाती हैं। एक औरत जब घर के बाहर नौकरी या अपना स्वयं का कारोबार संभालती है तो उसके कंधों पर तिगुना भार होता है, पहला घर का, दूसरा बच्चों का, तीसरा अपने काम का। पर वो ये तीनों जिम्मेदारियों को बड़ी कुशलता पूर्वक और विनम्रता तथा धैर्य के साथ कर ले जाती है। शायद प्रकृति ने हम स्त्रियों को ऐसा बनाया ही है कि वो सभी जिम्मेदारियों को बड़ी सहजता से पूरी करने में सक्षम हो जाती हैं। नारी मन से और तन से दोनों तरह से सशक्त होती है, लेकिन इन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में वो अपना ख्याल नहीं रख पाती है। कुछ ऐसे तरीके हैं जो महिलाओं को सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने और सही समय से पूरा करने के साथ ही स्वयं के लिए भी समय निकाल पाने में सहायता करते हैं। जैसे पूरे दिन में आधा घंटा ही सही हमें स्वयं के लिए भी समय निकालना चाहिए। एकांत में बैठना, स्वयं से बातें करना, योगा करना, चिंतन करना, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा संगीत सुनना, पुराने दोस्तों से बातें करना, बाहर घूमना फिरना, पेंटिंग करना आदि बहुत सारी बातें हैं जिसे हम औरतें स्वयं को आराम देने व खुश करने के लिए कर सकती हैं। स्वयं को कभी दोष न दें, जैसे कभी कभी काम का बोझ इतना ज्यादा होता है कि हम औरतें अपने बच्चे को, परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाती, पर यहाँ पर हम दोषी नहीं हैं, क्योंकि जो भी मेहनत हम कर रहे हैं वो परिवार और बच्चों की खुशी के लिए ही कर रहे हैं, अपना 100% पूरी ईमानदारी से दे रहे हैं, तो कभी भी किसी बात के लिए स्वयं को दोषी ना समझें। एक काम और कर सकते हैं हम औरतें, सही चाइल्ड केयर, इससे भी बहुत मदद मिलती है। हम यदि अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते तो एक मददगार हम अपने घर में अपनी सहायता के लिए रख सकते हैं, उससे भी हमें बहुत मदद मिलती है। इसके साथ ही हमें सुबह की तैयारी रात में ही कर लेनी चाहिए, जैसे आटा गूंदकर फ्रिज में रख लेना, सब्जी काट कर रख लेना, बच्चों व पति की टिफिन व बॉटल साफ करके सामने रख लेना, ऑफिस के कपड़े और अपने हस्बैंड के तथा स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस करके बाहर हैंगर में लगाकर रख लेना, रूमाल, टाई, मोबाइल वगैरह चार्ज कर लेना, जूते पॉलिश कर लेना, ये सभी छोटे छोटे ऐसे कार्य हैं जिसे यदि औरतें रात में ही कर लें तो वह स्वयं तथा सबको समय से बाहर भेज सकेंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने ऑफिस वालों से अच्छे रिलेशंस बनाकर रखने चाहिए, क्योंकि वो अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं तो हम सभी औरतों को बाहर काम करने में बहुत सहायता मिलती है। महिलाएं जो बाहर कार्य करते हुए अपने घर से भी जुड़ी रहती हैं, जैसे काम के बीच में बच्चों का हालचाल फोन पर अक्सर लेते रहें, घर में सब ठीक है यह मालूम है तो हम औरतों को काम करने में और आसानी हो जाती है। इसके साथ ही जब भी मौका मिल जाए, जैसे यदि ऑफिस में छुट्टी है तो समय निकालकर हम अपने परिवार के साथ छुट्टी बिता सकते हैं, कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, इससे हमारे घर का माहौल भी खुशनुमा बना रह सकता है और हमें भी तसल्ली रहती है कि हमने काम के साथ साथ बच्चों और अपने परिवार को भी समय दिया, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। इसके साथ ही हमें लाइफ पार्टनर का भी ख्याल रखना चाहिए, उसे भी अपना एक महत्वपूर्ण समय देते हुए उसके साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हमारा लाइफ पार्टनर हमारे साथ है तो हम महिलाओं को न सिर्फ घर में बल्कि बाहर भी काम करने में सहायता मिलेगी। एक बात और महत्वपूर्ण है कि हम महिलाएं चाहे जितना भी परेशान क्यों न हो, पर उस परेशानी को हमें अपने कार्यस्थल पर नहीं ले जाना है। घर की बातें घर और ऑफिस की बातें ऑफिस में ही छोड़ने पर दोनों कार्यस्थलों पर सही तरीके से सफल रह पाएंगे। इन सब के साथ ही एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमें अपने कार्यों को मैनेज करना है, बैलेंस नहीं करना, क्योंकि बैलेंस करने में हमारा सभी कार्य सही से नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है। अपने आप को स्वस्थ और खुश रखना होगा और हमेशा आशावादी बने रहें ताकि कामयाबी मिले। हमारे कंधों पर घर व बाहर दोनों की बहुत पहाड़ जैसी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पहले स्वयं के लिए भी क्वालिटी टाइम निकालें। कहते हैं कि ब्रह्मा ने औरतों को काफी समय लेकर बनाया है, हमारी तुलना पृथ्वी से की जाती है।
जैसे धरा सभी वस्तुओं का भार लेकर है, उसी प्रकार एक औरत ही

0: घर और अच्छे समाज का निर्माण करती है। यह भी सच है कि खुद सफल है और एक पुरुष के सफल होने के पीछे भी कहीं न कहीं एक औरत ही होती है, फिर चाहे वो बहन हो, माँ हो या पत्नी हो। महिलाओं के साथ एक चीज और चलती रहती है कि वो विनम्र और भावुक होने के कारण सभी को जरूरत से ज्यादा महत्व देती हैं, जिसे उन्हें बंद करना होगा। हम किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व तब देते हैं क्योंकि हम मिलनसार हैं, या हम अगले को दुखी नहीं करना चाहते, या फिर वो हमारा रिश्तेदार है तो उसे हमारी कोई बात बुरी ना लगे। पर जब हमारी यही जरूरत से ज्यादा महत्व देना, यदि अगला आदमी जब हमारी किसी भावना की कद्र नहीं कर रहा है तो दुखी कर देता है। घर में हो या बाहर से हो, किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व ना दें। कोई भी इंसान हम औरतों की जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, पर वो हमारी पूरी जिंदगी नहीं है। हमारी जिंदगी हमारी है, हमें जीने के लिए स्वयं का आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। घर हो या बाहर हो, कहना सीखना होगा नहीं। अक्सर महिला किसी बात को मना नहीं कर पाती हैं, वो स्वयं के मन से हारती हैं। बाहर के कार्य की चुनौतियों से ज्यादा पस्त वो उतना नहीं होती जितना स्वयं के अंदर के मन से वो हार जाती हैं। ऐसा न होने दें, तभी आप एक सफल नागरिक साबित होंगी। मत सोचिए कि जमाने को क्या गवारा है, ये मंजिल भी हमारी है, ये रास्ता भी हमारा है। कामकाजी महिला हो या घरेलू महिला, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना सीखना होगा। अक्सर हम दूसरों की बात सुनकर भावनाओं में बह जाते हैं। भावनाओं में बहने से पहले ये जानना जरूरी है कि सामने वाला इंसान हमसे सच कह रहा है या दुखी होने का दिखावा कर रहा है। बाहर जहां हम महिलाएं कार्य करती हैं, वहां तो बिना जाने समझे किसी की बात में ना आए, अपना आपा ना खोए। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना रिमोट स्वयं के पास रखना है, मतलब दूसरों की बातों में नहीं आना है। मेरे लिए क्या सही है पहले यह देखना है। घर हो या ऑफिस हो या समाज हो, सतर्क होना सीखें ताकि हमारा कोई भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल न कर सके। कामकाजी महिला हो या घरेलू महिला, हमें स्वयं पर विश्वास रखना होगा। कई बार ये होता है कि हमें अपने आप से ज्यादा दूसरों पर विश्वास होता है, यह नहीं होना चाहिए। स्वयं पर कॉन्फिडेंस करिए, तभी हमारा आत्मबल भी बढ़ेगा। हो सकता है कि ऐसा करने पर हम और ज्यादा कामयाबी हासिल कर ले जाएं। आई विल डू इट रियली, ये सोचकर आगे बढ़ें। और गलतियां तो सबसे होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। सफल होने के लिए हम महिलाओं को अपना विल पावर भी बढ़ाने की जरूरत। हाँ ठीक है, मैं विशाल वृक्ष नहीं हूँ तो क्या, पर आंगन में रहने वाली तुलसी भी किसी से कम नहीं होती। क्या यह सोच रखते हुए और मुस्कुराते हुए आगे का सफर नहीं तय कर सकते? यकीन करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। अपनी महत्ता साबित करना भी एक कला है, इसे बरकरार रखते हुए आज की नारी बहुत सारी उलझनों को पार करते हुए अपने भीतर बाहर सभी जिम्मेदारियों का बड़ी ही सहजता से पूरा करने में, एक सफल नागरिक साबित होने में आगे बढ़ती ही चली जा रही है।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थी वार्ता। वार्ता का विषय है सामंजस्य और दायित्व। वार्ताकार हैं अनामिका सिंह।
2: अच्छा संध्या जी, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, आज के समय में जो काम इतना सारा हो जा रहा है, कभी बाहर जाना, तो ऐसे में बहुत तनाव हो जाता है, चिंता हो जाती है ना?
1: बिल्कुल सही। और देखिए ना, आजकल तो इतना ज्यादा काम का प्रेशर हो गया है ना कि मुझे नहीं, मानसिक रूप से इतना ज्यादा तनाव हो जाता है ना कि,
2: और इस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर हम खान पान भी हमारा जब इधर उधर होता है, कभी हम काम के वजह से खाना भी अच्छे से नहीं खा पाते हैं, उसको भी इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना कि हम बहुत ज्यादा तनाव लेने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा संतुलित नहीं रह पाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और जब बीपी बढ़ जाता है ना, तो काम में मन भी नहीं लगता है निशा, है ना? और इधर उधर पता लगता है जिस काम को हम करने जा रहे हैं वो काम भी जो है गलत हो जाता है, और मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है, और ये हो जाता है कि चलो अब कुछ ना कुछ इसके जो है ऑप्शन में हम लोग दवाइयाँ ले लें
2: जी।
1: तो हमें इन सब चीज़ों से देखो थोड़ा बहुत बचना चाहिए, कि हमें प्रेशर नहीं लेना चाहिए।
2: और ब्लड प्रेशर हाई भी है और लो भी, और दोनों ही खतरनाक है, इसे साइलेंट किलर भी इसीलिए कहा गया है।
1: और इसलिए हम कह रहे हैं ना कि अपनी सखियों से कि तनाव थोड़ा कम करिए, और इस तनाव को कम करने के लिए अपने को कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में जरूर व्यस्त करिए। वो चाहे योगा करिए, चाहे कुछ अपने घरेलू चीजें बनाइए। कुछ नहीं है तो जैसे खान पान की चीजें ना, कुछ अलग अलग आइटम ही कुछ बनाया जाए,
2: या फिर जो भी आपको अच्छा लगता हो अपने लिए करने के लिए, तो वो जरूर कीजिए। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, और ऐसा हर कुछ सब कुछ कीजिए जो आपको खुशी देता है।
1: बिल्कुल। और इसके साथ

0: सात ना ना 7-8 घंटे गहरी नींद भी जरूर
1: जी वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि
0: लीजिए।
1: थोड़ा आराम के बाद ही हम फिर रिफ्रेश हो पाते हैं और नए काम पे लग पाते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सही। और इसके लिए जो है ना, हम मुझे लगता है अपनी सखियों को थोड़ा बहुत जो है ना म्यूजिक भी सुनना चाहिए।
1: बिल्कुल, हम कितना भी तनाव में हो, अगर अच्छा सा गाना सुन लेते हैं ना, तो
0: हाँ
1: तनाव थोड़ा तो दूर हो ही जाता है। तो अपने सखियों को भी ये अच्छा सा गीत सुना दिया जाए।

0: सच में संध्या जी, जब कोई अच्छा सा साथी साथ में हो, जैसे कि हमारी सखियाँ और हम सब, आप सब, तो सच में अच्छा हो जाता है, खुशनुमा माहौल हो जाता है ना?
1: हाँ बिल्कुल, और सही कहा है ना कि समय के साथ जो है ना चलना बहुत आवश्यक है। देखिए ना, प्यारा सा गाना भी हम लोगों ने सुना और
0: हाँ
1: कितनी सारी सखियों से अपनी बातें भी करी है ना।
0: हाँ अच्छा देखिए, डाव परिवर्तन जो है ना, हमेशा हम लोग देखते हैं कि मौसम भी बहुत तेजी से बदलता है। अभी तो फिलहाल तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन परिवर्तन जो है ना, वो प्रकृति का नियम है।
1: बिल्कुल
0: दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ बदल रहा है, नई तकनीकें आ रही हैं, है ना, और जीवन शैली भी बदल रही है, सोचने समझने के तरीके भी विकसित हो रहे हैं। ऐसे में अगर हमें आगे बढ़ना है, लोगों के साथ चलना है, तो सफलता पानी है अगर, तो समय के साथ चलना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा, और समय कभी ना किसी के लिए नहीं रुकता है, मगर

0: हम समय के महत्व को समझते हैं ना, तो उसके अनुसार हमें खुद को भी ढाल लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा हर काम हर जो एकदम सही समय से हो और सुचारू रूप से भी हो ना, एकदम
1: बिल्कुल
0: बहुत अच्छे तरीके से, और हम कहीं किसी से पीछे भी ना छूटें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लें।
1: हाँ। अच्छा, समय के साथ चलने का मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी संस्कृति मूल्यों को छोड़ दें, यानी कि जो पहले से पारिवारिक चला आ रहा है, हमारी संस्कृति में जो सिखाया गया है उसको छोड़ना भी नहीं है, उसको साथ लेके चलते हैं, और इसके साथ अपनी जो जड़ें हैं उसको अपने साथ रखना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें नई चीज़ों को स्वीकार भी करना है।
0: बिल्कुल सही कहा। और नई चीज़ें जब हम लेके चलेंगे ना, तो बहुत सी चीज़ें हम लोगों को देखने को और सुनने को भी मिलती हैं कि
1: हाँ
0: हाँ ये चीज़ें हैं। और जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं ना,
1: हाँ
0: तो बहुत सी चीज़ें देखना सुनना समझना, और इस सब चीज़ों
1: हाँ
0: को हम लोगों को जरूर जो है लेके चलना चाहिए
1: अब
0: ना।
1: डिजिटल लेन देन भी होने लगे हैं,
0: हाँ
1: तो जितनी चीज़ें ये सब अगर तकनीकी आई हैं वो हमारे काम को और भी सरल बना दी हैं,
0: बिल्कुल
1: तो अगर हमको हम इसको सीखते हैं, इसको अपने साथ लेके चलते हैं, तो हमारा काम ही आसान हो जाता है। अब देखिए ना, समय के साथ हमें ये घड़ी भी बता रही है कि समय के साथ चलना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल
1: तो आज के लिए सखियों बस इतना ही, हम अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी निशा को।
0: और संध्या को
1: नमस्कार
0: नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।

0: रोज की वही भाग दौड़, वही शहर का शोर। क्या आपका दिल भी किसी शांत और सुकून भरी जगह जाने को मचल रहा है? तो इस बार होटल की औपचारिकता छोड़िए और चले आइए काशी आनंदम होमस्टे, आनंद बर्मन, महामंडल नगर, लहुरावीर, वाराणसी, जहां आपको मिलेगा बिल्कुल आपके अपने घर जैसा आराम, प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे और अपनों सा सत्कार। काशी आनंदम होमस्टे, आनंद बर्मन, महामंडल नगर, लहुरावीर, वाराणसी। संपर्क करें 6306104289 पर।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे काशी आनंदम होमस्टे, महामंडल नगर, लहुरावीर, वाराणसी। अभी महिलाएं सुनने थे अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और आज के कलाकार हैं महंगी राम प्रजापति और उनके साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए ये दादरा।

इस दादरा के बाद अब आइए सुनते हैं खेमटा कलाकार एक बार फिर, महंगीराम प्रजापति और उनके साथी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +989128101915। दूसरा नंबर है +989128101909। तीसरा नंबर +989128101902। और चौथा नंबर है +989932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक

0: वेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन
0: है। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और

0: विश्वविद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। दो दिन के उत्सव में देश विदेश

0: के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कॉम्पेयर्ड प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत।
2: कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम लेकर एक बार फिर लीजिए हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी रिट दोस्त पूजा। किसी के आने की आहट पर पलकों का यूं ही उठ जाना, मोबाइल की हर टोन पर दिल का धड़कना कि शायद उनका कोई पैगाम आया हो, और घड़ी की सुइयों को देखकर वक्त को थोड़ा जल्दी बीतने की गुजारिश करना। जी हाँ, हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दोस्तों किसी न किसी चीज की राह तकने में बीत जाता है। कभी बचपन में पापा के दफ्तर से लौटने का इंतजार, कभी करियर में एक सही मौके का इंतजार, और कभी कभी किसी ऐसे शख्स का इंतजार जिसके आने से हमारी अधूरी सी जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। कहते हैं ना कि मोहब्बत का असली स्वाद तो उस इंतजार में ही छुपा है। जो मिल जाए वो तो बस एक पल है, लेकिन जो न मिले वो हर पल का इंतजार है। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हमारी बातें भी इसी इंतजार के इर्द गिर्द घूमेंगी, और गीत भी वही होंगे जो इस एहसास को और गहरा कर देंगे। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं जो इंतजार की हर करवट को बयां करता है। सुनते रहिए कुछ बातें कुछ गीत।

कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज बात हो रही है इंतजार की। दोस्तों, पुराने जमाने का इंतजार कितना जादुई होता था ना, जब डाकिया चिट्ठी लेकर आता था, हफ्तों का वो सब्र, वो डायरी के पन्नों पर दिन काटना, उस इंतजार में एक अलग ही सुकून था। आज के इस डिजिटल दौर में जहां सब कुछ इंस्टेंट हो गया है, 2 मिनट नूडल्स से लेकर व्हाट्सएप के ब्लू टिक तक, वहां शायद हमने इंतजार की उस मिठास को कहीं खो दिया है। अब तो अगर कोई 2 मिनट रिप्लाई न करे तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। पर सच कहूं, इंतजार भले ही तकलीफ देता हो, लेकिन ये हमें अपनों की अहमियत भी सिखाता है।

कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप मेरे यानी पूजा के साथ। यूं ही तो नहीं होती मुलाकातों में खुशियां, यूं ही तो नहीं होती मुलाकातों में खुशियां, कुछ लम्हे तो इंतजार के भी हसीन होते हैं। दोस्तों, चाहे करियर का इंतजार हो, किसी के प्यार का हो या जिंदगी में अच्छे दिनों का, सब्र रखिए, क्योंकि वक्त चाहे जैसा भी हो बदलता जरूर है। पतझड़ के बाद बहार का इंतजार ही तो पेड़ को जिंदा रखता है।

शाम ढले जब चाय का धुआं उठता है तो खिड़की के बाहर ताकती आंखें अक्सर किसी पुराने वादे को याद करने लगती हैं। वो घुटनों पर रखी कोई अधूरी किताब, वो मोबाइल स्क्रीन पर बार बार जाता हमारा ध्यान और दिल का एक अजीब सा कोना जो कहता है कि बस थोड़ी देर और, वो आते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि ये इंतज़ार हमारी ज़िंदगी में कितनी अजीब भूमिका निभाता है। हम चाहे ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर हों, हम हमेशा किसी न किसी चीज़ की राह तक रहे होते हैं। कोई अपनी पहली नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहा है, कोई बरसों बाद घर लौटने वाली उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है, तो कोई किसी

मोड़ पर खड़े होकर उस एक इंसान का इंतजार कर रहा है जिसने कभी मुड़कर देखने का वादा किया था। इंतजार और हमारा नाता बड़ा पुराना है, ये हमें तोड़ता भी है और यही हमें उम्मीद से जोड़ता भी है।

0: किताबे इश्क में हर वो सफ़ा हसीन होता है जहाँ किसी के लौट आने का यकीन होता है। चाहे जिंदगी में अच्छे दिनों का इंतजार हो, कामयाबी का हो या किसी के प्यार का, बस अपने दिल में उम्मीद का दिया जलाए रखिए। दोस्तों, हमारी पूरी जिंदगी ही तो एक इंतजार है ना। बचपन में संडे का इंतजार, स्कूल के बाद छुट्टियों का इंतजार, जवानी में करियर का इंतजार, और इन सब के बीच दिल के किसी कोने में छुपा हुआ उस एक शख्स का इंतजार जिससे मिलकर हमारी जिंदगी मुकम्मल होती है। कहते हैं कि जिसे जो चीज बिना इंतजार के मिल जाए वो उसकी कद्र करना भूल जाता है। शायद इसीलिए खुदा खूबसूरत चीजों से पहले थोड़ा इंतजार लिख देता है। दोस्तों, अब समय हो गया है कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। अपनी रेडियो दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए और अपनों की राह तकते रहिए, क्योंकि इंतजार में जो मजा है ना, वो कहीं नहीं। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कॉम्पेयर प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत।

यह कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। नेत्रदान को परिवार की परंपरा बनाए, नेत्रदान का संकल्प आज ही ले। ज्योति वह अमूल्य उपहार है जो आप ही दे सकते हैं। दृष्टि के आनंद को बांटिए। जीवन जीते रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। नेत्रदान महादान। नेत्रदान करेंगे दुनिया फिर से देखेंगे। नेत्र महादान, महादान जो आपको बनाता है महा

मीडियम वेव 241.54 मीटर, यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं संपन्न हो रही आज की हमारी पहली सभा। शाम 5 बजे दूसरी सभा आरंभ होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम एफ 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज, डीटीएच, ओटीटी वेव्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। शाम के 5 बजे आरंभ होती है आज की हमारी सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में सुने फिल्म संगीत।

अभी अब येसुदास की आवाज़ में फिल्म नैया का गीत सुने थी। अब आइए सुने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म चंबल की कसम का एक गीत। गीतकार हैं सहलू ध्यानवी और संगीतकार खयाम।

और अब कार्यक्रम के अंत में आए सुने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म हाथी मेरे साथी का एक गीत। शब्दकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: वाड़ी में मैं हूँ मोनी।
1: और मैं आलिया। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और दोस्तों, आज भी आपके लिए हमारे युवाणी कार्यक्रम में है बहुत कुछ खास, जैसे कि कुछ रोचक जानकारियां और मार्गदर्शन। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम में 241.5 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर शाम के 5:15 में है। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: गिरकर उठना ही जिंदगी की पहचान है, हर मुश्किल में छुपा नया अरमान है।
1: हार मत मानो, बढ़ते रहो हर कदम, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली शान है।
0: एक बार फिर इन्हीं मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम

सुनो, गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर

0: पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: दोस्तों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस के अवसर पर उन महिलाओं को नमन करते हैं जिन्होंने विश्व कूटनीति के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, नेतृत्व और दूरदर्शिता से महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
5: कूटनीति केवल देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह शांति, सहयोग और वैश्विक विकास की आधारशिला भी है। लंबे समय तक यह क्षेत्र पुरुष प्रधान माना जाता रहा, लेकिन आज महिलाएं राजदूत, विदेश मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रमुख और नीति निर्माता के रूप में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।
4: बिल्कुल, और महिला कूटनीतिज्ञों ने संघर्षों के समाधान, मानवाधिकार की रक्षा, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विश्व समुदाय का मार्गदर्शन किया है। उनकी संवेदनशीलता, संवाद कौशल और समावेशी दृष्टिकोण ने कूटनीति को अधिक प्रभावी और मानवीय बनाया है।
5: भारत की भी अनेक महिला राजनयिकों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनकी उपलब्धियां नई पीढ़ी की महिलाओं को नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती हैं।
4: अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस हमें यह संदेश देता है कि वैश्विक निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं का समान और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करना ही समय की आवश्यकता है। जब महिलाओं को नेतृत्व के अवसर मिलते हैं, तब समाज और विश्व दोनों अधिक संतुलित, न्यायपूर्ण और शक्तिशाली बनते हैं।
5: आइए दोस्तों, इस अवसर पर हम महिला कूटनीतिज्ञों के योगदान को सम्मान दें और एक ऐसे भविष्य के निर्माण का संकल्प लें जहां कूटनीति के हर स्तर पर महिलाओं की आवाज को समान महत्व मिले।
4: बिल्कुल, और इसी के साथ साथ दोस्तों, आज हम भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान साधक, विलक्षण गायक और संगीत शिक्षा के अग्रदूत पंडित ओकारनाथ ठाकुर की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्ण स्मरण कर रहे हैं।
5: दोस्तों, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का नाम भारतीय संगीत जगत में अत्यंत सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। उनका जन्म 24 जून 1897 को हुआ था। वे केवल एक महान गायक ही नहीं बल्कि संगीत को जन जन तक पहुंचाने वाले प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी थे। उन्होंने संगीत को मनोरंजन का साधन मात्र नहीं माना बल्कि उसे आत्मा की अभिव्यक्ति और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम समझा।
4: बिल्कुल, पंडित जी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को परंपरा की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी गायकी में स्वर की शुद्धता, भावों की गहराई और प्रस्तुति की अद्भुत शक्ति दिखाई देती है। कहा जाता है कि जब वे गाते थे तो श्रोता संगीत की भावधारा में पूरी तरह डूब जाते थे। उनकी प्रस्तुतियाँ केवल संगीत कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती थी।
5: उन्होंने संगीत शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनेक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि संगीत व्यक्ति के चरित्र निर्माण और मानसिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है।
4: पंडित ओकारनाथ ठाकुर ने भारतीय संस्कृति और संगीत को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उनके योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं और आज भी संगीत प्रेमियों के लिए वे प्रेरणा का स्रोत हैं।
5: उनकी जयंती हमें यह संदेश देती है कि समर्पण, साधना और निरंतर अभ्यास के बल पर किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है। संगीत के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणादायक रहेगा।
4: जी दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों, वक्त चला है इस गीत का।

0: दोस्तों, अब वक्त हो चला है मार्गदर्शन का, जिसका विषय है कानून के क्षेत्र में करियर के अवसर। आइए सुने एडवोकेट अनुपम द्विवेदी से आशुतोष कुमार की ये बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे युवाणी कार्यक्रम के मार्गदर्शन सेगमेंट में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, कानून के क्षेत्र में करियर के अवसर। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी जी, आपका युवाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: अनुपम जी, सबसे पहले युवाणी के श्रोताओं को अपने बारे में और कानून के क्षेत्र में अपने अब तक के सफर के बारे में बताइए।
2: जी, मेरा नाम अनुपम द्विवेदी है और मैं जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी में प्रैक्टिसरत हूं अभी। और आपका जो ये प्रश्न है, ये बड़ा, मतलब आप कहें मुझे गूजबम्स फील होते हैं इसका जवाब देने में, क्योंकि मैं वकालत के क्षेत्र में अपनी इच्छा से आया हूं। मतलब
1: जी
2: वास्तविक परिस्थिति ये है कि आज के समय में लोग वकालत को लास्ट ऑप्शन चुनते हैं, लेकिन वकालत का क्षेत्र बड़ा ही कह सकते हैं आप मैग्निफिसेंट है, और
1: जी
2: बड़ा आनंद आता है मुझे वकालत करने में। इसलिए मैं इच्छा से अपनी वकालत में आया, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 2010 से 13 ये मेरा समय रहा जब मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की धरती से लॉ स्कूल बीएचयू से मैंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की।
1: जी
2: और 2010 में जब फर्स्ट ईयर में पास आउट हुआ, तो उसके बाद से ही 2011 से मैं न्यायालय आना शुरू कर दिया। और मेरे सीनियर हुआ करते थे, जो अभी भी इस समय जिला न्यायालय में प्रैक्टिसरत हैं, एडवोकेट अनिल सिंह जी, वो उस समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर हुआ करते थे। और हमारे गुरुजी की ये देन है, मैं उनको हमेशा साधुवाद देता हूँ। उनका और उनकी टीम के साथ मैं काम करता था, मैं विधि प्रशिक्षु था उनके साथ। और उनके यहाँ चैम्बर जाना, रात रात तक चैम्बर में रुकना, पढ़ाई लिखाई करना, हम लोग पागलपन की तरह वकालत करते थे। वो आनंद, वो मतलब जुनून होता था वकालत करने में, आज भी है, वो होता था। तो वही मुझे यहां तक लेकर आया। उस समय एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस चलता था, वो केस लॉ आप तो सुप्रीम कोर्ट से भी डिसाइडेड है, तो इसलिए बोल सकता हूं उसके बारे में। उस समय केस चलता था इटालियन हत्याकांड का,
1: अच्छा
2: स्टेट वर्सेस टोमैसो ब्रूनो एंड अदर्स। उस केस, वो 2015 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो गया, और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो लीगल प्रिंसिपल आया कि सीसीटीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस, तो सीसीटीवी फुटेज। तो वो हम लोग प्रोसिक्यूशन साइड से थे, हमारे अनिल सिंह साहब जो है वो, उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया था। कुछ ऐसी रूलिंग्स मैंने दी थी जो उस समय जो वर्तमान एडीजे 14 हुआ करते थे, जो अभी ऑनरेबल जस्टिस हैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आर एम एन मिश्रा साहब, वो उस समय एडीजे 14 हुआ करते थे वाराणसी में। और मैंने कुछ एक दो जजमेंट्स दिए थे ऑन मोटिव पर, मुझे आज भी याद है, जी पार्श्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें कहा गया था कि इफ मोटिव इज एबसेंट तो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के चेन कोलैप्स नहीं होंगे। तो वो जजमेंट में इन्वॉल्व हुआ था, तो मैं बड़ा प्रोत्साहित हुआ था। और उसके बाद फिर वहां से एक समय शुरू हुआ, 23 जुलाई सन 2011 को जजमेंट आया, हम लोग जीते, और वहां से हमारा सफर शुरू हुआ।
1: मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आज के युवा हैं जो 12वीं में पढ़ रहे हैं, कानून को करियर के रूप में चुनना चाहते हैं, तो उनके पास क्या क्या विकल्प है, उन्हें कौन से सब्जेक्ट चुनने चाहिए या फिर कौन से एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, उसका जरा विस्तार में बताएं।
2: देखिए, ऐसा है कि लॉ के परिप्रेक्ष्य में अगर आप जाना चाहते हैं या उस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो इसके दो ऑप्शंस हैं। एक तो या तो डायरेक्टली, आज जो वर्तमान समय है, एक डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट के बाद 5 ईयर लॉ कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, एक ये विषय है। दूसरा, ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर कोई आदमी ग्रेजुएट है और उसके बाद उसका मन हुआ कि नहीं साहब हमको लॉ करना है, तो 3 ईयर कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने 3 ईयर कोर्स किया था। तो 5 ईयर कोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं, तो प्राइमरली इसके लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश्ड हैं, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एफिलिएशन के हिसाब से हैं, उनके नॉर्म्स के हिसाब से। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का एक कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है, जिसको कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट बोलते हैं, क्लैट जिसको कहा जाता है साधारण भाषा में। तो क्लैट की परीक्षा बच्चे देते हैं, और मेरिट के हिसाब से उनको, जैसे एनएलएसआईयू बैंगलोर है, एनएलएसआर हैदराबाद है, तमाम कॉलेजेस हैं, तो ये कॉलेजेस उनको उनके मेरिट के हिसाब से दिए जाते हैं। तमाम नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं हमारे। अगर आप नजदीक देखें तो सबसे नजदीक जो है वो राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। तो इस तरह से है। और 3 ईयर की बात अगर करें, तो हर यूनिवर्सिटीज का अपना जो है 3 ईयर का एग्जामिनेशन होता है। जैसे मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया, तो उनका अब आज के समय में वो सीयूईटी से लेते हैं एग्जामिनेशन, वो कॉमन, हाँ, जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो उस तरीके से। लेकिन हर यूनिवर्सिटीज का अपना अलग फैकल्टी है, अपनी अलग व्यवस्था है। आप वहाँ सीयूईटी के मेरिट के हिसाब से आप वहाँ जो है, आपको कॉल लेटर्स आएंगे, आप जाइए और काउंसलिंग अटेंड करिए, फिर एडमिशन लीजिए।
1: अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे जुलाई 2024 से आईपीसी सीआरपीसी हटा के बीएनएस आ गया, इससे दोनों में पढ़ाई में कुछ अंतर आया है? जो छात्र पहले आईपीसी सीआरपीसी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, तो अभी जो छात्र पढ़ रहे हैं, तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनमें क्या अंतर आ गया है?
2: जी देखिए, आप जो ये बात आईपीसी सीआरपीसी और बीएनएस या बीएनएसएस की कर रहे हैं, तो पहले मैं ये बता दूं कि ये स्पेसिफिकली लॉ ऑफ क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि विधि के अध्ययन के क्षेत्र में कई सारे डिविजन्स हैं, वो सिविल है, कॉर्पोरेट है, और बस अगर ब्रॉडली कहा जाए तो सिविल और क्रिमिनल, अगर ब्रॉडली, तो ये जो आप बात करें क्रिमिनल से संबंधित है। पहले आईपीसी और सीआरपीसी हुआ करते थे। आईपीसी 1860 का था,
1: जी
2: ठीक है, सीआरपीसी अमेंड होते होते 1973, लेकिन सीआरपीसी और आईपीसी में जो लॉज थे वो जो कॉलोनियल रूल
1: हाँ,
2: था,
1: कॉलोनियल लॉज
2: जो
1: हाँ
2: अंग्रेजों का नियम था, उसी के हिसाब से चीजें चली आ रही थी। बीएनएस और बीएनएसएस 2023 जो आया, बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये
1: जी
2: दोनों 2023 के हैं। बीएनएस आईपीसी को सब्स्टिट्यूट किया और बीएनएसएस सीआरपीसी को।
1: ओके
2: अब ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि आईपीसी और सीआरपीसी में डिफरेंस, या बीएनएस या बीएनएसएस
1: जी
2: में
1: जी
2: डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों को जब ले आया गया तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि देखिए एक बात, एक किसी विद्वान ने कहा था कि क्राइम इज द इंडेक्स ऑफ सिविलाइज सोसाइटी। ये बड़ा आयरॉनिकल स्टेटमेंट है, लेकिन मैं इसको कहीं ना कहीं जो है समझ सकता हूं कि नहीं, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आता है सही। क्यों? क्योंकि समय के साथ जब चीजें बदलती जाती हैं तो लोगों के क्राइम करने के तरीके भी बदलते जाते हैं, जो क्राइम क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं। हालांकि हमारे यहाँ रिफॉर्मेटिव थ्योरी होती है, तो इसलिए जो है समय बदला, चीजें बदली, तो नए कानून की आवश्यकता होती है। परिवर्तन संसार का नियम है। तो उसी के तहत सरकार ने इसको जो है चेंज किया और लेजिस्लेचर ने हमारे ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया बीएनएस और बीएनएसएस को। अब दूसरा प्रश्न अगर आप समय दें तो
1: जी
2: देखिए, बीएनएस और बीएनएसएस में जो हमारे युवा हैं उनके लिए ये है कि देखिए

0: कानून दो तरीके से होता है,
1: जी
0: एक सब्सटेंटिव पोजीशन होती है या सब्सटेंटिव पोर्शन होता है और एक प्रोसीजरल पोर्शन होता है। मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि मैंने कोई अपराध किया,
1: जी
0: मान लेते हैं चोरी किया हमने, एक उदाहरण के लिए कहते हैं, तो अगर चोरी की हमने तो उस चोरी की सजा क्या होगी, ये बताएगा सब्सटेंटिव पोर्शन जो बीएनएस है या आईपीसी था पहले। अब उस चोरी तक कितने सजा की निर्धारण होगी या हम दोषमुक्त होंगे, मतलब हमको रिहा किया जाएगा, इस तक पहुंचने का जो प्रोसीजर है उसको बताएगा प्रोसीजरल लॉ, जो पहले सीआरपीसी होता था अब होता है बीएनएसएस। ये होता है कानून का दो तरीका, कानून के दो पार्ट।
1: कानून की पढ़ाई करने के बाद युवाओं के लिए कौन कौन से प्रमुख करियर विकल्प उपलब्ध हैं?
0: जी देखिए, एलएलबी करने के बाद आप तुरंत वकील तो बन सकते हैं,
1: ठीक है,
0: और
1: लेकिन उसके लिए भी बार एग्जाम देना पड़ेगा।
0: हाँ हाँ, उसी पर आ रहा हूँ। आपका रजिस्ट्रेशन होगा जिस स्टेट से आप हों उस स्टेट से आप करा सकते हैं, या आप कहीं और रहते हो, जैसे दिल्ली में भी बहुत सारे लोग कराते हैं, अदर भी आपका वहां निवास होना चाहिए
1: जी।
0: तो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के उपरांत ऑल इंडिया बार काउंसिल का एक एग्जामिनेशन होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है इसको, और
1: हर साल होता है।
0: हाँ, ये हर साल होता है, बल्कि साल में कई बार होता है,
1: साल में
0: हाँ, दो तीन बार होता है, दो बार संभवतः होता है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो भी 2010 या उसके बाद के पास आउट लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको वो एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन दो साल के लिए प्रोविजनल होता है, ठीक है, विद इन टू ईयर आपको जो है वो एग्जामिनेशन पास कर लेना है, अदरवाइज यू विल नॉट एलिजिबल टू गो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एंड डू द प्रैक्टिस, आप एलिजिबल नहीं है, तो आपको वो एग्जामिनेशन विद इन टू ईयर पास कर लेना है।
1: मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जा सकते हो, लेकिन
0: नहीं आप है नहीं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोविजनल है,
1: प्रोविजनल है, ओके।
0: हाँ, जो ही आप एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं फिर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दी जाती है,
1: ओके,
0: जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर है। तो ये है आपके एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया एडवोकेट्स एक्ट के हिसाब से।
1: जी, कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ या सिविल लॉ, इसमें क्या अंतर और फिर किस तरह की संभावना है?
0: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जब बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, बच्चे इंटर्नशिप करने आते हैं, तो प्राइमरली उनका प्रश्न होता है कि सर हम क्या करें। देखिए, कुछ बातें तो ऐसी होती हैं कि जिसमें स्वयं का डिसीजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और आपको भी ये देखना होगा कि हमारा इंटरेस्ट क्या है।
1: हाँ।
0: क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं होता जैसे मेडिकल की पढ़ाई में होता है कि नहीं साहब एमबीबीएस किए तो आप फिर लास्ट में जाते जाते साहब आपका एक सब्जेक्ट हो गया कि साहब आप ईएनटी हैं कि आप कार्डियोलॉजी है कि ऑर्थोपेडिक्स है, ऐसा होता नहीं, फिर जाके आप उससे एमएस या एमडी करते हैं फिर डीएम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो वो तो फिर एलएलएम में जाके होता है, यहाँ अभी एलएलबी में जनरलाइज वे में आपको सब पढ़ाया जाता है, वहां से, क्योंकि वकील बनने के लिए सिर्फ एलएलबी रिक्वायर्ड है, तो उसके बाद अब आपको किस फील्ड में जाना है उस हिसाब से आपको सीनियर का चुनाव करना है, उस हिसाब से आपको उस फील्ड की चीजों को पढ़ते रहना है, माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के तमाम जो रूलिंग्स आती हैं, जो जजमेंट्स आते हैं उसको पढ़ना होगा, आपको उससे संबंधित कानून पढ़ने होंगे, आपको अपने आप को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना होगा। पहली बात तो देखिए, एक चीज मैं ये सभी को एक मतलब मेरा ये अपना सुझाव है, व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, लेकिन बेसिक जो ब्रॉड डिस्टिंक्शन है कानून के विषय का वो है सिविल और क्रिमिनल। कॉर्पोरेट लॉ भी सिविल का ही एक हिस्सा है, और कॉर्पोरेट लॉ के कुछ ऐसे प्रोसिक्यूशन के इश्यूज होते हैं जो क्रिमिनल लॉ में भी आते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते, जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में कहा था कि साहब आप कंपनी के नाम पर या कंपनी रूपी पर्दे के पीछे कोई अपराध करके बच नहीं सकते, तो क्रिमिनल लॉ आ गया यहाँ पे। तो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक रूलिंग था इसमें, जैसा हाँ ऑनरेबल जस्टिस ने कहा था। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो है अगर कॉर्पोरेट में जैसे जाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीपीसी नहीं पढ़ेंगे। सीपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ ऑफ सिविल मैटर्स, जो सिविल प्रोसीजर कोड है। तो बच्चे क्या करते हैं कि कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं तो वो सीपीसी ध्यान नहीं देंगे, या वो सिर्फ कंपनी लॉ पढ़ेंगे या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, नहीं, सीपीसी पढ़ना अनिवार्य है। तो बेसिक जो आपका रिक्वायरमेंट है उसको जरूर फुलफिल करना चाहिए, बेसिक पढ़ाई आपकी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो अब रही बात आपको कि किस फील्ड में जाना है, ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, आपके सीनियर के चुनाव पर निर्भर करता है, और मोर ओवर आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि आप किसमें जाना चाहते हैं।
1: ये सरकारी सेवाएं और पब्लिक सेक्टर में अगर क्या अवसर हैं?
0: बहुत बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटीज है, और मैं आपको बताऊं कि वकालत तो एक ऐसे मतलब लॉ का फील्ड तो एक ऐसा फील्ड है, लॉ का फील्ड अगर कहा जाए तो इसमें तो जितना आप एजेड होते जाते हैं आपकी कीमत उतनी, आप जितना एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं उतनी आपकी कीमत बढ़ती जाती है। यहां और फील्ड की तरह नहीं है कि नहीं साहब आपको एमटीएस का एग्जाम देना है, 25 साल के ऊपर हो गए तो आप चीजें कर पाओगे, ऐसा नहीं है। तो लीगल फील्ड में तो एक्सपीरियंस्ड और भी अच्छा, जितने एक्सपीरियंस्ड है उतना अच्छा होता जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आप अभी मान लीजिए कि आप लॉ ऑफिसर हैं किसी जगह, अभी आपको सीनियर लॉ ऑफिसर होना हो, आपका पे ग्रेड बदल जाएगा, आपकी जो है पोजीशन बदल जाएगी, आपका जो लेवल है वो बदल जाएगा, तो ये सब चीजों के लिए आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अब जहां तक आपने बात

0: कहा पब्लिक सेक्टर और सरकारी व्यवस्थाओं में, तो अब आप ये समझिए कि लॉ करने के बाद, एलएलबी पास आउट होने के बाद, एक ऑप्शन आपका जुडिशरी का होता है,
1: जी
0: जिसमें आप जो है मुंसफ एग्जामिनेशन होता है,
1: हाँ
0: वहां आप एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जाम पास करते हैं, उसके 3 चरण होते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू, वो क्वालिफाई करेंगे तो आप सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर आते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट,
1: ओके
0: इनके पद पर आप आते हैं,
1: जी
0: वहां से फिर आप जो है प्रमोट होके फिर सिविल जज सीनियर डिवीजन होते हैं, या एसीजीएम, सीजेएम,
1: हाँ
0: एडीजे, डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज तक जाते हैं, और कभी कभी अगर बहुत कम उम्र में लोग पा जाते हैं तो ऑनरेबल हाईकोर्ट तक पहुंच जाते हैं लोग।
1: अच्छा
0: एक ये विषय है।
1: हाँ
0: दूसरा है, अच्छा एक इसमें इंपॉर्टेंट मैं थोड़ा सा एडिशन कर देना चाहूंगा कि पहले
1: हाँ
0: इसमें हुआ करता था कि साहब आप 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य है, उसके बाद आप दे सकते हैं
1: जी
0: एग्जामिनेशन, बीच में ये खत्म हुआ, और इस समय फिर आ गया है, फिर अब
1: अच्छा
0: 3 साल की प्रैक्टिस के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के डायरेक्शन के बाद कि 3 साल प्रैक्टिस होना अनिवार्य है, वो एक्सपीरियंस के बाद ही आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिस का कितना बड़ा रोल है, वकालत का
1: जी
0: कितना बड़ा रोल है।
1: जी
0: फिर उसके बाद आप आइए, ये एक हो गया सिविल जज जूनियर डिवीजन, जो लोअर जुडिशरी के नाम से जाने जाती है, सबॉर्डिनेट जुडिशरी के नाम पे। एक एग्जामिनेशन होता है सर हायर जुडिशियल सर्विसेज का, जो 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए,
1: अच्छा
0: उसमें डायरेक्टली आप जो है हायर जुडिशरी में पहुंच जाते हैं, जो कि एडीजी रैंक से शुरू होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक से।
1: ओके
0: वो ये सारी चीजों को पास ओवर कर जाते हैं आप, जो सिविल जज
1: अच्छा
0: जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, सीजीएम एंड ऑल, ये क्रॉस करके आप डायरेक्टली एडीजी में पहुंच जाते हैं, और वहां से
1: अच्छा
0: आप डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, और
1: हाँ
0: बड़े ब्राइट चांसेस होते हैं कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट की बेंच को पाते हैं, बहुत ब्राइट चांसेस
1: अच्छा
0: होते हैं। तो ये एक हो गया। दूसरा, जो माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस
1: यस
0: करते हैं, तो वहां से जो है आपको एलिवेशन के चांसेस होते हैं। मैं
1: ओके
0: सरकारी पर्सपेक्ट से
1: हाँ
0: बोल रहा हूँ,
1: हाँ
0: अभी वकालत वाले पर्सपेक्ट पे नहीं हूं।
1: जी जी
0: तो वहां आपके एलिवेशन के चांसेस होते हैं, वहां आप माननीय उच्च न्यायालय में डायरेक्टली आपको एलिवेट किया जा सकता है, कॉलेजियम द्वारा लिस्ट तैयार की जाती है, रेफरेंसेस होते हैं। अब आप आ जाइए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वगैरह हो गया, या प्राइवेट और भी सेक्टर्स हो गए,
1: जी
0: तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप आ जाइए, तो तमाम जितने पीएसयूज आप देख रहे हैं आज के समय में, कोई भी बड़ा नाम लीजिए, सब जगह लीगल मैनेजर अपॉइंट होते हैं।
1: तो बैंकों में भी होने
0: हाँ
1: लगे
0: हाँ एकदम एकदम बिल्कुल। आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब जैसे आपका कोल इंडिया, भेल इंडिया, जितनी
1: जी
0: इंडिया है सब
1: हाँ
0: जगह होता है, फिर
1: बीएचईएल
0: उस हाँ भेल है सब है। उसके बाद उसी तरीके से आप चले जाइए बैंक्स में, बैंक्स में लॉ ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, फिर भी एक एडवोकेट के इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंका जा सकता। क्यों?
1: जी
0: क्योंकि बार में प्रैक्टिस वही करता है, बेंच के सामने अपीयरेंस वही देता है।
1: जी जी जी
0: आप
1: सही
0: समझिए, देखिए यूके में जाएंगे तो 2 तरह की चीजें होती हैं, एक अटॉर्नी होता है, एक सॉलिसिटर होता है, ठीक है। सॉलिसिटर आर मेंट फॉर गिविंग एडवाइस ओनली, और अटॉर्नी जो कोर्ट के सामने अपियर होते हैं। तो उसी तरह से समझिए, जो लॉ ऑफिसर है बैंक के, वो एडवाइस दे रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, लेकिन जब अपियरेंस की बात आएगी, आर्ग्यूमेंट की बात आएगी, तो वो अटॉर्नी मतलब वो एडवोकेट अपियर होगा।
1: जो बैंक के साइड से एडवोकेट
0: हाँ
1: है।
0: बैंक के, वो हमको इम्पैनल करते हैं।
1: एक क्वेश्चन ये था कि नए लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं तो फिर उनके लिए इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का कितना महत्व है?
0: ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट भी है। देखिए इंटर्नशिप को मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना अपना सुझाव है, कि जो हमारा सिलेबस है लॉ का, उसमें हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप का एक पेपर होना चाहिए।
1: जी
0: और मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि डिफरेंट और वेरियस नेचर्स के, जो अलग अलग नेचर्स के केस होते हैं, अलग अलग नेचर्स की कोर्ट होती हैं, उससे संबंधित एक बना देना चाहिए करिकुलम, कि भाई आप जाएंगे इस कोर्ट की चीजों को लेकर आएंगे, इस कोर्ट से इसके किसी सीनियर को पकड़िए, या वो कॉलेज प्रोवाइड करे कि इस सीनियर के पास जाइए और इससे संबंधित कोर्ट की प्रैक्टिस को देखिए, इससे
1: जी
0: संबंधित कोर्स की फाइल को देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एक सब्जेक्ट होता है कि भाई आप चले जाइए और सिविल सूट्स को देखिए,
1: जी
0: ठीक है, आप सिविल सूट में काम करिए, सिविल सूट को की चीजों को देखिए, उस तरह के सीनियर को पकड़िए, सिविल सूट की फाइलों को डील करिए, जिसमें इंजंक्शन होता है, डिक्लेरेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, स्पेसिफिक
1: जी
0: परफॉर्मेंस का होता है, बहुत सारी स्पेसिफिक रिलीफ का। और कभी आप कह दीजिए नहीं साहब आप जाइए, अब आप सेशन कोर्ट को देखिए, सिर्फ वहां बेल देखिए, वहां का ट्रायल देखिए, वही देखिए। एक बार कभी कह दीजिए कि नहीं साहब मजिस्ट्रेट कोर्ट को देखना है, वहां
1: जी
0: जाइए, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, ये देखिए।
1: जी
0: एक बार आप कह दीजिए कि नहीं साहब आर्बिट्रेशन देखिए, अब आप जाके कमर्शियल कोर्ट देखिए। एक बार कह दीजिए साहब आपने मोटर एक्सीडेंट क्लेम पटिशन को देखिए, जाके वहां पे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल होता है अलग।
1: जी
0: एक बार कहिए लैंड एक्विजिशन के कोर्ट को जाके देखिए। इतना वृहद है सर लॉ का फील्ड, कि
1: सही
0: अगर
1: बात
0: 5 साल की करिकुलम में भी अगर हर करिकुलम में ये ऐड कर दिया जाए कि अलग अलग तरीके से इस कोर्स को देखना है, तो भी शायद कम पड़ जाएगा सेमेस्टर, इतना
1: जी
0: वास्ट एरिया है। तो इस तरह से इंटर्नशिप रिक्वायर्ड है, क्योंकि बच्चे, देखिए बच्चे अपने फील्ड को ऑप्ट करें कैसे, जब तक उनका एक्सपोजर नहीं होगा वो जानेंगे कैसे कि नहीं साहब इस विषय पर में किस तरह का काम करना पड़ता है, या
1: जी
0: हमारा इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हमको इसको काम को करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो है इंटर्नशिप एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, इसको एक्सपीरियंस से जोड़ा जा सकता है।
1: अक्सर के जो छात्र होते हैं,

0: चाहते हैं एक सफल वकील बन सकें,
1: जी
0: तो उसके लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए?
1: देखिए, एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी,
0: जी
1: और उसके साथ डिसिप्लिन, ये दोनों बहुत रिक्वायर्ड है। और वकालत की बात अगर कहें, सफल वकील बनने की बात कहें, तो प्राइमरली तो देखिए आपके अंदर एक हैबिट डेवलप होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पढ़ाई की,
0: जी
1: पढ़ते रहने की। जीवन भर आप अपने आप को मान के चलिए कि आप छात्र हैं, आप एक सफल छात्र हो जाएं तो शायद आप एक सफल वकील बन जाएंगे,
0: हाँ
1: शायद। तो सफल छात्र होना पहले अनिवार्य है।
0: जी
1: तो अपने आप को ये आप अपने अंदर एटीट्यूड पैदा करिए कि आपको रेगुलर बिना किसी मतलब के अननेसेसरली कोई भी टॉपिक उठा लें जो आपको अच्छा लगता है, उसको उठाएं और पढ़ें, और उस कानून को पढ़ के उसको समझने का प्रयास करें, क्यों, क्या उस कानून का इंटरप्रिटेशन है, इंस्टीट्यूट में कहने का, जो लॉ मेकर है उनके कहने का तात्पर्य क्या है। न समझ में आए तो उससे संबंधित अध्यापकों से संपर्क करें,
0: जी
1: सीनियर से संपर्क करें। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं करता हूं, मुझे
0: जी
1: पसंद है वो, इसलिए क्योंकि मेरे आर्ग्यूमेंट में बल आता है। कोई भी एक जजमेंट, कोई भी एक जजमेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, या कोई भी वेरियस हाई कोर्ट, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश में, आप उनके किसी भी एक जजमेंट को ले लीजिए, जो टॉपिक आपको पसंद हो, क्रिमिनल लॉ हो, कॉर्पोरेट हो, सिविल लॉ हो, वट एवर, बहुत सारे हैं, रेंट है, इजमेंट है, स्पेसिफिक रिलीफ है, बहुत सारे मैटर्स हैं, लैंड एक्विजिशन है, मोटर एक्स, आप लीजिए और उसको पढ़िए रात में, और
0: जी
1: पढ़ के सोइए, वो मान लीजिए कि आपकी नींद की दवा है। रेगुलर पढ़िए, रेगुलर एक जजमेंट रोज पढ़िए। जजमेंट पढ़ने से आपके आर्ग्यूमेंट में क्वांटिटी, क्वांटम दोनों और क्वालिटी तीनों आता है, ट्रिपल क्यू। तो जजमेंट पढ़ने से आपको नॉलेज होता है, जजमेंट पढ़ने से उस केस में आप कहीं ना कहीं फील करते हैं अपने अनुभव को कि नहीं, हमने तो नहीं किया, लेकिन पढ़ने के बाद, क्योंकि क्या होता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो या ऑनरेबल हाई कोर्ट हो या ऑनरेबल लोअर कोर्ट हो, तो वो सब चीजें पूरी, जितना शुरू से लेकर A to Z सारी चीजें उसमें डिस्कस रहती हैं,
0: जी
1: ठीक है, प्रोसिक्यूशन वर्जन, डिफेंस वर्जन, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट का व्यू, वेरियस रूलिंग्स, ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। तो होता क्या है कि आप जब आर्ग्यूमेंट करने जाते हैं तो आप एक जजमेंट पढ़े रहते हैं, और मान लीजिए कभी आपका उसी सेम टॉपिक पर आर्ग्यूमेंट आ गया तो उसके रूलिंग्स, उसकी चीजें आप यूज कर सकते हैं, और तब कोर्ट आपसे इंप्रेस होती है।
0: अच्छा
1: ये बहुत, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट
0: प्रेजेंटेशन
1: होता
0: बहुत
1: है।
0: इंपॉर्टेंट है।
1: तो इसलिए एक ये मेरा सुझाव है सभी छात्रों को, जो हमारे युवा छात्र हैं, कि वो लॉ पढ़ ही पढ़े, लीगल इश्यूज को पढ़े ही पढ़े, न समझ में आए तो अध्यापक और अपने सीनियर से संपर्क करें और उनसे समझें, और उसके साथ अपने अंदर एक आदत डालें। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा,
0: जी
1: जो मेरे अध्यापक कहा करते थे कि सबसे कठिन लैंग्वेज पढ़नी पढ़ी जानी चाहिए, सबसे कठिन, जो आपको एकदम ना समझ में आए उसको पढ़िए, आप एक
0: अच्छा
1: महीने बाद देखिएगा बदलाव अपने अंदर, ये मेरा वादा है आपसे।
0: एडवोकेट अनुपम द्विवेदी जी, आप स्टूडियो में आए, हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी शुक्रिया
2: दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये मार्गदर्शन बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपको बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी और आपको इससे आने वाले फ्यूचर में लाभ भी होगा। इसी के साथ अब बारी आ गई है हमारे शब्दों के पिटारे को खोलने की और जानने की कि क्या है हमारे आज के हिंदी और अंग्रेजी के शब्द। तो आज का हमारा हिंदी का शब्द है औपचारिकता, जिसका मतलब होता है नियमों, शिष्टाचार और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना। और अगर आप इस शब्द से वाक्य प्रयोग करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं, बैठक शुरू होने से पहले आवश्यक औपचारिकताओं का पालन किया गया।
3: और इसी के साथ दोस्तों, हमारा आज का अंग्रेजी का शब्द है गैम्बल। इसकी स्पेलिंग है GAMBLE, विच मीन्स टू टेक अ रिस्की चांस इन द होप ऑफ गेनिंग एन एडवांटेज और बेनिफिट। और आप इस वर्ड से सेंटेंस फॉर्मेशन इस प्रकार कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग ऑल हिज सेविंग्स इन वन बिजनेस वॉज अ गैम्बल।
2: और इसी के साथ दोस्तों, जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार, वह घड़ी आ गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के QOTD यानी की क्वेश्चन ऑफ द डे की।
3: बिल्कुल, लेकिन उससे पहले चलिए बताते हैं कि हमने आपसे कल क्या पूछा था और उसका सही जवाब देकर विनर्स कौन बने हैं।
2: तो हमारा कल का क्वेश्चन आपसे ये था कि हाल ही में INS दुनागिरी संशोधक और अग्रय को किस शहर में नौसेना में शामिल किया गया है, जिसका सही जवाब है कोलकाता।
3: और इसका सही जवाब देकर जो विनर्स बने हैं उनके नाम है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से।
2: ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा।
3: रिंग रोड नर्मदानगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
2: नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं प्रभुदयाल शिवदेव, शिवा, बसंती बाई और

0: गणेश शिवदे, और संगीत की नगरी खंडवा से है श्यामाबाई रायकवार।
1: मुकेश कुमार प्रजापति सिगरा वाराणसी से, प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। और इसी के साथ अब सुन लीजिए हमारा आज का प्रश्न, जो है कि जनवरी 2026 में अक्कापडे योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, जनवरी 2026 में अक्कापडे योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी।
0: और इसका सही जवाब आप हमें हमारी इंस्टा आईडी youth_AIR वाराणसी पर या फिर हमारे मेल आईडी youth_AIR_VNS@gmail.com पर भेज सकते हैं।
1: और अब दोस्तों आइए सुनते हैं ये गीत।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
2: 0542227658।
3: 0542227658।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
4: अब दोस्तों कार्यक्रम में वक्त हो चला है जानने का आज का इतिहास, तो आइए देखें आज के इतिहास में क्या है खास। दोस्तों वर्ष 1717 में लंदन में प्रीमियर ग्रैंड लॉज ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई, जो दुनिया का पहला मैसोनिक ग्रैंड लॉज था, और अब इसका नाम यूनाइटेड ग्रैंड लॉज ऑफ इंग्लैंड है।
5: और आज ही के दिन 1916 में मैरी पिकफोर्ड $10,00,000 का अनुबंध साइन करने वाली पहली महिला फिल्म स्टार बनी।
4: वर्ष 1918 में कनाडा में मॉन्ट्रियल से टोरंटो तक पहली हवाई डाक सेवा शुरू की गई, और 1922 में अमेरिकन प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का नाम बदलकर नेशनल फुटबॉल लीग कर दिया गया।
5: और दोस्तों जानकारी और मनोरंजन के बीच अब बात कर लेते हैं करियर की, जिसमें आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रोजगार की ये सूचना SSC CGL एग्जाम की। दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
4: दोस्तों ये भर्ती 12,256 रिक्तियों के लिए आयोजित की जा रही है। SSC आवेदन प्रक्रिया 21 मई से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं।
5: और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं।
4: और इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आज वीवी गिरी की पुण्यतिथि भी है। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, उनका जन्म 10 अगस्त 1894 को हुआ था और उनका निधन 24 जून 1980 को हुआ।
5: वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय सेनानी थे, श्रमिक हितों के समर्थक और एक कुशल राजनेता थे। उनकी पुण्यतिथि पर देश उनके योगदान को श्रद्धापूर्वक याद करता है।
4: वीवी गिरी ने मजदूरों और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने श्रमिक संगठनों को मजबूत बनाने और उनके हितों की आवाज बुलंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: बिल्कुल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य भी किया। वे श्रम मंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और अंततः भारत के राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों ये थी उनकी जीवन से जुड़ी ये छोटी सी बात। इसी के साथ
4: आलिया और मोनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं भोजपुरी में समाचार आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से, जिन्हें हम संप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचार के साथ हम वैष्णवी त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बेंगलुरु में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में अग्रणी वैश्विक कंपनियन आ निवेशकन के साथ बातचीत कई ले। इस दौरान वहां के उत्तर प्रदेश के निवेश अनुकूल नीति, मजबूत कानून व्यवस्था, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना और विकास के संभावना के बारे में जिक्र कई ले। मुख्यमंत्री कहले कि नवाचार, प्रौद्योगिकी आ सुशासन आधारित विकास मॉडल के साथ नया उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेशकन बड़े भरोसा आ विकास

0: के पसंदीदा जगही बन के उभरल हवे। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में अगलगी के घटना के देखत प्रदेश सरकार राज्य के कोचिंग संस्थानन के नियमन के मजबूत कैले आ अवैध कोचिंग सेंटर के खिलाफ अभियान के शुरुआत कैले हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हवे कि पूरा राज्य में आग से बचाव के उपायन के जांच मिशन मोड में कैल जाए। श्री योगी प्रदेश के सज्जो जिलन में अग्नि सुरक्षा ऑडिट करौले के निर्देश दिले हवे। एक रिपोर्ट।
1: कल देर शाम लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश भर में अग्नि सुरक्षा को लेकर चलाया जाने वाला अभियान पूरी तरह जनहित में संचालित किया जाएगा। पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। समाचार कक्ष से निर्देश।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास सुरक्षा के स्थिति में सुधार के देखत भारतीय नागरिकन बदे संशोधित सलाह जारी कैले ह। एगो रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताज़ा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +989128101915। दूसरा नंबर है +989128101909। तीसरा नंबर +989128101902। और चौथा नंबर है +989932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक CONS.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: UPTET 2026 की परीक्षा अगला महीना 2 से 4 जुलाई के बीच हुई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार बतौले कि परीक्षा प्रदेश के 7 जिलन के 955 केंद्रन पर आयोजित कर जाए। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग के वेबसाइट पर डाउनलोड कर जा सकेला। केंद्र सरकार कहले हवे कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बा आयकर लगातारी निगरानी कल जा रहल हो। निगरानी में तेल कंपनियन, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियन आ औरियो पक्ष शामिल हो। सरकार साफ कहले हो कि सोशल मीडिया पर चल रहल खबर भ्रामक और निराधार बा। E20 पेट्रोल के शुरुआत के बाद से इथेनॉल मिलौले के नाते इंजन में खराबी चाहे गाड़ियन में तकनीकी खराबी के कौनो शिकायत सामने नहीं आई बा। आज पासपोर्ट सेवा दिवस हवे। ई दिन 24 जून 1967 के पासपोर्ट अधिनियम लागू भइले के उपलक्ष्य में मनावल जाला। ए मौका पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहले हवे कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरका फेरा के क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नया पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रन आ पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रन के स्थापना और रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी कैले से जतरा सुगम हो रहल है। हज 2027 बदे ऑनलाइन आवेदन के प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट आ हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई ले पंजीकरण करावल जा सकेला। जुलाई के आखिरी हफ्ता में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के जरिया से चयनित यात्रियों की सूची जारी कर जाए। मौसम विभाग आवे वाला 3 दिन ले प्रदेश के पूर्वी इलाकन में भीषण गर्मी के दौर जारी रहले के अनुमान जतौले है। हालांकि आज दोपहरिया बाद गोरखपुर में भइल बरखा से लोगों के भीषण गर्मी से राहत मिलल है। विभाग के मुताबिक 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरखा के एगो नया दौर शुरू होगी। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।

होंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान। बट वृक्ष ये कार्यक्रम सुनेगा रात्रि 10 बजे। वृद्धावस्था में थर्मल थेरेपी विषय पर मनीष यादव से अनु जायसवाल की बातचीत इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेगा रात्रि 9:30 पर।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम एफ 241.57 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर 6:05 हो चुके हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए आपको जानकारी दे दें आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के प्रसारण के संबंध में। पहले आज के शेष कार्यक्रम, रात्रि 10:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सरोद वादन। कलाकार

सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे कलाकार होंगे ए हरिहरन। अंग्रेजी कार्यक्रम में सुनेगा शाम 7 बजे एज ए मीडियम ऑफ इम्प्रेशन विषय पर भावना त्रिवेदी से आकांक्षा सिंह की बातचीत। किसीगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनेगा कृषि में AI तकनीक की उपयोगिता विषय पर डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव से सुधीर श्रीवास्तव की बातचीत। और साथ ही साथ किसान भाई सुनेंगे महंगे महंगे राम प्रजापति और साथी का गाया लोकगीत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे अभी यानी शाम 6:10 पर, शाम 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम में और रात्रि 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम में। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। और अब कल दिनांक 25 जून सन 2026 दिन गुरुवार के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कल शाम 4 बजे सुनिएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और कल शाम 6:30 सुनेगा आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रेफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जाने वाले भारत बनाम बांग्लादेश के मध्य मैच के आप ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। ये दोनों कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 7:31 सुनेगा उस्ताद वासिफुद्दीन डागर का ध्रुपद गायन, और कल दिन 12:45 पर अमरनाथ मिश्र का सितार वादन आप सुन सकेंगे। कल प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में मिर्च की खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना सुनेगा कल प्रातः 6:10 पर। विचार बिंदु होगा कल प्रातः 6:30 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:35 पर पेट संबंधित रोग कारण लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर राजेश पांडे। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ सुनेगा कल प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम सुनेगा कल सुबह 7:00। मधुरमा सुनेगा कल सुबह 8:45 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:50 पर और कल दिन 1:45 पर कलाकार होंगी रूबी देवी। सुगम संगीत कार्यक्रम में कल दिन 12:30 पर ममता शर्मा की आवाज में गीत और भजन आप सुन सकेंगे। अंगनैया कार्यक्रम में कल दिन 1:15 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी पंचतत्व शरीर स्वास्थ्य और संतुलन विषय पर आचार्य विनोद कुमार सिंह की वार्ता, गीत संगीत और अन्य कार्यक्रम। धरती के गीत कार्यक्रम में कल शाम 5:00 सुनिएगा सिंधी गीत। कल शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम में, जिसमें आप सुनेंगे आज की बात, मेरी पसंद, युवा तैयारी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और अन्य कार्यक्रम। कह कैसा सुनिएगा कल दिन 2:30। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा कल दोपहर 12:00। ये थे कल के प्रमुख कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में आज के शेष कल के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने एक सूचना। पोस्टमास्टर जनरल वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी के कार्यालय में डाक सेवाओं के उपभोक्ताओं की समस्याएं और शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु दिनांक 25 जून 2025 परवान 11:30 पर पोस्टमास्टर जनरल की अध्यक्षता में सभागार कक्ष कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल वाराणसी परिक्षेत्र द्वितीय तल कैंट प्रधान डाकघर में डाक अदालत का आयोजन सुनिश्चित है।

0: सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं, आइए सुने फिल्म संगीत एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुने मुकेश और हेमलता को। गीतकार हैं गुलशन बावरा और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम विश्वास।

0: फिल्म विश्वास के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी वाराणसी है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से, जिन्हें हम संप्रसारित करेंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। भारतेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य एकस्मिन् मञ्चे पाकिस्तानदेशेन कृत काश्मीर विषयक चर्चायां दृढ़तया आक्षेपः प्रकटितः। इस्लामाबादः अस्य मञ्चस्य राजनीतिकरणम् अकरोत् इति आक्षेपोऽपि कृतः। ईरान देशस्य परिष्कृत सुरक्षा स्थितिं वीक्ष्य तेहरान स्थित भारतीय दूतावास पक्षतः भारतीय नागरिकाणां कृते एकः संशोधित सुरक्षा परामर्शः निर्गतः, यत्र हि अग्रिम सूचना पर्यन्तं अनावश्यक यात्रां वर्जयितुम् उपादिष्टम्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य वर्तमान वैश्विक समाह्वानानां मध्ये भारत दक्षिण कोरिया देशयोः संबंधस्य सुदृढीकरणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। हॉकी इंडिया संस्था अद्य आगामी यूनाइटेड किंगडम प्रवासार्थं 24 सदस्यानां कनिष्ठ महिला हॉकी दलस्य उद्घोषणाम् अकरोत्। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां कोलंबिया देशः अद्य मैक्सिको देशस्य ग्वाडलहारा नगरे ग्रुप के क्रीडायां डीआर कांगो देशम् 1-0 इत्यनेन अंकेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् प्रविष्टः। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य एकस्मिन्

0: मञ्चे पाकिस्तान देशेन कृत काश्मीर विषयक चर्चायां दृढ़तया आक्षेप प्रकटित। इस्लामाबाद अस्य मञ्चस्य राजनीतिकरणम् अकरोत् इति आक्षेपोऽपि कृत। अपि च सः अध्यक्षत्वेन स्वस्थानस्य दुरुपयोगाय अपि भारतेन कट्वालोचिता। न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिना पी हरीशेन पाकिस्तानस्य स्थायी प्रतिनिधि द्वारा असीम इफ्तिखार अहमद इत्यस्य वक्तव्यस्य प्रतिक्रिया रूपेण एषा टिप्पणी कृता।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: पाकिस्तानात् हस्तक्षेपस्य प्रतिक्रिया रूपेण श्रीहरीशः सह अध्यक्षस्य आचरणस्य निन्दाम् अकरोत्। जम्मू कश्मीर विषय भारत से दीर्घकाल से स्थिति पुनरुद्घाटयत् च। भारतीय राजदूत संयुक्त राष्ट्र संघ से अशीति संरचनाया अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ से आदेशा वर्तमान समीक्षाया विषय अभी अवदत् योद्देश्य संपूर्ण संस्थायां कार्यक्षमता वर्धयितुमस्ति। ईरान देशस्य परिष्कृत सुरक्षा स्थितिं वीक्ष्य तेहरान स्थित भारतीय दूतावास पक्षतः भारतीय नागरिकाणां कृते एकः संशोधितः सुरक्षा परामर्शः निर्गतः। देशस्य सकारात्मक परिवर्तनानि सामान्य स्थितिं च अवलोक्य दूतावासेन नागरिकाः ईरान प्रवास विषये विचारं कर्तुं सूचिताः, किन्तु साकमेव अग्रिम सूचना पर्यन्तं अनावश्यक यात्रां वर्जयितुम् अपि उपादिष्टम्। परामर्शानुसारं ये भारतीयाः सम्प्रति ईराने निवसन्ति अथवा केनापि अनिवार्य कारणेन तत्र गच्छन्तः सन्ति तेभ्यः उच्चस्तरीय अवधानतायाः वर्तितुं सतर्कं भवितुं तथा च परिस्थिति अनुकूल जागरूकतां धारयितुं निर्देशः प्रदत्तः। दूतावासेन सर्वे भारतीय नागरिकाः शीघ्रातिशीघ्रं दूतावासे स्वविवरणं पञ्जीकर्तुम् अपि निर्दिष्टाः। आपत्काले साहाय्यार्थं दूतावासेन एताः दूरभाष संख्याः निर्गताः। संख्या अस्ति 9891281091115 9891281091119। नागरिकाः cons.tehran@mea.gov.in इति ईमेल संकेते संपर्कं कर्तुं शक्नुवन्ति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य वर्तमान वैश्विक समाह्वानानां मध्ये भारत दक्षिण कोरिया देशयोः संबंधस्य सुदृढीकरणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् समान मूल्यवन्तः तथा परस्पर विश्वासयुताः देशाः सम्प्रति इतोपि निकटेन सहकार्यं कुर्युः। सियोलद नगरे दक्षिण कोरियायाः विदेशमन्त्रिणा चो हुन इत्यनेन सह प्रवृत्तायां चर्चायां आरम्भिक भाषणे तेन प्रतिपादितं यत् वर्तमान अन्ताराष्ट्रिय स्थितिः विश्वसनीय सहयोगिनां मध्ये परस्पर सहयोगम् अनिवार्यं करोति।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: सामाजिक अन्तर्जालीय माध्यमे एकेन सन्देशेन विदेश मन्त्रिणा सूचितं यत् उभौ द्वयोः देशयोः मध्ये राजनीतिक व्यापार निवेश रक्षा प्रौद्योगिकी स्वच्छ ऊर्जा संस्कृति परस्पर जनसम्पर्कमित्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य समीक्षां विहितवन्तौ। अनेन सहैव नवाचारः वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा च बहुपक्षीय मञ्चेषु उपलब्ध अवसरेषु अपि विस्तरेण चर्चा समजायत। तौ स्वस्व क्षेत्रस्य तथा च वैश्विक विकासस्य परिदृश्य अपि विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय आवास एवं नगरीय कार्य मंत्री मनोहर लाल अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर इत्यस्य कृते केन्द्रीय सचिवालय

0: ट्रस्टस्थानके निर्माणकार्यस्य औपचारिकम् उद्घाटनं कृतवान्। वार्ताहरैः सह संवादे मन्त्री इमं क्षणम् ऐतिहासिकम् इति वर्णितवान्। तेन प्रख्यापितं यत् इयं परियोजना सर्वकारीय कर्मचारिणाम् अन्येषां च सर्वेषां वृत्तिजीविनां कृते दैनिक गमनागमनम् अत्यन्तं सुगमं सुव्यवस्थितं च करिष्यति, येन सम्पूर्ण देहली क्षेत्रे यात्रा इतोपि सरला क्षिप्रा कार्यकुशला च भविष्यति।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर
0: है। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य कोंकण गोवा प्रदेशयोः अतिवृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। आगामि दिनद्वयोः तटीय कर्णाटक राज्ये मध्यप्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। अस्य मासस्य 31 दिनांकपर्यन्तं मेघालये आन्तरिक कर्णाटके ओडिशायां तेलंगानायां पश्चिमबंगप्रदेशे सिक्किमराज्ये च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। ऋतुविभागेन दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब हिमाचलप्रदेश उत्तराखण्ड जम्मू कश्मीर लद्दाख इत्येतेषु प्रदेशेषु शनिवासरपर्यन्तं मेघगर्जनेन विद्युद्योतनेन सह झंझावातस्य च पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अण्डमान निकोबार द्वीपेषु आन्ध्रप्रदेशे बिहारे गुजराते झारखण्डे केरलम राज्ये माहे प्रदेशे लक्षद्वीपे मध्यप्रदेशे महाराष्ट्रे ओडिशायां पश्चिमी उत्तरप्रदेशे च शनिवासरपर्यन्तम् एतादृशी स्थितिः अपेक्षते। हॉकी इंडिया संस्था अद्य आगामि यूनाइटेड किंगडम प्रवासार्थं 24 सदस्यानां कनिष्ठ महिला हॉकी दलस्य उद्घोषणाम् अकरोत्। अयं प्रवासः जुलाई मासस्य 5 14 यावत् प्रचलिष्यति। नूतन प्रशिक्षकस्य टिम वाइट इत्यस्य निर्देशने भारतीय दलं स्कॉटलैंड इंग्लैंड देशयोः विभिन्न स्थानेषु 7 क्रीडिष्यति, यत् आगामि कनिष्ठ एशिया कप इत्यादि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितानां सिद्धतायै एक्सपोजर टूर रूपेण अस्ति। अस्य युवा दलस्य नेतृत्वं दलनायिका खैदेम सिलैमाचानु करिष्यति। अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायां कोलम्बिया देशः अद्य मैक्सिको देशस्य ग्वाडलहारा नगरे ग्रुप के क्रीडायां डीआर कांगो देशम् 1-0 इत्यनेन अंकेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् प्रविष्टः। इतः पूर्वं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य ह्यूस्टन नगरे ग्रुप के इत्यत्र पुर्तगाल देशः उज्बेकिस्तान देशम् 5-0 पराजयत। इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.54 यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम
1: राम।
0: राम।
1: नंदू भैया,
0: हाँ सुमारू भैया,
1: अरे का हाल चाल किसानी को बिया ये जमत के ना।
0: खेती किसानी का हाल चाल भैया ठीक ठाक चलत हो? आ बेहन भी पड़ गल हो? अब बस अभी यह बा कि कैसहू जियावल जात बा, ओके दऊ के इंतजार बा
1: भाई
0: बरस दे।
1: जरूरी है, देखा इंतजार है तो सब्र फल मीठा होला, पानी बरसी है कौनजरे, लेकिन तब तक के लिए अपन अपने वैकल्पिक साधन से अपन बिया जिया लो जो धाने को
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल भैया, कहलो कि आगे खेती आगे आगे
1: अब पाछे
0: आप।
1: खेती बागे जोगे।
0: तो प्रयास तो यह रहेला कि भाई समय से जो ना थोड़ा समय से पहले ही हो जाए तो काम बढ़िया बा।
1: सही कला है। और देखा अब थोड़ा सा पानी मिल जात ना तो ढैंचा सनई हुआ थोड़ा बड़ा गोल हुआ के पलटवा दे है, लेकिन तो अभी खेतों में बटा यह कि फुनगी काट कर

0: पशुओं
1: तबले
0: के हरा चारा हो
1: भैया
0: जाता।
1: भैया ये कुछ चीज़ तो जैसे जैविक खेती का बात होले अगर तो उम्मा ये हरी खाद बड़ा काम करेला
0: बहुत काम किया भैया
1: आ
0: जमाने
1: समझ लें कि उसे दो तीन तरह का चीज ले सकत हुआ लाभ लाभ रही।
0: में भैया, आम के आम, गुठलियों के तो आम,
1: हाँ बिल्कुल
0: आए
1: बिल्कुल
0: हमारे खादों का काम करता, जैविक खाद वाला मामला जो
1: हाँ
0: ना कार्बनिक का बात है, और अपने पशु के थोड़ा चारा भी हो जाता।
1: बिल्कुल भैया ये सबसे जो है अपन बचा के जैसे हरी खाद लग गल तो उर्वरक वाला ओहर से पैसा बच जाई तो थोड़ा सा ओहर से बचा लेलस थोड़ा एहर से बचा लेलस मतलब तनी मनी काट पीट के अगर बचा ले ही तो अपने खेती किसानी में बड़ा काम करी।
0: नंदू भैया बहुत बुद्धिमान हुआ, बचत के बात जब करेला, हमेशा आप बचत बतावाला, हमन के खेती किसानी में बचत बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: काहे
1: भैया
0: से कि कल गल कभी पढ़ाई लिखाई बाल गोपालन के, कभी न्योता हाँखारी आए, कभी बर विवाह मान दो कि नहीं, कभी
1: बिल्कुल
0: बीमारी के बात है, तो हमेशा समय, कभी खेते के जुताई है तो बीज है खाद है, तो
1: तो
0: हमेशा पैसा जरूरत रहला। तो
1: बिल्कुल
0: वैसे में हमन का करे चाहिए पाँच लोगों के कि भाई दो पैसा जो आमदनी है खेती किसानी से, कहीं से आवत है, कुटीर उद्योग से आवत है, फल से आवत है, बगीचा से आवत है, तो उसी में दो पैसा काट करके बचा ले
1: हाँ
0: लो
1: एकदम सही कहला भैया। देखा ई बस अपने ही खेतिये किसानी वाले लोगन बदे ना हा
0: सबके
1: कि
0: बदे।
1: जे
0: हाँ
1: कौनो भी काम में पेशा में लगल बा समझ ला अगर कहीं नौकरियों करत ह तक कमाई ना मायने रखेला कि भैया कितना कमाई ना ई मायने रखे तो कितना बचाऊ ना तो
0: भैया, जब बचौले के
1: हाँ
0: नाम ले के देख कहल भी कल, अब हमारे यहाँ का ज्ञानी लोग भी कर लो कि आज का बचत कल का भविष्य होला, है कि नहीं? ये
1: हाँ
0: बात सही कहला कि किसानियों के बात नहीं है, नौकरी में हुआ हुआ तब पढ़ा रहे हमन तो भाई, याद करा पढ़ा लिखल जाए तब वहाँ गुल्लक रखल जाए, आए आज जो दुआ ना चार ना मिले भाव दें अब हम गुल्लक फिर डाल दो
1: ए
0: जाए।
1: भैया हो बूंद बूंद से सागर भरेला यो कहल गलो
0: सही बात
1: तो
0: है।
1: तनी तनी छोट छोट अगर बचत मनई करत हुआ
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: समझ लें कि वो गाढ़े बखत बदे बड़ा काम का चीज है। अब तो भैया गोलखों में रखे की जरूरत ना है सबकर जोन है सरकार के सहयोग से ऐसा भल बा कि खाता सबकर खुल गल है आसानी से।
0: एकदम भैया, ये तो बहुत बढ़िया काम भल, हमारे की सरकार बहुत
1: आ
0: बढ़िया
1: अब
0: आज।
1: भैया जौन कुछ बचत हो था 100 50 200 1000 500 अपन गयल बैंक में गयल आ के कागज पे फार्म पे भरलस आ जमा कर देलस भैया।
0: और उसे क्या मिली? ब्याज भी मिली, है कि नहीं? अब एक एक बात और बताई, पहले देखा
1: वो
0: हम
1: का
0: लड़कैया में लोग क्या करें कि पैसा हड़िया में रख के दीवार में चाहे अंगना में गाड़ दें, और गाड़ के साल तो भुला
1: भुला
0: जाए, उनके पता नहीं कहाँ
1: ए
0: है।
1: भैया नोट अगर गाड़ देना तब तो समझ
0: हाँ
1: ला क्योंकि दीमक उमक जो न चट जाए
0: नहीं नहीं सुना, और बात सुना, मजेदार बात यह है
1: का।
0: कि जब कुछ दिन बाद दूसरा चार सौ पैसा जो खो दे तो वहाँ पैसे हुए ना मिले हड़िया, चूंकि भुला के लोग कहाँ कर रही, तो लोग कहे कि लक्ष्मी माई डोल दे ली। डोल क्या है? अच्छा कुछ लोग तो देखे जानते हो मड़ई रहे भैया, पहले हो मड़ई में रहे, क्या करें कि बांसे के फूफली में रुपया लेके वही खोस
1: ठूसते
0: दे,
1: हाँ
0: कभी कल आग लगे मड़ई में तो रुपया भी जल
1: वो
0: जाए
1: स्वाहा
0: मड़ई के
1: हो
0: साथ।
1: जाए भैया
0: तो
1: हाँ
0: भैया जो ना बतूला कि अब तो उसका जरूरत ना, हर जगह
1: हाँ आसानी
0: बाजार
1: से आसानी
0: है,
1: से बैंक
0: आसानी से
1: खाता
0: बैंक खुलल है, वहाँ जाए और फार्म पर्चा में लेकर के भरे, और भर करके पैसा बैंक में
1: ये
0: जमा करें, डाकखाना में जमा करें।
1: हाँ अब तो तमाम व्यवस्था हो गया भैया बस जरूरत ये हो ना कि बचत करे का आदत डाले के हुई
0: एकदम सही कह रहा
1: आ
0: भाई।
1: जब ये आदत डाली लइकनों के छोट जोन है भैया एकर आदत डलावे जैसे गोलखे से है उनके गोलखे में जोन कहला ना कि अपने बचपन में हमन डालत रही जा ना तो 25 पैसा 58 चवन्नी
0: हाँ
1: कुल हमन के भी याद बा कि भैया रखल जाए बचा के आ जब कभी जरूरत पड़ जाए आ घरों में देखा जरूरत पड़ल तो हमन देले है जा अपने
0: हाँ
1: माई बहू के
0: हाँ
1: कि भाई देखा ये इतना हम बचौले है आ बड़ा खुश हों लोग।
0: बड़ा खुश भैया। तो ये आदत की चीज होला हो, बचत एक आदत है।
1: हाँ
0: हाँ। और या अपने आजमावे, अपने बाल गोपालों की बात सिखावे, और बचत की जब बात होला तो सबसे बड़ी बात होला घर के गृहिणी लोग को, है वो लोग क्या करें कि दो पैसा दबा के, कभी का लोग शाह खर्ची में अधिक पैसा दिखावा में अधिक खर्च कर दो ना, तो
1: भैया ना
0: दिखावा न
1: चाहिए
0: करे के
1: ना
0: चाहिए।
1: चाहिए भैया ये ना चाहिए देखा जितना जरूरत हो उतना खर्च करे और बाकी सहेज के रख दे भैया आ जैसे घरे में अपने काम पड़ल तो उम्मा कैलस आ नहीं कुछ नया नियम करे के पड़ गल तो उम्मा भैया लगा देलस आ खेते बारी मान ला अगर बढ़िया से पैसा जुट गल तो खेते बारी नया खरीद लेलस भैया कि जाए कि जो ना रकबा अपन बढ़ गल खेती किसानी काम और होत बा
0: बिल्कुल सही
1: चार
0: कर रहा
1: पैसा
0: है।
1: और आमदनी होए लगल ज़्यादा एक चीज के सुमारू भैया ध्यान देवे के हो कि आदत डालल जरूरी है
0: हाँ, बचत
1: पहले।
0: की आदत होना चाहिए।
1: आ जागरूक रही तब वह बजट का आदत डाली, और ओकरे बाद घरे परिवार में भी सबके बतावे चीज़ कि भैया तुम लोग बचा के रखा।

0: अच्छा ईद बात हो गल, जब आदत के बात केला है तो देखा आज वैज्ञानिक युग है, तकनीक का युग है, तकनीकी तो हमन भी अपने खेती किसानी में परम अधिक पैदा करे बदे, अन्न पैदा करे बदे, सब्जी पैदा करे बदे, फल के बात आवे तो वृक्ष के लगाओ बदे, तो आज भी तकनीक के बात चलत है। आज परंपरागत खेती तो ठीक है लेकिन ओकरे साथ साथ हमन के तकनीक कर ली तो भैया आज अधिक पैदा हो।
1: ए भैया हो देखा, पहले रहल कि खेती ज़्यादा रहल,
0: हाँ
1: लोग कम रहना, आ आराम से जोन हो उपज हो जाए, जोन जितना कम बेसी हो अपन उसमें गुजारा कर ले। आज के समय में भैया रकबा घटत जात बा, जनसंख्या बढ़त जात है, तो जबले तकनीक का सहारा ना ले ही सुमारू भैया, तब तक बढ़िया से खेती खेती लाभ का सौदा न हो पाई।
0: तो यही बात कहल जाला कि तकनीक का सहारा लोहिक होई है। तो आज पंचायती में केकर बातचीत सुनाओ तो बताओ
1: तो
0: हमें।
1: देखा जब तकनीक की बात हो तो अपने खेती किसानी में भी AI तकनीक जोन हो वो कौने तरह से उपयोगी हो,
0: हमन की खेती
1: तो
0: किसानी में
1: हाँ अपने खेती किसानी में तो यही विषय पे जोन है डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव से सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया का बातचीत हो, तो ओके सुनवा देवल जाए।
0: सुनवा में चलो।
2: डॉक्टर मुकेश कुमार श्रीवास्तव, आप प्रधानाचार्य हों राजकीय इंटर कॉलेज मूसा खान चंदौली में। आज हम आपसे ये जानना चाहब कि आजकल हमारे जो पारंपरिक खेती हो एमन तरह तरह का समस्या देखे में आवत हो,
1: जी
2: और कभी कभी ये भी समस्या आ जाले कि समझ ला कि रोपाई करे बदे के आज खेत में और जोन काम करे के होला उकरे बदे श्रमिक भी नहीं मिलतन या केहू से मदद लेके चाह तक करवाएला, तो ये जो समस्या आवत हो एकरे बदे ये जोन आजकल आधुनिक खेती या नई तकनीकी के बात कैल जात हो, तो का इमन कुछ ऐसा उसे मदद मिल सकला जोन आपका नई तकनीकी हो वो का हो।
3: आज आप देखें कि संपूर्ण विश्व में कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं,
2: जी
3: और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आज संपूर्ण जगत तकनीकी क्रांति के दौर से गुजर रहा है। तो ऐसी तरह तकनीकी जो क्रांति है उसका प्रभाव अब कृषि के क्षेत्र में भी पड़ रहा है।
2: जी कैसे।
3: अब परंपरागत कृषि की जगह आधुनिक कृषि का सूत्रपात हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और ग्रामीण भारत के विकास का सबसे बड़ा आधार है।
2: जी हाँ
3: तो ऐसी स्थिति में कृषि के पारंपरिक तरीकों में बदलाव की नितांत आवश्यकता है।
2: तो कैसे कल जाए बदलाव।
3: अब यह बदलाव जो है इसमें जो तकनीकी क्रांति है उसमें आजकल एक सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वह है कृत्रिम बुद्धि का।
2: कृत्रिम बुद्धि
3: कृत्रिम बुद्धि
2: ये कहा डॉक्टर साहब।
3: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
2: अच्छा जेके AI के
3: ए
2: नाम से
3: आई
2: आजकल
3: जी
2: जानल जाता है, वही
3: जी
2: चर्चा है कर,
3: जी
2: तो क्या कृषि के क्षेत्र में भी एक उपयोग हो
3: जी
2: सकता है
3: बिल्कुल।
2: कैसे।
3: कृषि के क्षेत्र में जो AI है अगर आप बहुत गहराई से देखेंगे तो समस्त क्षेत्रों में इसने अपनी पैठ बना ली है। जैसे आज आप कृषि करते हैं जो परंपरागत तरीके से,
2: जी जी
3: तो परंपरागत तरीके से आप खेती कर रहे हैं, आपने एक बीज डाला, बीज की आपने रुपाई की, कटाई की और अनाज आप घर ले गए। AI क्या करता है कि AI सबसे पहले तो आपके मिट्टी की जांच करेगा। जो इनके उपकरण हैं उन उपकरणों की मदद से आप मिट्टी की पहले जांच करते हैं, और मिट्टी की जांच करके यह पता चलता है कि जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति है वह कितनी है, कौन से
2: अच्छा
3: पोषक तत्वों की इसमें कमी
2: कमी है।
3: है, क्या हम इसमें और मिलाएं कि हमारा उत्पादन बढ़े। तो कृषि में सबसे बड़ा जो आज चुनौती है किसान के सामने उत्पादन को बढ़ाने की और नवीन तकनीकी से खेती करने की।
2: बिल्कुल
3: केवल धान और गेहूं के परंपरागत खेती करके किसान अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला सकते।
2: जी
3: तो ऐसी स्थिति में AI की मदद से सबसे पहले तो हमको यह मदद मिलती है कि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्या है, इसमें किन पोषक तत्वों की कमी है, और हम जो फसल लगाना चाह रहे हैं, हम जिस चीज की खेती करना चाह रहे हैं, क्या वह इस हमारे खेती वाली जो भूमि है उसके अनुरूप है कि नहीं।
2: जी जी
3: तो सबसे पहले तो AI हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति बताएगा, किस प्रकार की फसल हमको लगानी है उसके बारे में जानकारी देगा, नई नई प्रजातियां आज विकसित हो रही हैं, जैसे आप देखिए सेब, संतरा, अंगूर, आम, इसकी तमाम नई नई प्रजातियां आ गई हैं। आम के ऐसे ऐसे प्रजातियों का विकास किया गया है जो छोटे पेड़ हैं और अच्छा खासा फल दे रहे हैं,
2: जी हाँ
3: जिनकी आपके मार्केट में डिमांड भी ज्यादा है। तो किसान जो फल लगाने वाले किसान हैं अब वो परंपरागत आम के पेड़ की बजाय जो AI की तकनीक से विकसित किए जा रहे हैं आम के पेड़ अब उस पर धीरे धीरे आश्रित हो रहे हैं।
2: जो उनकी बहुत कम जगह में भी हो सका
3: जी
2: फिर
3: छोटे
2: वो।
3: पेड़।

0: हैं जिनकी ऊंचाई 4 फीट 5 फीट है और अच्छा खासा फल दे रहे हैं
1: जी
0: तो कम जगह में भी इनको लगाया जा सकता है।
1: जी जी
0: ये ऐसे फल हैं कि जिनमें आप जो है खेतों में जिनको लगाने के बाद खेती का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ जब बहुत बड़ा नहीं होगा तो खेत में छाया नहीं आएगी, तो खेत में जब छाया नहीं आएगी तो आप खेतों में और भी उत्पाद लगा सकते हैं। आप सब्जियों का लोग खेती करते हैं।
1: हाँ, जैसे पहले आवे का बगीचा रहा तो समझ ला कि सूरज का रोशनी नीचे अइबन करे,
0: जी जी
1: और अब छोटा छोटा पौधा रही है तो उनके बीच से जो हो जमीन में रोशनी भी पड़ी।
0: जी रोशनी भी पड़ रही है उसमें। तो एआई की मदद से किसान भाई अपने फल सब्जियों की जो खेती है उसको आसानी से कर रहे हैं।
1: हाँ।
0: मिट्टी की गुणवत्ता उनको पता लग जाती है,
1: जी
0: उस गुणवत्ता के हिसाब से वो कौन सा फसल हमको लगाना है इस पर काम करते हैं।
1: भाई ये तो बहुत जरूरी हो ना कि उनके जानकारी हो जाए कि हमारी मिट्टी कौन फसल लायक हो,
0: जी
1: अनाहि तो पता चलल कि भाई बो देत हुआ और तत्व जो उन्हें चाहिए वो फसल बदे के उमन उपलब्ध नहीं बा, तो इससे फायदा की जगह नुकसान हो
0: नुकसान हो
1: जाए।
0: जाता।
1: जी हाँ।
0: अब मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे एआई की जब बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन में चैट जीपीटी का प्रयोग करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को। चैट जीपीटी में आप सवाल पूछते हैं और उसका वो पूरा वो एआई बेस्ड सिस्टम है जो आपको सटीक जवाब देता है। कि
1: अच्छा।
0: जैसे आपने सवाल पूछा कि गर्म क्षेत्रों में हम सेब की खेती कैसे करें, तो उसी से संबंधित सारे जवाब आपको मिल जाएंगे कि कौन सी प्रजाति का आपको पेड़ लगाना चाहिए, कब कब सिंचाई करनी चाहिए, पेड़ की कब जो आपको खाद की जरूरत पड़ेगी, कब आपको खाद देना है, कितने दिन बाद देना है, तो ये सारी जानकारी आपको चैट जीपीटी के माध्यम से मिल जाएगी।
1: तो ये जो मोबाइल हम प्रयोग करत है ये
0: जी
1: का यही मोबाइल में ही बात पूछ
0: जी
1: सकीला?
0: जी जी
1: अच्छा, ये तो बड़ी
0: आज
1: अच्छी बात हो।
0: सूचना तकनीक की जो क्रांति है उसमें सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो किसान भाइयों को भी अब इस पर थोड़ा आश्रित होने की जरूरत है। यह नहीं समझने की जरूरत है कि हम मोबाइल पर आश्रित होकर नुकसान अपना करेंगे। मोबाइल पर आप आश्रित होंगे तो आपकी खेती के परंपरागत तरीकों में बदलाव आएगा, सुधार आएगा।
1: जी बिल्कुल। तो इसे जो हो जानकारी का और कोनो मशीन यंत्र खरीदे के होला कि बस मोबाइल से मैंने ये पूछ करके समस्या का समाधान कर जा
0: नहीं,
1: सकाला?
0: मोबाइल के साथ साथ जैसे जब आप स्मार्ट खेती की तरफ आगे बढ़ेंगे, एआई तकनीक पर आप जाएंगे, तब ऐसी स्थिति में आपको एक ड्रोन की आवश्यकता पड़ती है।
1: अच्छा,
0: लेकिन
1: ड्रोन माने
0: आवश्यकता नहीं
1: जो
0: है वो जो उड़ के हवा
1: हवाई
0: में
1: जहाज की
0: अपना,
1: तरह जो
0: जी
1: उड़ाला?
0: जी जी
1: अच्छा।
0: लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि किसान भाई सारी चीजों की खरीदारी करें। कुछ ऐसे भी संस्थाएं हैं जो इन सब सामान को खरीद के रखते हैं और किसान की आवश्यकता के अनुरूप उसके पास पहुंचते हैं और अपनी सुविधा उनको प्रदान करते हैं। इसके बदले में थोड़ा बहुत उनका निर्धारित शुल्क होता है। जैसे
1: समूह
0: आप,
1: के माध्यम से भी इस तरह
0: जी
1: का काम
0: जी
1: कर
0: अगर
1: जाता
0: किसान
1: होगा
0: भाई
1: शायद।
0: अपना समूह बना लें, लंबा चौड़ा खेत है तो कम पैसे में उनका काम हो जाता है। अब इसे भारतीय खेती की एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है कि यहाँ जोत का आकार छोटा छोटा होता है,
1: जी हाँ।
0: और जहां जोत के आकार छोटे हैं तो वहां सभी किसान भाइयों को एक साथ मिलाना कठिन समस्या हो जाती है। तो यदि बड़ा जोत का आकार है तो वहां आप आसानी से ये ड्रोन की मदद से कीटनाशक या उर्वरक का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे जोत हैं तो ऐसे मामले में किसान भाइयों को एक मंच पर आने की जरूरत होती है और एक तरह के फसल लगाने की जरूरत होती है, ताकि एक बार जब वो पेस्टिसाइड का छिड़काव करे
1: जी जी
0: तो वह पेस्टिसाइड सारे फसल जो लगे हों एक तरह के हों, ताकि एक ही पेस्टिसाइड से काम चल जाए,
1: काम चल जाए।
0: तो इससे किसान भाइयों का खर्च कम हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहब कि अभी भी हमारे के जो खेती हो मौसम आधारित हो
0: जी
1: है ना, तो का मौसम कैसे कबो कबो होला ना कि जैसे आप पेस्टिसाइड का या दवा का छिड़काव करे कहत हुआ,
0: जी
1: छिड़काव हो गल पता चल मौसम का मिजाज बदल बारिश हो गई और उनका दवा का पैसा नुकसान हो गल कुछ
0: जी
1: हुआ गल, तो का ये बात का जानकारी एआई के माध्यम
0: हाँ
1: से हो सकला कि हाँ वर्षा भाई हुई कि ना हुई, कितना दिन में हुई?
0: जी बिल्कुल।
1: जी
0: एआई की मदद से आप मौसम की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर पा रहे हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे अभी आप इधर कुछ समय में आप देख लीजिए कि मौसम विभाग ने पूर्व सूचना दिया कि तमाम जनपदों में तेज आंधी के साथ बारिश होगा, और वो सटीक रहा। जितना समय मौसम विभाग ने दिया उतना ही समय पे आंधी पानी आया। तो ये सारे जो सिस्टम है वो एआई की मदद से हुए। जो सैटेलाइट हमारे लगे हैं मौसम विभाग की ने लगाया है
1: जी जी
0: एआई बेस्ड सैटेलाइट, उनकी मदद से ऐसा संभव पा रहा है। तो जब किसान भाई इसकी मदद लेंगे और आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में जब ये डालेंगे कि अगले 24 घंटे में मौसम कैसा होगा या अगले 1 महीने हमारे क्षेत्र का मौसम कैसा रहेगा, तो वह बता देगा कि अगले 1 महीने आपके क्षेत्र का तापमान इतने से इतने के बीच में रहेगा। तो जब आपको तापमान का आभास हो जाएगा तो आप उस तापमान के हिसाब से अपने खेतों में फसल का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से बीज हम डालें कि जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो सर्वाइव कर सके, चल सके। तो इसके लिए AI बहुत सटीक यंत्र के रूप में विकसित

0: हो रहा है, जो धीरे धीरे अगर किसान भाई इस पर अपनी निर्भरता दिखाना शुरू करेंगे तो नुकसान की जो दर है वो काफी कम हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब एक बात और बतावें कि जैसे अपने खेतन में जो हो सिंचाई की जरूरत पड़े ले, तो क्या AI के माध्यम से ऐसा कोनो तकनीकी हो कि सिंचाई मतलब समय से हो जाए, कम पानी में हो जाए और हमारा उत्पादन भी बढ़िया हो?
0: हाँ, इसके लिए भी बहुत बढ़िया टेक्निक AI ने डेवलप किया है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने डेवलप किया है। जैसे आप घर के अपने छतों पर आप गमलों में पौधे लगाते हैं, रोज आप पानी नहीं दे सकते, तो आप एक नई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि पतली पाइप के माध्यम से आपने किसी बोतल में पानी भरा और सारे पाइप के गमलों को आपने टच करा दिया, उसमें जगह जगह आपने छेद कर दिया, तो इस सिस्टम से आप गमलों की सिंचाई करते हैं। किसान भाइयों के लिए भी जो अपना AI सिस्टम है, उसने एक इस तरह का सिंचाई का यंत्र डेवलप किया कि आप कम पानी में इस तरह का पूरे खेत में चारों तरफ आप पाइप फैला दीजिए और उसको आप एक जगह सेट कर दीजिए। जब समय आपका आया, आपने एक जगह से टैप खोल दिया और सारे नल में पानी जाएगा, सारे पाइप में, और थोड़े थोड़े जहां जरूरत है वहां पानी वो फैलाता जाएगा। तो इससे क्या है कि जो अधिक पानी का नुकसान होता है, जैसे आप अधिक पानी फ्लो में आपने खोल दिया, कहीं आपको आवश्यकता है कम पानी की, वहां भी अधिक पानी पहुंच जाता है, लेकिन इस पद्धति में जितनी जहां जरूरत है उतनी ही पानी जाएगी। इसके बाद वो जो मशीन है हमारा AI वाला, वो ऑटोमेटिक पानी का फ्लो जो है बंद कर देता है। तो इससे किसान भाइयों के पानी की बचत होती है, जहां कम पानी है, जहां अल्प जल की व्यवस्था है, वहां भी अच्छे फसल अब हो रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब एक बार हम कुछ लोग के बात करत सुनले रही कि भाई कबो कबो यह हो कि सिंचाई की जरूरत हमारे खेते में हो और वो बखत वहाँ उपलब्ध ना हुआ, कहीं दूर हुआ, बाहर हुआ, तो वहाँ से भी का कुछ रिमोट के माध्यम से या कोनो सेंसर के माध्यम से सिंचाई का जो संयंत्र हो के चालू कर सकना, बंद कर सकना, ऐसा भी व्यवस्था हो
0: हाँ
1: पाएगा इनके
0: बिल्कुल
1: माध्यम से
0: बिल्कुल, एक
1: कैसे?
0: एप्लीकेशन लेना पड़ेगा आपको। अपने मोबाइल में आपने एप्लीकेशन लोड कर लिया, अब उस एप्लीकेशन में आप ये सेट करेंगे कि हमारी जो भूमि है वह कितनी दूरी पर है, जहाँ संसाधन है वहाँ से कितनी दूरी है। जब वो आप सेट कर देंगे, जब आपको पानी की आवश्यकता है, तब आप डिमांड अपनी डालेंगे उसमें। जब डिमांड डालेंगे तो ऑलरेडी वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, वो वहां से नल खोल देगा और जैसे ही खोलेगा वैसे आपके खेतों में पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सारा सिस्टम जो है AI के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो जैसे ही किसान भाई अपने जो आजकल हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, जैसे आपने पहले सवाल किया, तो एंड्रॉयड मोबाइल जो है सबके पास है, अब इसमें थोड़ा हमको अपने आप को व्यावसायिक तरीके से विकसित करने की जरूरत है। सिर्फ जेब में हम रख के घूम रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, तो किसान भाइयों को इसके लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पड़ेगी।
1: भाई सबसे बड़ी बात यह हो कि ये जो आधुनिक जमाने का खोज हो
0: जी
1: मोबाइल जो हो,
0: जी जी
1: तो आधुनिक जमाने के साथ साथ हमें कदम से कदम मिला के चले के पड़ी,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ओकर जानकारी तो होवे के चाहिए,
0: जी
1: है ना? तो डॉक्टर साहब एक बात और बताओ कि का ये जो AI डेवलप भैल हो, इमन कुछ मानव रहित भी कार्य हो जाना, जो उनकी मानव की जरूरत ना हो, ट्रैक्टर चलावे के भैल
0: हाँ
1: या
0: बिल्कुल
1: हार्वेस्टर चलावे के
0: बिल्कुल
1: भैल,
0: बिल्कुल
1: का ये कुल काम भी जो हो वो प्रोग्रामिंग के माध्यम से
0: जी
1: हो
0: बिल्कुल,
1: जाना?
0: रोबोटिक्स हार्वेस्टर का विकास किया गया है, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग सेट कर देना है और उसके बाद आपको आदमी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पूरे आपके जो है खेत में हार्वेस्टर का काम कर देगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगी उससे। सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर का विकास हो रहा है, जिसमें आप प्रोग्राम सेट करिए और पूरे आपके खेत की जुताई हो जाएगी। ड्रोन द्वारा आप जैसे दवा का छिड़काव कराते हैं, तो उसमें एक व्यक्ति सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए, और बाकी अगर आप चाहे तो बिगहो बिगहा आप जो है दवा और फर्टिलाइजर का छिड़काव ड्रोन की मदद से आप कर सकते हैं। तो जहां एक व्यक्ति 2 दिनों जो काम करता है, उसको ड्रोन 2 घंटे में खत्म कर ले रहा है। जहां आपको 20 व्यक्तियों की जरूरत थी, वहां एक ड्रोन कर ले रहा है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए एक आदमी चाहिए, तो मैन पावर भी आपको कम चाहिए।
1: जी
0: तो AI की जो पद्धति है, उसने आप अगर सही तरीके से यूज किया जाए, तो पूरे कृषि में समझिए क्रांति लाने का काम करेगा। तो एक तरफ जहां पूरा विश्व तकनीकी क्रांति की बात कर रहा है, दूसरी तरफ हम तकनीकी क्रांति के साथ साथ कृषि में भी क्रांति लाएंगे।
1: बिल्कुल
0: अभी तेलंगाना में एक छोटा जो है प्रयोग किया गया, वहां AI की पद्धतियों का प्रयोग किया गया, वहां मिट्टी की जांच की गई, उर्वरा शक्ति की जांच की गई, कौन कौन से उसमें थे उनकी जांच की गई, जो पोषक तत्व थे। तो इन सब की जांच के बाद जब खेती की गई, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, परंपरागत कृषि की तुलना में लगभग 20 से 22% उत्पाद ज्यादा हुआ। तो अगर हम इस पर आश्रित हों, हम इन पद्धतियों का प्रयोग करें और किसान के उत्पादकता में अगर हम 20% की वृद्धि कर ले रहे हैं, तो उनकी आय में निश्चित तौर पर 20% की वृद्धि हो जाएगी। एआई की उपयोगिता जब किसान समझ जाएगा

0: तो प्रयोग कर
1: तो
0: लेंगे हम,
1: प्रयोग करेंगे,
0: उत्पादन बढ़ जाएगा हमारा।
1: उत्पादन बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर जब उत्पादन बढ़ेगा तो आज हम जो विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है हमारे देश में
0: वो साकार हो
1: वो
0: जाएगा,
1: साकार होगा, क्योंकि किसान ही पूरे अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने
0: आधार
1: जाते
0: है
1: हैं।
0: बिल्कुल। तो डॉक्टर मुकेश कुमार श्रीवास्तव, आप हमारे पंचायती में ना, और इतनी अच्छी जानकारी, आधुनिक जानकारी हमारे किसान भैया लोगों के देना, कि अपने खेती में AI तकनीकी जो हो उसका प्रयोग करके कैसे अपन उत्पादन बढ़ा सकना, और कैसे जो हो सक्षम बन सकना, जैसे कि अपन भी विकास हो, अपने देश का भी विकास हो। जानकारी दे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नंदू भैया,
3: हाँ सुमारू भैया,
2: कितना ज्ञानवर्धक बातचीत भल कि कृषि में यही तकनीकी का उपयोगिता बाय। डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव से सुधीर कुमार श्रीवास्तव भी बतियाओ था ना भैया, देखा दूर बैठले से ही कौनचरे पानी भी चला गया, माटी के जांच अगर हो जाता है तो कितना बढ़िया, कई 20% 22% तार उपज बढ़ जाता।
3: बिल्कुल सुमारू भैया, एक चीज़ जान ले कि जैसे तकनीक का चर्चा है माँ भले, खासतौर से AI तकनीक का, कि जैसे माँ रोबोट के माध्यम से कुल व्यवस्था हो जाता, हार्वेस्टर का भी काम हो
2: हाँ
3: जाता, बीज बोए वाला भी काम हो जाता, माने एक तरह से देखल जाए तो जोताई बोआई सिंचाई कटाई कुल काम जो है AI तकनीक के इस्तेमाल से करल जा सकत है आसानी से।
2: भैया, क्रांति आ जाए, परंपरा ढंग खेती तो होता भाई, लेकिन AI तकनीक से अगर हो तो बहुत बढ़िया फायदा हुई।
3: अब जैसे ड्रोन के अमेजोन चर्चा भयल
2: हाँ
3: हो
2: हाँ
3: सुमारू भैया,
2: मैन पावर कम हो जाए।
3: हाँ कम हो और देखा, लेकिन एक चीज़ और बा कि ये बड़े रकबा बदे हो,
2: हाँ
3: तो एम्मा तो भाई विशेषज्ञ भी बता देना कि भाई छोट किसान भी चाहें तो एक इस्तेमाल कर सकत हूँ, और सब जने एक साथ मिल जाए,
2: सब मिल
3: आ
2: जाए, खर्चा
3: जब
2: उठा ले।
3: खर्चा उठा ले आ सब मिल जाए तो रकबो तो बढ़ जाए भैया।
2: हाँ
3: आ यह कि सब जने मिल के एकमत हो के एक तरह के फसल का इस्तेमाल करें, ताकि एक ही जैसन दवाई का छिड़काव, एक ही तरह के पानी का छिड़काव
2: हाँ
3: कुल
2: हाँ
3: जो
2: हाँ
3: ना वो फसल के ऊपर हो जाए। अब जैसे भैया देखा तेलंगाना में बात भल ना, कि वहाँ माटी के जांच से लेके हर व्यवस्था हर चीज़ जो ना तकनीक आधारित रहल,
2: सही बात है।
3: और तब जब खेती भइल तो भैया 20% बतावत ना कि उत्पादन बढ़ गया। आ भाई तो सबके जागरूक हो के नई तकनीक के अपनावे के पड़ी।
2: सही बात
3: आ
2: है।
3: जो माटी के जांच के बात है भैया ना, ये बहुत जरूरी हो जाला, तबे तो मालूम हुई कि एम्मा कौने तत्व का कमी है, आ जौने चीज का कमी है भैया वही का इस्तेमाल कर दे
2: अब पूरा हो
3: बढ़िया।
2: जाए, अब पैदावार बढ़िया हो
3: आ
2: जाए।
3: ज्यादा खर्चा भी ना पड़ी
2: नहीं
3: भैया,
2: नहीं नहीं नहीं
3: अनजाने में जब ज्यादा उर्वरक डाल देवे के होला, खाद डाल देवे के होला, तो वो नुकसान है जाला,
2: पैसा भी नुकसान हुई, माटी के भी बर्बादी हुई।
3: और उत्पादन बढ़िया ना होत भैया।
2: हाँ तो ये तो बात हो गई भैया अपन। अब हम तो कहते मन मनसायन हो चाहिए, चूंकि पंजरू जो तो है कि
3: हाँ
2: नंदू
3: बिल्कुल
2: भैया
3: भैया,
2: के
3: हो
2: आज केकर के सुनी है, तो महंगी राम प्रजापति उनके साथ इनके देखा विकास की सब लोग
3: हाँ
2: सुने।
3: एक ही सुने पंच लोग।

0: मोरे देश अवा कह रतनवा।
1: भैया
0: विकास
1: देखा,
0: गीत के गौतल भैया,
1: हाँ महंगी राम प्रजापति आ उनके साथी लोगन कई समारू भैया गौनई रहल, अपन पंच लोग के सुनना हमनो सुन ली जा। देखा भैया हो, एक गौनई के माध्यम से समझ ला कि समारू भैया अपने
0: भैया
1: खेती किसानी अपने किसान लोगन के पूरा महात्म का जौन हो एमा बखान हो गल भैया।
0: पूरा पूरा भैया देखा, अपने देश में जो मतलब ना दू ठे जवान, एक देश के किसान एक जवान है। सही भैया, या देखा हमन सब लोग का रेडी ही जा अन्नदाता किसान कहलाना है। अपने अभाव में राजी है लेकिन हमन का पेट भरे बदे।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया। देखें अब अपने पंचायती में लगभग कुल बातचीत तो हो ही गल बा, अब काल का कार्यक्रम रह गल बा तो ओके पंच लोगन के बता देवल जा समारू भैया।
0: बता दा
1: तो देखा पंच लोग खेती का बात ई होई बिहाने 6:05 पे।
0: अच्छा।
1: आ एम्मा जौन है विषय रही जे पर जानकारी मिली उ रही मरचा का खेती, आ जानकारी दी हैं दिनेश कुमार सिंह।
0: भैया इधर कल सुबह के बात हो गल। एक बात पंच लोग से बता दा कि देखा निराश ना हो चाहिए, खेती में लगल दऊ पानी बरसी हैं जरूर
1: बिल्कुल
0: धीरे
1: भैया।
0: धीरे है। और कहल गल देर आए दुरुस्त आए, हमें पानी बरसे मन के भगवान
1: अब
0: है।
1: कुल तैयारी भैया हो ही गल बा, अब बेहन
0: हाँ
1: तो पड़ी गल हो, अब बस दऊ का इंतजार बा आ जाए तो ओकरे बाद खेती किसानी अपन चमके। अच्छा चले का बेला भैया बोलत बतियावत हो गल, तो
0: हाँ
1: चलत है जा पंचो।
0: राम
1: राम राम।
0: राम।

0: An individual, or we cannot imagine a society, we cannot imagine a world without art.
1: Ma'am, we are talking about art as a medium of expression. Think about it. If art could express himself, what do you think, what will be the message art will deliver to society in today's context?
0: See, we are living in a very tough world. We are seeing that war is going on. We as a world proud that, we are educated, we are technologically advanced. But what about the thing that, are we good human beings? And society cannot run without good human beings. So I strongly believe in man building. The message of art will be build yourself. Build yourself for your family, for your society, for your nation, and for the world. And conserve the nature. This is very important. Protect the nature, because we have come from the nature, and ultimately we will have to go to the nature.
1: Right,
0: so nature conservation is very important, and building of ourselves is very important. The entire exercise of nation building and the entire exercise of global building depends how can we grow ourselves as a good human being.
1: Very true, ma'am. And as you said, if art is not there, the whole world will be dry.
0: It will be a disastrous. We cannot think even this world without art.
1: Right, ma'am. So, listeners, let there be an art in any form.
0: Art within and art in surrounding.
1: Yes, in your life.
0: In your life, in the entire life.
1: In the entire life.
0: In the entire life of an individual, in the life of the society, in the life of a nation, and in the life of the globe.
1: Thank you very much, ma'am.
0: Thank you so much. Once again, thank you so much that you have invited me.
1: Thank you, listeners.
2: अभी आप अंग्रेजी कार्यक्रम में सुन रहे थे आर्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन विषय पर भावना त्रिवेदी से आकांक्षा सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। प्रसारण आकाशवाणी वाराणसी से हो रहा था। शाम के 7:15 हुए हैं। आइए सुने खोए हुए व्यक्तियों संबंधित सूचना। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार दीविका पटेल पुत्री अशोक कुमार पटेल निवासी गोथू थाना निबढ़िया जनपद जौनपुर दिनांक 12 मार्च 2026 से कहीं लापता हो गई हैं। इनकी हुलिया इस प्रकार है, उम्र 17 वर्ष लगभग, कद 5 फीट, इकहरा बदन, रंग गेहुआ और लंबा चेहरा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर या थाना निवड़िया जनपद जौनपुर को सूचित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार काजल पुत्री छोटेलाल निवासी सूरापुर सौधरवा थाना सरपथा जनपद जौनपुर, ये 2 अगस्त 2025 से कहीं खो गई हैं। इनके हुलिया इस प्रकार है, उम्र 20 वर्ष, कद 5 फीट, इकहरा बदन, रंग सांवला और चेहरा लंबा है। ये पीला छेड़दार सूट पहनी है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर या थाना सरपथा जनपद जौनपुर को सूचित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार मधु चौहान पुत्री ओम प्रकाश चौहान निवासी लमहन थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर कहीं लापता हो गई हैं। इनकी हुलिया इस प्रकार है, उम्र 15 वर्ष, कद 5 फीट

चार इंच, इकहरा बदन, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। इनके बारे में सूचना मिलने पर कृपया पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर अथवा थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों संबंधित सूचना अब समाप्त हुई। ये आकाशवाणी वाराणसी है। 7:18 हो रहे हैं। थोड़ी देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा 2014 में पास किया गया था, जिसके बाद 2016 में एलडीए ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
1: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है, और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
0: इस बीच आज एलडीए ने आग की चपेट में आई बिल्डिंग पर नोटिस लगाने की कार्रवाई की। इस नोटिस के जरिए एलडीए ने बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अगर एलडीए को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल करके इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं आग की घटना में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद केजीएमयू से डिस्चार्ज कर दिया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता

0: केके सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी जनपदों में अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। इसी क्रम में आज प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया। गौतमबुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि जांच के दौरान 2 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है, वहीं कई अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में CFO महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं, जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
1: जो दुखद घटना हुई है लखनऊ में, के क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ है फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है। एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है, सुबह से हम इसी में लगे हुए हैं। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
2: आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज नाबार्ड लखनऊ में FPO राज्य स्तरीय कृषि चुनौतियों पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान उत्पादक संगठनों के समक्ष आने वाली विभिन्न कृषि संबंधी चुनौतियां तथा उनके समाधान के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और वर्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। कल कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पहले से तैयारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों के संरक्षण, हैंडपंपों के अनुरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन और जन जागरूकता कार्यक्रमों को अभियान के रूप में संचालित करने के निर्देश भी दिए। भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और तजाकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि तजाकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक समझौता भी किया जाएगा।
3: कजाकिस्तान और भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर रजा पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात ये आई कि कुछ ग्रंथ यहाँ पर कजाकिस्तान से सीधा संबंध रख और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर

0: साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहाँ भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा।
2: और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की होती है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेरठ को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR इसकी तैयार होनी है जितना हिस्सा मेरठ के अंदर आएगा उसका पैसा मेरठ का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फरनगर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
1: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालु सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। बदायूं के कछला गंगा घाट पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमरोहा के ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए प्रशासन ने नेशनल हाईवे 9 पर रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि आगामी सप्ताह में मानसूनी गतिविधियां तेज होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड में LDA ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। इसी के साथ प्रादेशिक के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
4: मीडियम वेव 401.6।
5: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म अजूबा से। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की। शब्दकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप फिल्म अजूबा का गीत सुने थे। आवाजें थी मोहम्मद अजीज और अर्का याग्निक की। अब आइए सोनू निगम, उदित नारायण और सुनिधि चौहान को सुने। गीतकार हैं अरुण भैरव और संगीतकार हैं अनु मलिक। फिल्म का नाम मुझसे शादी करोगी।

अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म आग और शोला के गीत। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। फिल्म का नाम आग और शोला।

अभी अब मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आग और शोला का गीत सुने थी। अब अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म छुपा रुस्तम से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और साथियों की। एक आवश्यक सूचना के बाद, पोस्टमास्टर जनरल वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी के कार्यालय के डाक सेवाओं के उपभोक्ताओं की समस्याओं शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु दिनांक 25 जून 2026 पूर्वाह्न 11:30 पर पोस्टमास्टर जनरल की अध्यक्षता में सभागार कक्ष कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल वाराणसी परिक्षेत्र द्वितीय तल कैंट प्रधान डाकघर में डाक अदालत का आयोजन सुनिश्चित हुआ है। सूचना समाप्त हुई। अब इसने फिल्म छुपा रुस्तम का गीत। आवाजें अलका याग्निक और साथियों की हैं। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत निर्देशन आनंद मिलिंद का है।

और अब कार्यक्रम के अंत में आए सुने कुमार सानू की आवाज में फिल्म इम्तहान का एक गीत। शब्दकार हैं फैज अनवर और संगीत रचना अनु मलिक की है।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं ए हरिहरन। इनके आवाज में सबसे पहले आए सुने ये गजल। शायर हैं विजय सिन्हा।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में ए हरिहरन की आवाज में गजल। अब आए सुने शाहिद अख्तर का ये कलाम।

इसी गजल के साथ सुगम संगीत का ही कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आज के कलाकार थे ए हरिहरन। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, मीडियम में 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर, रात्रि के 8:15 में है। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी।

अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और आशा भोसले को। फिल्म थी कहीं दिन कहीं रात। गीत लिखा था SH बिहारी ने और संगीतकार थे OP नैयर। अब आई सुने फिल्म लुटेरा का एक गीत, आवाज लता मंगेशकर की है। शब्दकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। अब आए सुने फिल्म अपना देश का एक गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार आरडी बर्मन।

अवयव फिल्म गबन कहेगी सुने, आवाज मोहम्मद रफी की है, शब्दकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम गबन।

गीत लिखा था प्रेम धवन ने और संगीतकार रवि। फिल्म का नाम एक फूल दो माली। अब आइए फिल्म अलग अलग का एक गीत सुनाएं आपको। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं आर डी बर्मन। फिल्म का नाम अलग अलग।

अवरव कार्यक्रम के अंत में इसने मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म परदेसी का गीत। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार चित्रगुप्त।

फिल्म परदेसी के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि की 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से, जिन्हें हम सम प्रसारित करेंगे।

0: La Aurora. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी

0: की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
2: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
2: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
5: We had 26 delegates from
6: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
2: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट

0: सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
1: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की खेड से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना NDRF सिविल डिफेंस फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरि और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक

0: संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: In the FIFA World Cup, Canada will take on Switzerland in a Group B match at Vancouver in Canada tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. IST. In another fixture, Bosnia-Herzegovina will face Qatar at Seattle Stadium in Washington. Earlier, Colombia qualified for the round of 32 after beating DR Congo 1-0 in their Group K match in Guadalajara, Mexico today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reviews progress of trade talks with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer. External Affairs Minister S. Jaishankar meets his South Korean counterpart Cho Hyun in Seoul, calls for stronger India-South Korea ties amid global challenges. Oman announces opening of a temporary maritime corridor through Strait of Hormuz. Five people killed after under-construction godown crashes in Kolkata, rescue efforts in full swing. Heavy rain triggers flash floods in Arunachal, high alert issued in Assam. And in FIFA World Cup, Canada to take on Switzerland in a Group B match at Vancouver tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तिजारती नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रेयर के साथ तिजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हमनसब शो ह्यून के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने आबनाए हुरमुस के जरिए एक आर्जी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। कोलकाता में एक जेरे तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं। अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के सबब अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात वैंकूवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तिजारती उमूर के नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रेयर और उनके वफद के साथ आज सुबह सिलसिलेवार मीटिंगें की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंगों में भारत और अमरीका के दरमियान जारी तिजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया गया और दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी शराकतदारी को मजीद गहरा करने के मौके के इम्कान की तलाश की गई। उन्होंने सफीर ग्रेयर की क्यादत और बातचीत को एक तामीरी समत अता देने की फाल कोशिशों की सताइश की। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी के फ्रेमवर्क के तहत दिफाई तआवुन की तरक्की में पेशरफ्त की गरज से आज एक मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत दिफा ने मुत्तला किया कि मीटिंग की मुश्तरका सदारत बैनुल अक्वामी तआवुन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमिताभ प्रसाद और मुत्तहिदा अरब अमारात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि तबादला ख्याल में दिफाई सनती शराकतदारी को वसत देने, इख्तरा को फरोग देने, जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने और बहरी सलामती में इजाफा करने पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि मौजूदा आलमी चैलेंजों के दौर में भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना नहायत अहम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुश्तरका अकदार और बाहमी एतमाद रखने वाले मुल्कों को एक दूसरे के साथ ज्यादा करीबी तआवुन करना चाहिए। सियोल में जनूबी कोरिया के वजीर खारजा शो ह्यून के साथ मीटिंग के आगाज में अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा बैनुल अक्वामी हालात काबिल एतमाद शराकतदारों के दरमियान तावुन को पहले से ज्यादा अहम बना रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज शाम जनूबी कोरिया के कौमी सलामती के डायरेक्टर वी संगलेक से भी मुलाकात की। बाद में सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों के दरमियान आलमी हालात और वाकयात और भारत बहरुल काहिल खित्ते से मुतालिक अहम स्ट्रेटेजिक उमूर पर मुफीद और नतीजा खेज बातचीत हुई। ओमान ने स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम आबनाए हुरमुस के जरिए आर्जी बहरी राहदारी को खोले जाने का ऐलान किया है। ये इकदाम तिजारती बहरी नकलो हमल की बहाली और इस बहरी बहरान को कम करने की जानेब एक अहम कदम करार दिया गया है, जिसके बाईस खलीज में हजारों समुद्री कारकुन फंसे हुए थे। ओमानी हुकूमत के मुताबिक ये मनसूबा

0: अचानक सैलाब के तनाजुर में आसाम सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के बाद आसाम के निचले इलाकों में सैलाब के शदीद खतरात के पेश नज़र आसाम हुकूमत ने अपनी तमाम मुतालिका एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है, जिसके नतीजे में रियासत के निचले अजला बशमूल धीमाजी, लखीमपुर, बिस्वानाथ और सोनीपुर में पानी की सतह में इजाफा और बहाव की रफ्तार में नुमायां तेजी का खतरा दरपेश है, जबकि अगले एक से दो दिन के दौरान सैलाब के मजीद आगे बढ़ने का इम्कान है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और दीगर हंगामी इमदादी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि जिला इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वह हसास इलाकों की कड़ी निगरानी करें और तमाम जरूरी एहतियाती इकदाम करें। निचले और सैलाब के तई हसास इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने, सरकारी हदायात पर अमल करने, पानी वाले इलाकों में जाने से बचने और छोटी कश्तियों के जरिए सफर करने से गुरेज करने की हिदायत जारी की गई है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: नायब सदर जनाब सीबी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में किताब का इजरा किया, जिसका उन्वान है वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि किताब में इख्तदार से मुतालिक इदारों और आम शहरियों के दरमियान अक्सर मौजूद फासले की अक्कासी की गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि अवाम पर मरकूज हुक्मरानी के जरिए इस खला को पुर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किताब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर भारत की शनाख्त को उजागर करती है, नेज आईन में पेश किए गए इंसाफ, मसावात और आजादी के ख्यालात का इआदा करती है। भारत की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के खलाई इदारों के सरबराहों की मीटिंग 2026 बेंगलुरु में इख्तिताम पजीर हुई। साइंस और टेक्नोलॉजी और खला के वजीर मुमलिका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इख्तिताम इजलास में शिरकत की और आलमी सतह पर खलाई सरगर्मियों में भारत के बढ़ते हुए रोल को उजागर किया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दो रोजा मीटिंग में 10 ममालिक के 26 मंदुबीन ने शिरकत की, जिनमें इसरो, इनस्पेस और खला के महकमे के नुमाइंदे भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि मीटिंग में समाजी इकतसादी तरक्की के लिए रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट निजाम के इस्तेमाल, खसूसा कुदरती आफात के बंदोबस्त और आबो हवा की तब्दीली की निगरानी पर तबादला ख्याल किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से मुंसलिक 9 मकामात पर तलाश की कार्रवाइयां की। गैर मुल्की जर मुबादला मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 की दफात के मुश्तबा खिलाफ वर्जी के मामले में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े अफराद के बारे में जारी छानबीन के सिलसिले में ईडी ने कल से यह तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की थीं। एजेंसी ने कहा कि तफ्तीश से इंकशाफ हुआ है कि मस्कूरा कंपनी और उससे जुड़े अफराद गैर मुल्की जर मुबादला मैनेजमेंट एक्ट फेमा की मुबैना खिलाफ वर्जियों, जिसमें बैरून ममालिक रकम का लेन देन, 3,000 करोड़ रुपए मालियत की गैर शफाफ तरीके से तजारत, 40% स्टॉक के हिसाब में गड़बड़ और बैरून मुल्क बेनामी दारों के हिस्से में हेरा फेरी के मामलात शामिल हैं। ईडी ने तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान बरामद किए गए मुख्तलिफ काबिल एतराज दस्तावेजात और डिजिटल शवाहिद के बारे में भी इंकशाफ किया। केरल के विजिनजाम बैन अलाक्वामी बंदरगाह पर आज शाम एक 1,000वां तिजारती जहाज पहुंचा। ये अहम संगमेल बंदरगाह पर एमएससी लुसियाना नामी बड़े जहाज की आमद के साथ हासिल किया गया। इस कामयाबी के बाद विजिनजाम ने दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली बंदरगाहों में अपनी जगह मजीद मुस्तहकम कर ली है। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिकल सीटों के अलॉटमेंट और दाखिलों के अमल में मुबैना बेजाब्तगियों की तहकीकात करने के लिए सीआईडी की एक टीम रिम्स पहुंची। सीआईडी की टीम ने डीन के दफ्तर और दीगर शोबों के दस्तावेजात की जांच शुरू कर दी है। ये तहकीकात गुज़िश्ता तालीमी साल में बाज ना अहल उम्मीदवारों को जाब्तों के खिलाफ वर्जी करते हुए दाखिला दिए जाने की शिकायत के बाद शुरू की गई हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी खित्ते, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, तेलंगाना, साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा के मुख्तलिफ मकामात पर कल शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। महकमे ने महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और मगरबी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि अगले दो दिनों के लिए बिहार में भी इसी तरह के मौसम की सूरत हाल की पेशगोई की गई है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मगरबी राजस्थान में कल धूल भरी आंधी की पेश हुई है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी बहर अरब, गुजरात और मध्य प्रदेश, नीज महाराष्ट्र के बकिया हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और झारखंड में जुनूब मगरबी मानसून मजीद पेशकदमी कर गया है। इस दौरान आज शाम कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की

से औसत बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फीफा वर्ल्ड कप में आज कनाडा के वैंकूवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। एक और मैच में वाशिंगटन के स्टील स्टेडियम में बोस्निया और हर्जेगोविना का मुकाबला कतर से होगा। इससे पहले मैक्सिको के शहर गुडालाजारा में कोलंबिया ने जमहूरिया कांगो को 0-1 एक गोल से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई किया। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तजारती नुमाइंदे सफीर जैमिसन ग्रेयर के साथ तजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हमनसब शोह्यून के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने अबनाए हुरमुस के जरिए एक आर्जी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। कोलकाता में एक जेर तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम में 241.5 सेंटीमीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है अंजुमन कार्यक्रम। श्रोताओं, अंजुमन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का यह सफर आप तय करेंगे अपने रेडियो दोस्त धर्मेंद्र शुक्ल के साथ। रात की खामोशी, चांदनी की नरम छांव और दिल के एहसासों को शब्दों में पिरोने वाली गजलों और मधुर गीतों की यह महफिल आज आपके नाम है। आने वाले आधे घंटे में हम सुनेंगे कुछ ऐसे नगमे जो आपकी यादों को ताजा करे और रात को खूबसूरत बना दे। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे बिराने में चुपके से बाहर आए। आइए सुने कार्यक्रम के आरंभ में गुलाम अली की आवाज में यह गजल।

श्रोताओं, संगीत और शायरी इंसान के जज्बातों की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है। कभी ये मोहब्बत का पैगाम बनाकर दिल तक पहुंचते हैं तो कभी जिंदगी की सच्चाइयों को बड़े नर्म अंदाज में बयान करते हैं। दिल ही तो है न संग ओ खस्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। अब ऐसने बेगम अख्तर को

श्रोताओं, रात का अपना एक अलग ही जादू होता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब चारों ओर सन्नाटा उतरता है, तब गीत और गजलें हमारे सबसे करीबी साथी बन जाते हैं। कहा भी गया है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। इन्हीं भावनाओं के साथ प्रस्तुत है अगली रचना, जिसमें प्यार, इंतजार और उम्मीद की सुगंध समाई हुई है। आवाज है नुसरत फतेह अली खां।

श्रोताओं, महफिल अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जिंदगी में रिश्तों की गर्माहट, अपनों की याद और उम्मीदों की रोशनी बनी रहे, यही कामना है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। न मैं आपसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो अलग अंदाज नजरों से। आप पेश है अंतिम पेशकश, लता मंगेशकर, आशा भोसले और जगजीत सिंह की आवाजों में।

उम्मीद है कि गीतों और गजलों से सजी यह महफिल आपको पसंद आई होगी। आपकी रात सुकून भरी हो, सपने सुनहरे हों और आने वाला हर दिन नई खुशियां लेकर आए। विदा लेने से पहले एक अंतिम शेर, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। इसी शुभकामना के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि और आकाशवाणी।

0: अभी आप अंजुमन कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है बट वृक्ष कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आइए सुने वृद्धावस्था में थर्मल थेरेपी विषय पर मनीष यादव से अनु जायसवाल की बातचीत।
1: नमस्ते, मेरा नाम अनु जायसवाल है और आज हम लोग बट ब्रिज कार्यक्रम में आए हुए हैं। और बट ब्रिज कार्यक्रम में आज हमारे बीच में जो वृद्धावस्था है के बीच में होने वाली बीमारियां हैं, थर्मल थेरेपी के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमारे पास मनीष यादव जी बैठे हुए हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि ये थर्मल थेरेपी होती क्या चीज़ है।
2: थर्मल थेरेपी के बारे में आप जानकारी लेने के लिए मुझे बुलाया है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थर्मल थेरेपी एक तरह की गर्म थेरेपी होती है, हीट थेरेपी। इसके इस्तेमाल करने से इंसान के शरीर में होने वाले दर्द, सूजन, इस तरह की बीमारियों में काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। थर्मल थेरेपी का मतलब होता है किसी भी प्रकार से शरीर को गर्मी देना, एक गर्मी शरीर के अंदर प्रवेश कराकर उनके तकलीफ में राहत देना, ये थर्मल थेरेपी का मुख्य काम है। थर्मल थेरेपी की जो शुरुआत है, अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत साउथ कोरिया से हुई है। आज हमारे भारत देश में भी काफ़ी जगहों पर थर्मल थेरेपी के इस्तेमाल कराया जा रहा है। दूसरी चीज़, थर्मल थेरेपी के अंदर अगर आप देखा जाए तो ये एक सेफ तरीका है शरीर से दर्द को ख़त्म करने का।
1: तो सर, जैसा कि आपने बोले गर्म थेरेपी, तो ये गर्म थेरेपी क्या चीज़ होता है, किस चीज़ की गर्मी होती है?
2: थर्मल थेरेपी में हम जो हीट का इस्तेमाल करते हैं, गर्मी का इस्तेमाल करते हैं, वो FIR रेज होती है, जैसे कि फार इंफ्रारेड रेड रेज। इसको अगर हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो ये होती है सूरज से मिलने वाली सुबह की धूप। अर्ली मॉर्निंग जो सुबह की धूप होती है वो काफ़ी कोमल होती है और इंसान के शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो इसीलिए हम लोग थर्मल थेरेपी के अंदर इस प्रकार की गर्माहट का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलती है।
1: ये जो होता है फार इंफ्रारेड रेज की गर्मी होती है, तो ये किस प्रकार के उपकरण से कराई जाती है, कैसे ये होता
2: जी,
1: है?
2: इसके लिए तमाम प्रकार के उपकरण बनाए गए हैं, जिसमें से एक होती है हीटिंग मैट। हीटिंग मैट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर एक स्टोन लगाते हैं, विशेष प्रकार के वो पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं। जब उनको उनको गर्म किया जाता है, यानी कि उसको जब किसी बिजली के उपकरण से उसको जब गर्माहट दी जाती है, तो उसमें से FIR रेज निकलती है। और उसको यूज़ करने के लिए कुछ सावधानियाँ भी रखनी पड़ती हैं, जैसे कि बेडशीट वगैरह कॉटन की, कपड़े जो पहनकर हम लोग थेरेपी कराते हैं वो भी कॉटन की होती है। कॉटन के बेडशीट का इस्तेमाल बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए करते हैं सेफ्टी के पर्पज़ से।
1: अच्छा सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कॉटन कपड़ा, तो ये FIR रेज जो होता है, तो कॉटन का जो कपड़ा ये तो सही है, लेकिन जैसे कैसा कपड़ा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए कि किस प्रकार का कपड़ा होना चाहिए?
2: लाइट कलर का कपड़ा रहेगा तो अच्छा है। वैसे हम लोग जहाँ कराते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि सफ़ेद कलर का कपड़ा यूज़ करें।
1: तो सर, ये जो उपकरण आप बता रहे हैं कि स्टोन, तो स्टोन के माध्यम से ही सारी थेरेपी कराई जाती है?
2: जी,
1: इसमें किस प्रकार की मशीनें, क्या चीज़ होता है?
2: इसमें कई प्रकार की मशीनें होती हैं आजकल, देखिए तमाम प्रकार की। जैसे कि एक तो हो गई हीटिंग मैट। हीटिंग मैट वो इस तरह से बनाया जाता है कि उसको, देखिए आजकल जितने भी उपकरण आते हैं सब चलाने के लिए बिजली का सहारा लेना पड़ता है, तो ये जो हीटिंग मैट है इसको भी चलाने के लिए बिजली का सहारा लिया जाता है। लेकिन उसके लिए हम उस मैट के अंदर एक ऐसी सिस्टम को बनाया जाता है, एक ऐसा रिमोट बनाया जाता है।

0: जाता है, जिससे कि वो मैट के अंदर जो करंट आता है वो डीसी करंट में कन्वर्ट हो जाता है, बैटरी करंट में, ताकि किसी प्रकार की कोई उनको बिजली के करंट से कोई नुकसान ना हो। तो उसको पूरी सेफ्टी के साथ बनाया जाता है। एक तो हो गई मैट, दूसरे नंबर पे एक आती है हीटिंग बेड। तो हीटिंग बेड का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ हीटिंग बेड होते हैं, उसके ऊपर इंसान अगर लेट कर थेरेपी करे तो उसके स्पाइन के ऊपर से मसाज होती है, मसाज करके वो हीट को शरीर के अंदर प्रवेश भी कराती है, साथ साथ में मालिश भी करती है। तीसरे नंबर पे और भी कुछ ऐसे छोटे छोटे बेल्ट आते हैं, जैसे कि आपको पर्टिकुलर जगह पे इस्तेमाल करना है, कमर में इस्तेमाल करना है, तो एक हीटिंग बेल्ट आती है, आप उस बेल्ट को भी लगाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: अच्छा, और इन सब में वही स्टोन के माध्यम से ये सारी चीजें कराई
0: जी,
1: जाती
0: वो जो
1: हैं।
0: स्टोन होते हैं साउथ कोरिया में ही ज्यादातर बनते हैं, वहां से ही आते हैं। उस स्टोन को बनाने के लिए कई प्रकार के स्टोन यूज किए जाते हैं, मिक्स करके बनाए जाते हैं। जैसे कि स्टोन के अगर नाम ले तो जिसमें जर्मेनियम, सल्फर हो गया, सिल्वर
1: जी
0: हो गया, इस प्रकार से तमाम प्रकार के स्टोन्स होते हैं जिनको मिक्स करके इस स्टोन को बनाया जाता है। और इन स्टोनों की खासियत ये होती है कि जब ये गर्म होते हैं तो इसमें से FIRS निकलती है।
1: तो उसी के माध्यम से सारी थेरेपी
0: जी
1: कराई
0: जी
1: जाती है।
0: उसी से कराई जाती है।
1: अच्छा, तो सर क्या इसको केवल वृद्धावस्था के लोग ही ले सकते हैं कि सभी कोई ले सकते
0: ये
1: हैं?
0: जो थर्मल थेरेपी है, जैसे आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल है अगर देखा जाए तो लोगों का काम जो है ज्यादातर बैठकर है, वर्क फ्रॉम होम भी आजकल चल रहा है, लोग बैठकर ज्यादा काम करते हैं, साथ ही साथ मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत सारा हो रहा है।
1: ये क्या वृद्धावस्था के लोग ही कर सकते हैं सर?
0: देखिए अनु जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वृद्धावस्था में ही इसको किया जा सकता है। जैसे कि आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल है, जिस प्रकार से हमारा रहन सहन है, तो उस रहन सहन खान पान के अनुसार अगर हम देखें तो कम उम्र के लोगों को भी बैक पेन शुरू हो जा रही है आज के समय में। वो उम्र का कोई लेना देना नहीं है, कम उम्र में भी लोगों को कमर दर्द, सर्वाइकल, आजकल जो मोबाइल का चलन बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो मोबाइल की वजह से लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, कम उम्र में भी हो रही है। लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो इससे भी लोगों को बैक पेन वगैरह काफ़ी हो जाती है। तो ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी जिनके शरीर में किस प्रकार की कोई परेशानी है, तो उसमें राहत देने के लिए कम उम्र के लोग भी कर सकते हैं। ये कहना चाहूँगा कि बुजुर्ग अवस्था के लोगों को ये ज़्यादा फायदेमंद इसलिए है क्योंकि उनके पास उनके उस अवस्था में, जैसे जब व्यक्ति 40 के ऊपर जाता है, तो जैसे हम 40 के ऊपर जाते हैं उसके बाद हमारे शरीर से मसल्स जो है 1% से कम होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि शरीर की जो मसल्स कमज़ोर होती है तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। बुजुर्ग अवस्था में मसल्स की मात्रा कम हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और भी तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से उनके शरीर में दर्द ज़्यादा रहता है, घुटने में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है।
1: तो जैसे ये कमर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, तो कमर में घुटने के दर्द के लिए सर ऐसा कौन सी मशीन है जिसपे की थेरेपी करें तो काफी रिलीफ मिलेगा? ऐसा क्या चीज होना चाहिए?
0: देखिए हमारे पास एक थर्मल जो मैट, थर्मल मैट जिसको बोला जाता है, थर्मल मैट के इस्तेमाल से घुटने दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, लगभग सभी चीज़ों में लाभ मिलता है।
1: तो ये थर्मल मैट जो हो बता रहे हैं आप, तो थर्मल मैट में क्या चीज लगा हुआ है?
0: थर्मल मैट में मैम एक तरह का विशेष प्रकार का स्टोन लगा है, पत्थर लगा है,
1: अच्छा,
0: उस पत्थर से जो गर्माहट मिलती है वो FIRS की मिलती है, उसी वजह से ही फायदा होता है।
1: तो ये स्टोन कितने मात्रा में लगा हुआ, उसमें क्या एक दो लगा हुआ है या कैसे लगा हुआ
0: नहीं, ये
1: है?
0: छोटी छोटी साइज में होते हैं, एक मैट में लगभग 1000 के ऊपर स्टोन लग जाते हैं, और छोटे छोटे साइज में होते हैं तो इंसान को उस पर लेटने में भी कंफर्टेबल रहे, इसीलिए उसको इस तरह से बनाया जाता है। उसको उपकरण को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान रहे, इसलिए छोटे छोटे स्टोन्स को इसके ऊपर लगाया जाता है ताकि वो सुविधाजनक हो और व्यक्ति उस पर आराम से थेरेपी कर सके।
1: तो इस पे क्या छोटे बच्चे भी थेरेपी कर सकते हैं?
0: छोटे बच्चे भी कर सकते हैं मैम, लेकिन बच्चों को रहा बात बच्चों की, तो बच्चे थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, तो इसीलिए बच्चों को थेरेपी करा तो सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप अपने पर्सनल डॉक्टर हो उनका सलाह लेना बहुत ज़रूरी है।
1: और सर जैसा कि देखा जाए इस समय बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, अनेक प्रकार की, कमर में घुटने के साथ साथ आप देखिए तो अभी गठिया जैसी बीमारी भी बहुत लोगों को हो रहा है। तो क्या गठिया जैसी बीमारी के लिए भी ये जो आप बता रहे हैं थर्मल थेरेपी में मैट है, तो क्या उससे उसका बेनिफिट मिलेगा?
0: बिल्कुल मैम, उससे लाभ तो ज़रूर मिलेगा। देखिए गठिया में इसका लाभ इसलिए भी मिलेगा क्योंकि गठिया में क्या होता है कि इंसान के शरीर में ठंड के मौसम में, गठिया वाले जितने भी पेशेंट होते हैं, अगर आप देखेंगे जो भी लोग हैं ठंड के मौसम में, उनकी जो तकलीफ़ है थोड़ी बढ़ जाती है, और जैसे उनकी शरीर के अंदर गर्माहट दी जाती है तो

0: गर्माहट से क्या होता है, उनको थोड़ा सा उस दर्द में आराम मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि बरसात के समय में लकड़ी का जो दरवाज़ा होता है
1: जी जी
0: वो उसमें नमी आ जाती है,
1: जी
0: तो नमी आने की वजह से वो दरवाज़ा ठीक से नहीं बंद होता,
1: बिल्कुल
0: सही है। तो इसी प्रकार से गठिया वाले पेशेंट्स की हड्डियों के अंदर भी इसी प्रकार की कुछ परेशानी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। अब ऐसे में जब वो थर्मल थेरेपी की मैट का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी दर्द भी कम होता है, सूजन भी कम होती है, और काफ़ी अच्छा राहत जो है गठिया वालों को इससे मिलता है।
1: मतलब कि इससे काफी अच्छा
0: जी
1: फायदा
0: जी
1: मिलता है।
0: इसको लंबे समय तक करना पड़ता है, काफ़ी समय तक करना पड़ता है, क्योंकि गठिया की जो परेशानी है इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है, तो इसके लिए उसको लंबे समय तक करना पड़ता है।
1: अच्छा, जैसा कि सर अभी आप बता रहे थे कि अभी हम पूछे कि आपके यहाँ किस किस तरह की मशीनें हैं, कौन से उपकरण से थेरेपी कराई जाती है, तो आप बताएं कि बेड है और उस पर लेटते हैं, मसाज होता है, तो ये जो बेड है उस पर लेटते हैं, ये मसाज किस तरह से होता है?
0: देखिए, ये जो थेरेपी वाले जो बेड हैं, ये बेड इस तरह से बनाए जाती हैं कि ये आपकी स्पाइन रीढ़ की हड्डी पर, ये मशीन के जो रोलर होते हैं रीढ़ की हड्डी पर चलते हैं, और कुछ उपकरणों में पैरों की तरफ भी लगाए जाते हैं रोलर, जैसे कि पैर की भी मसाज होती है और रीढ़ की हड्डी की। तो रीढ़ की हड्डी पे एक रोलर होता है जो कि इसी स्टोन से बनाया जाता है, वो मसाज करते हुए आपके सर्वाइकल, थोरासिस और लुम्बर तीनों जगहों पर ये गर्माहट के साथ मसाज करता है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के आसपास की जो मसल्स होती हैं वो अच्छी हो जाती हैं, उनको गर्माहट मिलती है, साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी का जो स्ट्रक्चर है वो भी सही तरीके से आ जाता है। क्योंकि शरीर का जो मेन, अगर देखा जाए तो इंसान के शरीर का जो मेन चीज़ है वो रीढ़ की हड्डी है,
1: जी
0: तो रीढ़ की हड्डी अगर सही रहेगी तो आपके शरीर की सारी संरचना सही रहेगी। तो थर्मल थेरेपी में जो बेड का निर्माण किया गया है, लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मल थेरेपी में जो बेड है, उसका मेन काम यही है कि आपकी स्पाइन को सही दिशा में रखें।
1: अच्छा, मतलब कि जब अगर इस बेड पे, हाँ, जो भी व्यक्ति, अगर किसी को प्रॉब्लम है कमर में और सर्वाइकल जैसे दिक्कत है, अगर वो लेटता है तो उसकी जो भी ये दिक्कत है तो धीरे धीरे उसको
0: हाँ बिल्कुल,
1: रिलीफ मिलता है।
0: सर्वाइकल, थोरासिस और लुम्बर, ज़्यादातर
1: जी
0: देखिए सर्वाइकल के हिस्से में लोगों को परेशानियाँ आती हैं, सर्वाइकल होने की वजह से लोगों के गर्दन में दर्द हो जाता है, चक्कर भी आने लगते हैं, कई बार लोगों को चक्कर भी आता है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि जब हम हमारे मैट इस बेड पे लेटते हैं, जो हम थर्मल थेरेपी बेड है, जब इस पे कोई व्यक्ति लेटता है तो वो सर्वाइकल के हिस्से पे मशीन रोल करती है, रोलर की तरह चलती है, हल्का मसाज करती है, और मसाज करने से क्या होता है कि यहाँ की जो मसल्स है वो अच्छी हो जाती है, नसों के ऊपर भी थोड़ा सा,
1: सर्वाइकल कहाँ सर?
0: गर्दन,
1: जैसे
0: गर्दन के
1: गर्दन।
0: हिस्से पे,
1: जी
0: गर्दन पे टोटल 7 हड्डियाँ होती हैं, यहाँ पे सर्वाइकल के हिस्से में ही ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम
1: अच्छा,
0: आती है। और उसके अलावा बैक पेन, यानी कमर की दर्द अगर है तो उस बेड पे लेटने से कमर के दर्द में भी वो रोलर अच्छे से मसाज करता है, जिसमें उनको लाभ मिलेगा।
1: तो ये लाभ कितने दिनों में समझ में आता होगा सर, अगर जैसे जिसको प्रॉब्लम है?
0: देखिए, ये लाभ कितने दिन में समझ में आता है, ये पर्सनल, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपकी परेशानी ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर नॉर्मल सा दर्द है तो उसमें आपको तुरंत अच्छा महसूस होने लगेगा।
1: मतलब कि आपके कहने का कि इंसान की परेशानी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर ज्यादा लंबे समय की परेशानी है तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, अगर कम समय का है तो रिजल्ट तुरंत मिलता है।
0: जी,
1: जी, अब दूसरा टॉपिक, जैसे आप बता रहे थे एक बेल्ट होता है, तो उस बेल्ट को जब हम, आप बता रहे हैं, यूज कराते हैं, तो वो बेल्ट कहाँ पे यूज किया जाता है?
0: बेल्ट का इस्तेमाल जो है हम लोग कमर पे कर सकते हैं, जैसे कि कमर में ज़्यादातर लोगों को दर्द होता है, लुम्बर का L1 से लेकर L5 के बीच में, यहाँ पे परेशानी ज़्यादातर क्या होती है कि नसें दब जाती हैं या हड्डी में गैप बढ़ जाता है या इस प्रकार से कोई परेशानी हो जाती है, मसल्स में दर्द होता है, तो कमर में बेल्ट को बांध के रखने से वो भी हीट होता है, टेम्परेचर उसका लगभग 35 से लेके 50-55 तक जाता है सेंटीग्रेड में। तो इसको यूज़ करते समय बस इतना ध्यान रखना होता है कि इसको डायरेक्ट स्किन टच नहीं करते हम, इसको यूज़ करते समय आपको एक बाकायदा एक कॉटन का कपड़ा यूज़ करके, मतलब लगा के उस एरिया पे, फिर आप उस बेल्ट को लगाएंगे कमर पे डायरेक्ट, तो आपको कमर के दर्द में राहत मिलती है। पेट पे भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको वज़न वगैरह कम करना होता है, क्योंकि ये हीट थेरेपी है तो इससे फैट भी आसानी से
1: तो
0: कम
1: क्या
0: होता है।
1: उसमें भी स्टोन लगा रहता है?
0: जी, स्टोन की ही गर्माहट दी जाती है ना।
1: जो ये गर्माहट है वो जिस भी मशीन में है सब में वो स्टोन ही लगा
0: जी,
1: हुआ है,
0: स्टोन की वजह से।
1: ये जैसे पर्टिकुलर कोई एक बीमारी में काम करता है कि सारी बीमारियों में ये काम
0: देखिए,
1: करता है?
0: इसको किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया है, नहीं हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए है, ऐसा नहीं है। हाँ इसको

0: तो इस्तेमाल शरीर की ओवरऑल हेल्थ के लिए है, किसी एक बीमारी से जोड़कर हम लोग नहीं देख सकते हैं। एक तरह से अगर आप देखें तो ये प्रिकॉशन की तरह है। इंसान जिस प्रकार से 18-20 साल की उम्र में जिम में जाकर कसरत करता है
1: जी,
0: ताकि मसल्स अच्छी बनी
1: मसल्स। हाँ
0: रहे उस उम्र में, तो 50-60 की उम्र में इंसान जिम जाकर कसरत तो ज़्यादा नहीं कर सकता, तो उस उम्र के लोगों के लिए एक तरह की एक्सरसाइज है, ये प्रिकॉशन है। यानी कि अगर ये सारी चीज़ें अगर इंसान करता रहे, थर्मल थेरेपी का सहारा अगर इंसान लेता रहे, तो बुजुर्ग अवस्था में उसको परेशानियां तो आएंगी लेकिन उतनी परेशानी नहीं आएंगी।
1: मतलब कहने का आपका तात्पर्य है कि ये जो 18-20 साल के लोग जो जिम जाते हैं, तो ये वृद्धावस्था का एक प्रकार का जिम है, ताकि वो अपने आप
0: हाँ,
1: को
0: ये
1: फिट
0: आप
1: रख
0: कह
1: सके
0: सकते
1: हैं।
0: हैं।
1: तो सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे इस थेरेपी को करने के दौरान कुछ खान पीन का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है?

0: एक तरह की एक्सरसाइज है, ये प्रिकॉशन है, यानी कि अगर ये सारी चीज़ें अगर इंसान करता रहे, थर्मल थेरेपी का सहारा अगर इंसान लेता रहे, तो बुजुर्ग अवस्था में उसको परेशानियां तो आएंगी लेकिन उतनी परेशानी नहीं आएंगी।
1: मतलब कहने का आपका तात्पर्य है कि ये जो 18-20 साल के लोग जो जिम जाते हैं, तो ये वृद्धावस्था का एक प्रकार का जिम है, ताकि वो अपने आप
0: हाँ
1: को
0: ये
1: फिट
0: आप
1: रख
0: कह सकते
1: सकें।
0: हैं।
1: तो सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे इस थेरेपी को करने के दौरान कुछ खान पीन का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, या किसी चीज की सावधानियां बरतनी पड़ती है कि ये चीज मत खाइए, ऐसा कुछ?
0: नहीं, खाने पीने का तो विशेष कोई विशेष ऐसा नहीं है। हाँ जैसे कि गर्म थेरेपी है, हीट थेरेपी है, तो शरीर के अंदर गर्माहट जाती है, तो कोशिश ये रहे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीकर इस थेरेपी को करें, ताकि शरीर डिहाइड्रेट ना हो। जितना पानी पिए रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी खाने वाने की का कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप खाकर थेरेपी। हाँ खाने के बारे में आप अपने एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं।
1: अच्छा, मतलब अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है तो
0: जी
1: आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके खाने पीने में आप परहेज कर सकते हैं,
0: जी
1: आपके कहने का तात्पर्य ये है। जी बहुत अच्छा। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर, कि जैसे कि आप ये बोल रहे हैं कि पानी के लिए आप बोले हैं, तो यहाँ पे जैसे आमतौर पे किसी को कोई दिक्कत होता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है, दवा लेता है, लेकिन ये थेरेपी के माध्यम से अगर समस्या हमारी दूर हो रही है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, जैसे गठिया के हो चाहे सर्वाइकल, जो भी आप बता रहे हैं, ये अगर हम कर रहे हैं तो हम रिलीफ मिल रहा है, तो ये कैसे वो थेरेपी के माध्यम से रिलीफ मिल रहा है, या उसके लिए कुछ और ऐसी कुछ व्यवस्था भी करनी पड़ी उसके साथ साथ?
0: नहीं, थेरेपी का जो मेन काम है, जैसे मैंने बताया, थर्मल थेरेपी में क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जब ये गर्माहट जाती है, तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, मसल्स को अच्छा करता है, तो इससे क्या होता है कि आपको ओवरऑल हेल्थ अच्छा होता है। अब ये आपको अगर कुछ पर्टिकुलर बीमारी के लिए या फिर, तो उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेकर ही करना है।
1: अच्छा सर, ये बताइए, आपका खुद का अपना थेरेपी सेंटर है?
0: जी
1: जी, ये थेरेपी सेंटर में आपके यहाँ किस ढंग के लोग, किस तरह के बीमारी के लोग ज्यादा आते होंगे?
0: देखिए अनु जी, ऐसा है, बीमारी के हिसाब से तो काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो घुटना दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए लोग ही ज़्यादा आते हैं। एक उम्र, जैसे आपने बताया कि 50 साल की उम्र के बाद के लोगों को ये परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। तो बैक पेन, कमर यानी कि कमर दर्द, घुटना दर्द, सर्वाइकल के से जुड़ी समस्या वाले लोग हमारे यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं,
1: अच्छा,
0: और कुछ दिनों में उनको लाभ भी मिल जाता है,
1: कुछ
0: मिल रहा
1: दिनों
0: है।
1: में सर हम ये पूछना चाहेंगे, जैसे लगभग मतलब कितने दिनों में, कुछ दिनों में जैसे
0: कुछ
1: इस तरह
0: दिनों
1: के
0: में
1: पेशेंट आते हैं तो जैसे कुछ एक समय होता होगा ना
0: देखिए
1: हाथ का?
0: फर्क तो, देखिए फर्क तो उनको पहले दूसरे दिन करने से ही समझ में आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा तकलीफ होती है तो पहले दूसरे दिन से ही उनको फर्क समझ में आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर व्यक्ति की तकलीफ अलग अलग है, तो उसके अनुसार, उसके शरीर के ऊपर, उसे खान पान का कैसा है, क्या सिस्टम है, रहन सहन कैसा है, खान पान क्या है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है थेरेपी के बारे, थेरेपी का असर दिखता है।
1: लेकिन दिखता सबको है,
0: हाँ
1: दिखता सबको है।
0: देखिए
1: और ये
0: मैंने क्या बताया कि ये एक तरह का प्रिकॉशन है ना, अगर अगर आपको कमर में दर्द नहीं है फिर भी अगर आप इसको कर रही हैं, तो आपको जल्दी मतलब कभी ये दर्द तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आप पर तकलीफ है, तो आजकल लोग सजेस्ट भी करते हैं, डॉक्टर्स भी फिजियोथेरेपी के लिए सजेस्ट
1: बिल्कुल
0: करते हैं, ये
1: बिल्कुल,
0: सारी चीज़ों के लिए सजेस्ट
1: हाँ
0: करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस थेरेपी से ही सही होती हैं। तो अभी ये
1: अच्छा,
0: थर्मल थेरेपी थोड़ा सा एडवांस है।
1: एडवांस मतलब थेरेपी तो है लेकिन ये एडवांस थेरेपी है।
0: जी
1: जी, और जैसा कि आप बोल रहे
0: थर्मल
1: हैं,
0: थेरेपी का देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करें तो हीट थेरेपी का इस शुरुआत जो है ना बहुत पहले से है, पर हम उसके बारे में अवेयर उतने नहीं थे, क्योंकि पहले के समय में जब युद्ध वगैरह होते थे, राजा महाराजा लोग लड़ाई करते थे, तो उस समय जो बड़ी बड़ी चोट लगती थी लोगों को, तो उसको ठीक करने के लिए वो क्या करते थे, अपने खंजर को गर्म करके
1: जी,
0: और फिर वहाँ पे उसको
1: हाँ
0: सेकते हैं,
1: सेकते थे
0: तो
1: गर्म
0: जिसकी
1: कर।
0: वजह से वो जख्म का निशान तो रहता था उनके शरीर पे, लेकिन पॉइजन उनके शरीर में नहीं फैलता था,
1: नहीं
0: इंसान
1: फैलता
0: जिंदा रहता था।
1: जी,
0: और हीट थेरेपी जो होती है, थर्मल थेरेपी में हीट थेरेपी जो होती है, ये तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है कि स्टीम बाथ लेते हैं, वजन कम करने के लिए, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, शरीर से गंदगी को बाहर निकालने के लिए स्टीम बाथ वगैरह का भी चलन है।
1: बहुत सारी चीजें, हाँ
0: जी तो वो एक अलग तरीका है, ये थोड़ा सा तरीका अलग है। थर्मल थेरेपी में जैसे कि हम लोग स्टोन का इस्तेमाल करके बॉडी को हीट गर्माहट दे रहे हैं, वहाँ पे जो दूसरे चीज़ें हैं उसमें भाप का इस्तेमाल करते हैं, और तमाम प्रकार

0: की चीजें करते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी को ठीक करने के लिए भी हीट थेरेपी का बड़ा ही अच्छा योगदान है।
1: अच्छा, तो मतलब जैसे कैंसर जैसी बीमारी में भी ये
0: ये हाँ बिल्कुल
1: थेरेपी लिया
0: बिल्कुल
1: जा सकता है।
0: कैंसर जैसी बीमारी में ये अच्छे से आपको लाभ दे सकता है। यानी कि जो आप थेरेपी जो भी आपका ट्रीटमेंट है, देखिए उसका जो ट्रीटमेंट के साथ साथ में अगर आप इस थेरेपी को कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। मैट क्या है, शरीर के तापमान को बढ़ाता है।
1: अच्छा
0: कैंसर
1: अच्छा
0: के जो सेल्स होते हैं वो जब शरीर का तापमान कम होता है, जैसे जिसको कैंसर हो जाता है उसकी बॉडी का तापमान कम हो जाता है।
1: अच्छा जी, ऑटोमेटिक कम होने
0: हाँ तो
1: लगता
0: इस
1: है।
0: शरीर का तापमान कम हो जाता है, तो ये हीट थेरेपी क्या करेगी, अगर इसका इस्तेमाल कैंसर के पेशेंट्स भी अगर करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा लाभ देगा, सपोर्ट करेगा उनको ठीक होने में।
1: मतलब आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा,
0: जी,
1: टेम्परेचर को कम नहीं होने देगा। तो इसके लिए आप थर्मल थेरेपी के लिए सर और क्या कहना चाहेंगे, ये कैसा चीज है, लोगों को करना चाहिए या नहीं?
0: देखिए थर्मल थेरेपी की जो जब से मैं जान रहा हूँ, मुझे 15 साल हो गए हैं इस चीज़ को करते हुए, और 1992 से इसकी शुरुआत लगभग हमारे यहाँ पे इंडिया में हुई है,
1: अच्छा, उन्नीस सौ
0: और
1: बानवे
0: कई जगह पे धीरे धीरे, पहले तो कुछ बड़े शहरों में ही हो रहा था थर्मल थेरेपी, लेकिन आजकल हर एक शहर में काफ़ी जगह पे अलग अलग नाम से इसको स्टार्ट किया गया है, अलग अलग जगह पे इसको लोग करते हैं, लाभ भी ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो पूरे हर जगह पे ये सेंटर है, वहाँ जाकर लोग इसका लाभ ले रहे हैं।
1: बिल्कुल सर। जैसे कि अभी आप एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि कमर और घुटने के पेशेंट आपके यहाँ ज्यादा आते हैं, तो सर क्या घुटने के लिए कुछ स्पेशल कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप लोग थेरेपी कराते हैं या मैट के माध्यम से ही कराते हैं सिर्फ?
0: नहीं, घुटने के लिए जो हमारे पास थेरेपी है उसमें हम लोग टेंस थेरेपी, वाइब्रेशन थेरेपी का भी इस्तेमाल कराते हैं। वो टेंस थेरेपी यानी कि एक उसी उपकरण एक ऐसा होता है जिससे उनकी घुटने में लगाकर वाइब्रेशन और टेंस थेरेपी भी कराई जाती है, उससे भी
1: अच्छा
0: लोगों को लाभ मिलता है।
1: अच्छा मतलब उसको घुटने पे लगा के टेंस थेरेपी होता है, तो क्या वो कैसा होता है, पैच टाइप में कैसा क्या होता है वो?
0: पैच की तरह ही होता है, मतलब एक छोटे छोटे पैच होते हैं वो चिपकाते हैं। फिजियोथेरेपी वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं,
1: अच्छा अच्छा
0: फिजियोथेरेपी में भी
1: उसको
0: इसका।
1: लगा के, वो टेंस थेरेपी उसको बोलते हैं, उसे लगा के किया जाता है जिससे आपके घुटने की समस्या धीरे धीरे दूर होती है।
0: जी
1: अच्छा, जैसा कि अभी आप बता रहे थे सर बेल्ट के बारे में कि इतने स्टोन लगे होते हैं, तो आपके यहाँ बेल्ट है और अभी आप बताए हैं कि घुटने के लिए पैच लगा के टेंस थेरेपी, तो आपके यहाँ और भी क्या क्या सुविधाएं हैं और कौन की किस तरह की मशीनें हैं, चाहे
0: देखिए
1: थर्मल थेरेपी में किस प्रकार की ये सारी मशीनें आती हैं?
0: जी थर्मल, देखिए हमारे पास जो थर्मल थेरेपी के अंदर हम लोग तमाम प्रकार के उपकरण रखे हैं, अलग अलग प्रकार के, जिसमें अभी हमने एक ऐसी मशीन है जो नर्व स्टिमुलेटर की काम करती है, NSM हम लोग बोलते हैं, नर्व स्टिमुलेटर मशीन। तो ये नसों के ऊपर वाइब्रेशन का काम करती है, इस पे खड़े होकर जब हम थेरेपी करते हैं या बैठ कर थेरेपी करते हैं तो ये शरीर के अंदर कंपन पैदा करती है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन से क्या होता है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी काफ़ी अच्छा सुधार होता है, मांसपेशियां भी अच्छी होती हैं, और तमाम प्रकार के उससे लाभ मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मसाज चेयर भी हम लोग रखते हैं, मसाज चेयर ये भी बहुत आजकल चलन में है।
1: ये
0: मसाज
1: मसाज
0: चेयर,
1: चेयर क्या होता है?
0: मसाज चेयर से शरीर का मसाज होता है और मालिश होता है एक तरह से, और इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे
1: अच्छा,
0: कि रक्त के संचार में सुधार, मालिश करने से हम सभी को पता है कि मालिश जो है हमारी बचपन से होती आ रही है। जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, 1 महीने का 1.5 महीने का होता है, जब से हम लोग 1 दिन का 2 दिन का होता है तब से हम लोग उसकी मालिश करते हैं। तो हमारे यहाँ पहले लोग कहावत भी कहते थे कि बचपन की गई भी मालिश बुढ़ापे तक काम आती है। तो मालिश करने से क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत हो जाती हैं, रक्त संचार अच्छा हो जाता है, जोड़ों का जो जकड़न होता है वो कम हो जाता है, शरीर में लचीलापन बढ़ जाता है, जैसे दर्द में राहत मिलता है, जैसे आपको हम सभी को
1: मतलब
0: पता है कि
1: कहने का एक तरह से देखा जाए तो ये फुल बॉडी मसाजर
0: हाँ,
1: है।
0: तो ये चेयर एक इस तरह से बनी होती है कि इसके अंदर आप जब बैठ जाते हैं तो आपके पैर से लेके कंधे को, हाथ, रीढ़ की हड्डी, सब चीज़ों पे अच्छे से मसाज करती है, और मसाज करने की वजह से शरीर पूरी तरह से रिलैक्स में आ जाता है।
1: अच्छा,
0: जैसे आप कहीं लंबे सफ़र पे ट्रेवलिंग करके आ रहे हैं, या फिर आप बहुत देर से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं कुर्सी पर और बहुत बैठकर काम कर रहे हैं और आपकी बैक में दर्द हो रहा है या
1: बैकसाइड,
0: शरीर में बहुत
1: जी
0: ज़्यादा
1: जी
0: थकावट सा महसूस हो रहा है, तो एक बार आप उस मसाज चेयर पे बैठ जाएंगे तो मात्र 20 मिनट के अंदर आप पूरी तरह से रिलैक्स होकर वापस आ जाएंगे।
1: मतलब एक बार अगर उसमें हम थेरेपी लेते हैं तो 20 मिनट में पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। तो
0: जी
1: इस तरह की सारी मशीनें आपके पास हैं,
0: जी
1: तो जैसे कि आप क्या क्या बताए हैं कि मसाज चेयर बता रहे हैं,
0: कई सारे उपकरण, देखिए थर्मल

0: थेरेपी को में कई सारी चीज़ें भी शामिल की जाती है, जैसे थर्मल
1: जैसे
0: थेरेपी के अंतर्गत मसाज थेरेपी भी शामिल हो जाती है, जो उपकरण है उसके अंदर मसाज भी होता है, एक्यूप्रेशर, कायरोप्रैक्टिक, FIR रेस की गर्माहट, वाइब्रेशन, टेंस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो ये सारे उपकरण जो हमारे पास है उसमें मुख्य रूप से मैट जो काफ़ी फायदेमंद होती है, मैट के अलावा बेड होते हैं, मसाज चेयर होते हैं, NSM है, बेल्ट है, कुछ पैच है, और जो इस मैट के अंदर लगाया हुआ स्टोन है, तो इस स्टोन का हम लोग अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी को कहीं तकलीफ है तो उस स्टोन को वहाँ पे रखने से उसमें लाभ मिल जाता है, क्योंकि उस कुछ स्टोन जो है मैग्नेटिक चीज़ों का भी इस्तेमाल करके भी किया जाता है, मैग्नेटिक थेरेपी भी हम
1: जी
0: लोग
1: जी
0: कराते हैं, जिसको जिसको न्यूडेनियम मैग्नेट जो है कि उसका इस्तेमाल करके कुछ स्टोन बनाए गए हैं
1: जी
0: जो कि शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं।
1: अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ों की थेरेपी कराई जाती है, थर्मल थेरेपी के अंदर ये सारा चीज़ आता
0: जी जी
1: है।
0: जी
1: और जैसा कि है सर कि आपके यहाँ जैसे ये कराया जाता होगा तो एक समय सीमा मतलब सीमित होता होगा ना कि मुझे इतना जो लोग आ रहे हैं उनको कितने देर तक आप लोग देते हैं थेरेपी?
0: जैसे देखिए हम अपने थेरेपी सेंटर पे तो हम लोगों को करीबन 40 से 50 मिनट की थेरेपी कराते हैं एक सेटिंग में। तो थर्मल थेरेपी मतलब 40-50 मिनट करने के बाद, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं।
1: नहीं, जैसे कि 40-50 मिनट आप बता रहे हैं और आप मशीनें इतनी ढेर सारी बताए हैं, तो क्या पर्टिकुलर किसी जैसे किसी को घुटने की दिक्कत हो तो घुटने के लिए अलग देते हैं उसके लिए ऐसे कि पूरी थेरेपी आप बराबर में करवाते हैं?
0: नहीं ऐसा नहीं है, जो जिसको जिस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशानी है उस चीज़ को अच्छे से करने के लिए वो वही पर्टिकुलर करेंगे। लेकिन हम हमारे यहाँ पे क्या करते हैं जनरली, जैसे मैंने बताया कि हम लोग प्रिकॉशन के लिए यूज़ करा रहे हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए एक चीज़ नहीं कराते हैं, हम सारी थेरेपी कराते हैं ताकि ओवरऑल हेल्थ उनका अच्छा रहे।
1: तो ये थेरेपी आप जो सारी करा रही हैं वो कितने देर की कराते हैं, कितने कितने देर की सारी थेरेपी आप कराते होंगे?
0: टोटल हमने बताया आपको कि एक व्यक्ति को सारी थेरेपी कंप्लीट करने में लगभग 40 मिनट लगता है, कि कोई थेरेपी 20 मिनट, फिर 15 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट, इस तरह से अलग अलग मशीनों के ऊपर अलग अलग टाइमिंग से हम लोग थेरेपी कराते
1: अच्छा,
0: हैं।
1: जैसे कि आप बताएं बेल्ट है, मैट है, नेशम है और चेयर है, मतलब इस तरह से सारा चीज ले देके मतलब
0: चालीस
1: कुल
0: मिनट
1: चालीस
0: चालीस
1: पचास
0: मिनट तक
1: मिनट आपका
0: जाता है।
1: लग जाता
0: जी जी
1: है। अच्छा, तो जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे लगातार आ रहा है 40-50 मिनट कर रहा है थेरेपी और आराम मिले, तो वो कब तक आ पाता है, कितने दिनों तक?
0: देखिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, कुछ पेशेंट जैसे हम कुछ लोग जो आते हैं वो कुछ दिन करते हैं, कोई 1 महीना करता है, कोई 2 महीना करता है, जब उनको राहत मिल जाती है तो फिर वो नहीं करते हैं, लेकिन जनरली अगर आप चाहें तो इसको हमेशा कर सकते हैं।
1: तो उसके लिए कैसे क्या किया जाता है सर? जैसे कोई अगर सोचे कि नहीं अब हम नहीं आना चाहते हैं तो उस क्या किया जाता
0: हाँ
1: है?
0: ऐसा होता है कि जब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उनको रोज़ रोज़ आकर थेरेपी करना परेशानी होती है, दूर हो जाता है, जैसे कहीं आने जाने की सब परेशानी है, धूप है, बरसात है, ठंडी ज़्यादा है, तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि हम रोज़ रोज़ जाना संभव नहीं है। तो इस थर्मल थेरेपी जो हम लोग जिस पे हम थेरेपी कराते हैं ये होम यूज़ की तरह उपकरण बनाए गए हैं, अगर व्यक्ति चाहे तो इसको खरीद के और अपने घर पे रख कर भी इसका लाभ ले सकता है। काफ़ी लोग ऐसा किए हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ पाते वो लोग घर पे ले जाकर करते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए, और हम सभी श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद अनु जी।
2: अभी अब बट वृक्ष कार्यक्रम में सुने थे वृद्धावस्था में थर्मल थेरेपी विषय पर मनीष यादव से अनु जायसवाल की बातचीत। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं।
3: स्वच्छता ही सेवा ध्येय वाक्य को अमल में लाएं, कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपना जीवन अमूल्य बनाएं। स्वच्छता अपनाएं, कार्यालय की गरिमा बढ़ाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। स्वच्छ होगा जब वातावरण, तभी होगा नवजागरण। आइए आज से ही स्वच्छता ही सेवा की मूल भावना को अपनाएं, जीवन में नव ऊर्जा का संचार करें। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही संस्कृति है, स्वच्छता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत। नदियों को रखो साफ, ये है हमारी सभ्यता की पहचान। स्वच्छता को आदत बनाएं, रोज

0: सफाई करना भूल न जाए। गांधी जी के सपनों का भारत हमें बनाना है। पूरा भारत स्वच्छ रहे, यही हमारा नारा है। स्वस्थ भविष्य के लिए आज से ही स्वच्छता अपनाएं। हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। जब हमारा भारत स्वच्छ होगा तभी तो हर सपना सच होगा। देश तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। जब देश का कोना कोना स्वच्छ रहेगा तब देश का हर एक बच्चा स्वस्थ रहेगा। अविरल गंगा अविरल यमुना, स्वच्छ भारत संकल्प है अपना।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम में 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए सुने सरोद वादन। कलाकार हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान। राग है जय जयवंती।

0: अभी आप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में सुन रहे थे उस्ताद अलाउद्दीन खान का बजाया सरोद वादन। राग था जय जयवंती। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी वाराणसी है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय

परिवहन कार्यालय में आज एआई आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: missing. Authorities have not yet confirmed any casualty as they're assessing the extent of the damage. Union Minister Kiran Rijiju has appealed to the people in flood-affected areas to remain cautious. In a social media post, Mr. Rijiju urged the people to stay updated through official channels and follow all safety advisories. In the FIFA World Cup, Canada will take on Switzerland in Group B match at Vancouver in Canada tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. IST. In another fixture, Bosnia and Herzegovina will face Qatar at Seattle Stadium in Washington. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम में 241.5 सेंटीमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, ओटीटी वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। आज की सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।